मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल के 909 किलो हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आज गुरुवार है, शक्षमत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 अगस्त 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानि 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण

0: यूजी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जाँच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज कुंदन कटारिया का आपका साथ ही हाजिर है ये भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम लेकर। प्रभु श्री राम केवल एक राजा या ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम और आचरण की पराकाष्ठा है। उनके प्रति भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा आधार है। तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा गाई है और जो भक्तों के सभी संकटों को हर लेता है। आइए आप और सभी मिलकर आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रभु श्री राम की आरती के साथ।

श्रोताओं, शिवजी की भक्ति अहंकार का त्याग, मन की शांति और सत्य को अपनाना, भोलेनाथ सरल भाव और सच्चे मन से प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्मरण मात्र जीवन के सारे भय दूर कर देता है।

श्रोताओं, श्री हनुमान जी की भक्ति हमें शक्ति, समर्पण और अगाध विश्वास का प्रतीक देती है। उनका पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा और लोक कल्याण को समर्पित था। श्री हनुमान जी की भक्ति हमें अहंकार त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करने और हर परिस्थिति में निडर रहने की प्रेरणा देती है। जब प्रभु श्री राम को संकट आया तो उन्होंने श्री हनुमान जी को याद किया। कैसे किया? इस भजन के माध्यम से।

श्रोतों, ये भक्ति रचनाएं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ। राधा कृष्ण का प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि जीव और परमात्मा की अद्वितीय और पवित्र भक्ति का सार है, जहां राधा रानी समर्पण और निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा है, वहीं श्री कृष्ण उस प्रेम के आधार और प्राण हैं। इन दोनों का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है।

शतांश लोक देवता बाबा रामदेव जी जन जन के आस्था केंद्र हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव को मिटाया। उनको हम सभी रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं। उनकी भक्ति समाज को जोड़ने और मानवता की सेवा करने का संदेश देती है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। लीजिए सुनिए चिंतन। आज का विषय है संस्कार और वाचक स्वर हैं स्वामी धर्मेंद्रानंद जी के।
1: आज के मानव का संस्कारों का पतन हो चुका है, और जब जब एक इंसान के संस्कार गिरे, पतन हुआ, तब तब उस ईश्वर सत्ता को संत महापुरुषों के रूप में इस धरा के ऊपर आना पड़ा। आज इंसान के जीवन के अंदर संस्कार नहीं है, वो संस्कृति नहीं है। जब तक आज का मानव अपने वेदों की तरफ नहीं लौटेगा, तब तक उसका आचरण, उसका चरित्र महान नहीं हो सकता। रावण के इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी रावण का क्या हर्ष हुआ? कारण, इतना बड़ा विद्वान, शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन जो शास्त्रों में ज्ञान था, उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में जान नहीं पाया। और एक रावण जो इतना विद्वान होते भी वो भ्रमित हो गया, वो संस्कारों से टूट गया। वेद, हमारे उपनिषद, हमारे समस्त धार्मिक शास्त्र, जब जब इंसान के चरित्र का हनन हुआ, उस चरित्र का निर्माण करने के लिए उस चरित्रवान को इस धरा के ऊपर आना पड़ा। प्रत्येक इंसान का आज अगर हम करैक्टर देखें, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी जाकर देखें, एक टीचर एक बच्चे को लिखित में देता है कि गुड करैक्टर, लेकिन उसी बच्चे का आचरण जिस वक्त उस स्कूल से बाहर निकलता है, एक किसी दुकान के सामने खड़ा होता, एक पाउच अपने पॉकेट में से निकालता और सीधा अपने मुख में, कहाँ गया करैक्टर? जब तक एक इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं होगा, एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक इंसान समाज को बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं। समाज बना किससे है? एक एक इंसान से समाज बना है, और इस समाज को सुधारने की आवश्यकता नहीं, इंसान को सुधारने की आवश्यकता है। और जब एक इंसान सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। कहते एक बार एक गली में झगड़ा हुआ, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, पूछा कि क्यों? कहती है कचरा हमारे घर के सामने डाल दिया गया। उस गली के अंदर 10 घर हैं। अब उनसे पूछा गया, एक संत महापुरुष वहां से निकल रहे थे, उन्होंने पूछा भी झगड़ा क्यों? कहते कचरे को लेकर। पूछा ये कचरा कहां से आया? कहते पता नहीं। कहते आपके 10 घर हैं, 10 घरों में से एक घर का ये कचरा है और जिसने इस गली में डाला है, और उसी कचरे पे आप झगड़ा। बाहर से आकर किसी ने यहाँ पे कचरा नहीं डाला। आज समाज को किसी ने बाहर से आके नहीं बिगाड़ा। आज पुलिस स्टेशन, पुलिस की व्यवस्था क्यों है? जगह जगह पे धार्मिक समागमों के लिए पुलिस क्यों? ऐसा कौन सा हैवान इस समाज के अंदर आ गया जिसके कारण इंसान को आज पुलिस चप्पे चप्पे पे पुलिस क्यों? कारण, क्योंकि इंसान का जो करैक्टर है वो गिर चुका है। आज इंसान नहीं, हैवान। कहते कि आज इंसान से जितना खतरा है किसी जानवर से नहीं है। पुलिस है, कारागार बने, किस लिए बने हैं? इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो पतन, उसके जो चरित्र है, उसका अनन हो चुका है। और जब चरित्रवान इस धरा के ऊपर आता है, वो आकर फिर से उसी उसके करैक्टर के बारे में जनाता है कि जान तेरा चरित्र क्या है। कहते कि एक इंसान का अगर धन चोरी हो जाए तो समझना चाहिए कुछ नहीं गया। कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नॉथिंग इज लॉस्ट। कहती है अगर पैसा चला गया तो समझना चाहिए कुछ भी नहीं गया है, क्योंकि इंसान फिर से कमा लेगा। फिर आता है कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कहती अगर आपका स्वास्थ्य गिर गया तो समझना चाहिए कि आपका कुछ कुछ आपका चोरी हो चुका है। क्योंकि एक इंसान अगर स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा तंदुरुस्त नहीं है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हमारे संत महापुरुषों ने कही, वो कहते हैं कि करैक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते अगर एक इंसान के चरित्र का हनन हो गया, चरित्र खत्म हो गया, तो फिर वो इस इंसान का सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आज इस समाज को आवश्यकता है तो एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु की। आज का ये विचार प्रत्येक मानव के लिए कि वो ऐसे तत्ववेता महापुरुष की खोज करे और ईश्वर सत्ता को जाने।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे संस्कार विषय पर चिंतन। वाचक स्वर थे स्वामी धर्मेंद्रानंद जी के। लीजिए सुनिए ये संदेश।

बिल्कुल श्रोताओं, ये है आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे। खेतिहर वास्ते जानकारी का विषय रहेगा लवणीय सिंचाई का उपयोग खेती में। 7:20 पर आप सुना करते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 334 को। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुना करते हैं सुबह 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कुछ विषयों पर आप से चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सुबह 8 बजे वक्त रहता है समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाते हैं। भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुबह 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 पर आप सुनेंगे पर्सन बिहाइंड द स्टोरी एपिसोड संख्या 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आज के फनकार। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से सुबह 6:50 पर, दिन में 12 बजे और संध्या 6 बजे। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेत खलियान दिन में 12:50 पर। जानकारी का विषय रहेगा कीटनाशकों के प्रभाव से मधुमक्खियों को बनाएं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से दिन में 1 बजे। 1:05 पर कार्यक्रम रहेगा महिला जगत। दिन में 2 बजे वक्त रहता है समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संदेश टू सोल्जर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुना करते हैं युववाणी संध्या 5 बजे। सिरैकी का समय रहेगा संध्या 6:05 पर। किसान वाणी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7:30 पर। संसद समीक्षा ये आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, एक ही फिल्म से रात्रि 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या आप सुना करते हैं रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाती है। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। विज्ञान पत्रिका ये आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। ये वक्त तो चला है समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार। पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर समाचार अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100 मीटर भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां, सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां, अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते।

0: भारत ऋतुविभागेन उत्तर बंगालखात्याः उपरि न्यूनचापक्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशाराज्ये, गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिकवृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का

नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम सुनिए खेतिहरा वास्ते। आज की जानकारी का विषय है लवणीय सिंचाई जल का उपयोग खेती में।
1: राम राम किसान भाइयों, राम राम किसान भाइयों। आप जाना ही हाँ, अच्छी फसल का उत्पादन खातर और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना खातर सिंचाई जल की किस्म है या फिर जिसकी गुणवत्ता है, बिंगो ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अपने जगह भाई लोग अभी अपने ई क्षेत्र का माँ भात बांध की फसल बीजे और ई क्षेत्र का माँ किसान भाइयों अपने पानी है वो भी कई त्रियांगो है। क्योंकि कई जगह तो खारो पानी है, कई जगह मीठो पानी है और कई जगह यहाँ केस का अपना थोड़ा बिचाड़ लो सो पानी है, यानी कि ना तो वो ज़्यादा खारो और ना ज़्यादा मीठो। और अपने किसान भाई लोग अभी पानी ने बिना जाँच करवाए अपने फसल बीज ले और भी बाद का माँ भी फसल का माँ वो पानी है जो को लगा बो करे। और कई बार यहाँ हुआ है कि वो पानी लगाने के बावजूद भी अपनी जगह फसल है अपने सही पैदावार बाप को नहीं मिले नहीं। इस वास्ते किसान भाइयों अपने जब भी कोई फसल बीजा तो अपने सबसे पहला पानी के बारे में जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए कि अपनी फसल के लिए वो पानी माफिक है या नहीं है। और कई भाई लोग तो आप आते के देगा पानी तो बहुत मीठो है, क्योंकि आप कई बार पी के देख लिया पानी और पी के देखना पर अपन पानी को जो स्वाद है वो अपना थोड़ा बहुत खारो लग गए तो आप यहाँ कह देवा का वो खारो पानी है। लेकिन हर एक खारो पानी पीने में खारो लगे वो जरूरी को नहीं, क्योंकि कई बार पानी पीने में तो मीठो लगे लेकिन बिग वहाँ कई तरह का जगह मिलड़ा घुलनशील लवण है वे फसल का सागा सागा अपनी जगह भूमि है बिन भी खराब कर दिया है। इसी पानी किसान भाई स्वाद में तो अच्छा लगे लेकिन बिग वहाँ लवणा की मात्रा है बिंगो ज्ञान अपन है माटी की जाँच या फिर पानी की जाँच अपने प्रयोगशाला में जागे करवा के फेरी पत्तो लग सके। और पानी में भी देखा तो कई तरह जहाँ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम क्लोराइड है, ऐसी चीज़ें हुए लेकिन पानी के अंदर किसान भाइयों ज़्यादा लवण है, ज़्यादा सोरो है तो वो पानी न तो अपने पीने के लायक है और ना ही वो पानी है जो को अपने सिंचाई के लिए फायदेमंद है। किसान भाइयों ज़्यादा अगर खारा पानी से अपना लगभग सिंचाई करता रहे तो माटी में जगह घुलनशील लवण है बंग सुंदरता बढ़ जाएगी और इसी जमीन का वहाँ बीज को जो अंकुरण है और पौधे की जिसकी वृद्धि है बा बहुत कम होएगी और बिंगी उपज पर भी इनको उल्टो प्रभाव पड़ेगा। और इनके अलावा किसान भाइयों पौधे की जिसकी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ने वह अवशोषण करने की ताकत है वह भी खत्म हो जाएगी। सिंचाई जल का किसान भाइयों सोडियम कार्बोनेट की ज्यादा मात्रा होने की वजह से माटी की जो आकार है वो यहाँ केस कहाँ के यहाँ बिखरेड़ो सो जाए या छोटा छोटा कणाड़ो दगड़ाड़ो सो जाए और चिकनी माटी के ऊपर बारीक कण पानी के सागे सागे नीचे जाके कई गहराई पर जमा हो गए और सख्त सतह को निर्माण करे जिसको पानी को जो को निकास है वो अवरुद्ध हो जाए। हर जे किसान भाई वो पानी में बोरोन की मात्रा ज्यादा है तो वो फसलों पर विषैलो प्रभाव छोड़े। इस वास्ते किसान भाई अपने इन बात को ध्यान रखना जरूरी है कि पानी अपने सबसे पहला जांच करवाना है और माटी की जांच भी जरूरी करवानी है। अपने बरसात को जो पानी है बिंगो आप उचित उपयोग करना जरूरी है। बरसात होने से पहला खेता ने आप समतल करके और बिंग मेड़बंदी कर देवा ताकि बरसात वाला जो को पानी है वो अपने खेतों बारा ना जा सके और बी पानी के अंदर जगह घुड़ेड़ा लवण है वे बरसात को पानी है जो को जमीन के नीचे ले जाए और माटी की लवणीय क्षमता है वह कम हो जाए। और इनके अलावा किसान भाई सिंचाई का तरीका में भी अपन सुधार करना पड़ेगा क्योंकि अपन है पानी की बचत करनी है और कम पानी के अंदर अपन ज़्यादा सिंचाई हो जाए इसी फसलों को इसी किस्मों को अपन चुनाव करना चाहिए। और अपने किसान भाई लोग जगह खुल्लो पानी लगा दे क्यारा का माँ तो अपन क्या करना कि और तरीको है जो को अपन बंद करना पड़ेगा, अपन थोड़ी हल्की सिंचाई रखनी पड़ेगी। और इनके अलावा बूंद बूंद सिंचाई को भी आप इस्तेमाल कर सकें क्योंकि ज़्यादा गहरी सिंचाई करने से मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर जगह घुड़ेड़ा लवण है वे घुड़गे नीचे चले जाए। किसान भाई खारा पानी से अगर आप फुहारा से सिंचाई कर ला रहे हैं तो इनको एक उल्टो प्रभाव भी अपने जगह पौधा है बंग पत्तियां पर पड़े तो इन वास्ते आपने क्या करना है कर सिंचाई है अपने रात न करनी चाहिए। किसान भाई अपने कहना अच्छो पानी भी है तो अपने की थोड़ा सो साफ सुथरो पानी भी लगा देना चाहिए ताकि जो को लवणीय पानी है बिंग मात्रा वह कम हो जाए। और जब तक हो सके किसान भाई अपने मिलवा पानी को प्रयोग कर लेना चाहिए यानी कि खारो और मीठो पानी अपने इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपने किसान भाई लोग अभी ज़्यादातर ट्यूबवेलों का पानी इस्तेमाल करें और ट्यूबवेलों का पानी के अंदर आजकल सोरो और लवणगी की मात्रा है बस सबसे ज़्यादा है तो इन वास्ते अपन खारो और मीठो मिला के भी आप फसल का माँ देश का और कम पानी चाहने वाली जी किस्म है और जो कि लवणीय पानी ने किस्म झेल सके बे किस्म को चुनाव करके ही अपन विचार करनी चाहिए है। और जब तक हो सके किसान भाइयों तो अपन बिना रूणी काटे ही खेत का माँ बिजाई कर देवा और बिजाई के बाद का माँ अपना पानी लगा दें। इशू के किसान भाइयों के जब तक पौधा की बढ़वार होगी या फिर अंकुरण होगा भी टेम तक अपने जमीन का माँ या नमी बनी रहेगी तो ये बात को ध्यान रखना है। और इनके अलावा खेत का माँ गोबर की सड़ी गली खाद है कंपोस्ट खाद है बिंगो ज़्यादातर अपन इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों पौधों के मध्य लाइन में जिसकी दूरी है अपन कम रखनी है और बीज की मात्रा 20-25% तक अपन बढ़ा देनी है तो आ बातों को ध्यान रखना है पड़ा मैं खेत का निचालू राम राम शाह राम राम।
0: लवणीय सिंचाई जल का उपयोग खेती में।

0: इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेतिहर वास्ते में।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: श्रोता, सुना आपने ये संदेश, आइए सुने लोक भजन में विष्णु सागर को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक भजन में विष्णु सागर को। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड में भाग संख्या

श्री राम तथा रावण की सेनाएं एक दूसरे से जूझ रही हैं। एक ओर श्री राम की जय जयकार तो दूसरी ओर रावण का जय घोष गूंज रहा है। वानर और रीछ महाबली राक्षसों को मारते काटते धराशायी करके उनके उदर चीर देते हैं, फिर उन्हीं के मुंडों को अस्त्र के रूप में फेंककर औरों के कपाल फोड़ देते हैं। असुरों को कुचलते मसलते वानर मेघ के समान गर्जन करते हैं, जिससे रावण के सैनिक विचलित हो जाते हैं। अपनी सेना को त्रस्त और भयभीत देखकर रावण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भयंकर हुंकार करता आगे आगे दौड़ता है। वानरों द्वारा फेंके गए वज्र के समान पत्थर उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। भीषण क्रोध से कांपते हुए उसने जब वानर और भालू सेना का संहार करना प्रारंभ किया तो वे त्राही त्राही कर उठे। पूरी सेना श्री राम की शरण लेने को जैसे भाग खड़ी हुई, लेकिन सभी दिशाएं रावण के भांति भांति के अस्त्रों से आच्छादित हैं। वानर भालू भागकर जाएं भी तो किधर, लगता है वे चारों ओर से घिर गए हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना लंका कांड में भाग संख्या 334 को। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। इस कार्यक्रम में आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। बात करते हैं सबसे पहले संस्कारवान बने। संस्कारवान बनना जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने की पहली सीढ़ी है। अच्छे संस्कार हमें हमारे रोजमर्रा के आचरण, बड़ों के प्रति आदर, सच्चाई और अच्छे विचारों से आते हैं। अपने अंदर और परिवार में अच्छे गुण लाने के लिए खुद पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छे आचरण की कुछ बातें हैं, जैसे कि माता पिता, गुरुजनों और हर बड़े व्यक्ति का सम्मान करें, हमेशा सच बोलें और ईमानदारी का रास्ता चुनें, गुस्से पर काबू रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, जीवन में समय का पालन करें और अनुशासन में रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें और प्रेरक किताबें पढ़ें, दूसरों की मदद करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, जो कुछ आपके पास है उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके संस्कारों से बनती है। संस्कार उसके समूचे जीवन को व्याख्यातित करते हैं। संस्कार हमारी जीवनी शक्ति है। ये एक निरंतर जलने वाली ऐसी दीप शिखा है जो जीवन के अंधेरे मोड़ों पर भी प्रकाश की किरणें बिछा देती है। उच्च संस्कार ही मानव को महामानव बनाते हैं। तो हम सभी के जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है, जिससे हमारा समाज, हमारा देश मजबूत होगा। बातें और भी करेंगे श्रोताओं। इस बीच आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में ये गीत फिल्म एक फूल दो माली से। गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार रवि।

बिल्कुल श्रोता हूं, ये हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे देश का भविष्य है। इन्हें संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। बात करते हैं देश प्रेम की। देश प्रेम की भावना मनुष्य में स्वाभाविक और सर्वोपरि है, जिसके अन्न जल का सेवन करके वह बड़ा होता है, जिसकी धूल में खेलकर वह पुष्ट होता है, जिसके जलवायु का सेवन करके वह जीवन धारण करता है, जिसकी मिट्टी में अंत समय में मिल जाता है, जो जन्मदात्री माता से अधिक सहनशील और स्नेहमयी और गरिमाशालिनी है। कवि की कुछ पंक्तियां, भरा नहीं जो बाहों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मानव जिस भूमि पर जन्म लेता है उसके प्रति मानव के हृदय में अटूट प्रेम होता है। जन्म धारण करके शिशुकाल से ही जिन वस्तुओं से उसका संबंध होता है उसके प्रति स्वाभाविक लगाव और प्रेम हो जाता है। उस देश की मिट्टी के कण से मनुष्य को ऐसा मोह हो जाता है कि वह उसकी निंदा या अनिष्ट कभी सहन नहीं कर सकता। तन मन धन से स्वदेश की रक्षा करना और उन्नति करना ही स्वदेश प्रेम है। देशभक्ति पवित्र सलीला गंगा के समान है, जिसमें स्नान करके मनुष्य का शरीर और अंतरात्मा पवित्र हो जाते हैं। जन्मभूमि के प्रति आस्था और निष्ठा रखना मानव का प्रकृति सिद्ध गुण है। कहा गया है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। देश प्रेम से ओतप्रोत

देश की रक्षा और उन्नति में ही अपनी सुरक्षा और उन्नति का अनुभव करता है। जन्मभूमि की सेवा करना उसका धर्म है। जननी और जन्मभूमि के ऋण से मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उनकी सेवा से विमुख होना कृतघ्नता है। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा हेतु बलिदान करने में मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। सभी जीव अपनी मातृभूमि से अटूट प्रेम रखते हैं। देश की प्रगति के लिए स्वदेश प्रेम की महान आवश्यकता है। देश प्रेम उन्नति का द्योतक है। तो हम सभी को अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति। आइए एक और गीत, फिल्म पूर्व और पश्चिम से, आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोतों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ बात करते हैं बालिका शिक्षा के महत्व की। शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है। जब किसी समाज की बेटियां शिक्षित होती हैं तो वे समाज प्रगति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता है। बालिका शिक्षा का उद्देश्य है लड़कियों को ज्ञान, नैतिकता और जीवन मूल्यों से संपन्न बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक और सशक्त नागरिक के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभा सके। यही एक विकसित राष्ट्र की असली पहचान है। भारत जैसे देश में जहां एक समय बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, आज वही पर जागरूकता और सरकारी प्रयासों के कारण बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षित बालिका अपने अधिकारों को समझती है, आत्मनिर्भर बनती है और समाज में समान योगदान देती है। वह न केवल अपने परिवार को प्रगति की राह दिखाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा और संस्कारों की रोशनी प्रदान करती है। शिक्षित बालिका एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। जब हर लड़की को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा, तब समाज में समानता, प्रगति और समृद्धि स्वतः ही स्थापित होगी। बालिका शिक्षा न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे देश को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हर बेटी को शिक्षित करें, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी भारत बढ़ेगा। श्रोताओं, आइए एक और गीत अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म जख्म से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार MM करीम।

0: श्रोताओं, आइए प्रोग्राम के आखिर में एक और गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म हिंदुस्तान की कसम से। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और जसविंदर नरूला की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार सुखविंदर सिंह।
1: होशियार होशियार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर...

0: मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
5: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
4: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
6: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और

0: गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
1: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक

0: इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे है, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
7: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी

0: में कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल एकेडमी बैंड कर्णूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें, स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस।

0: उम्मीदवारों से इम्तिहान में पास होने की गारंटी के लिए 3.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे थे। इस ओहदे के लिए तकरीबन 7,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब सरकार ने जुलाई में हेल्थ साइंसेज की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम कराए गए फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले पर अवाम को गुमराह किया है। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इम्तिहान पर रोक लगा दी है और ये सवाल करते हुए सख्त रायजनी की है कि ये इम्तिहान पहले क्यों नहीं रोका गया और आया ये इम्तिहान नए सिरे से कराया जाना चाहिए या नहीं।
2: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है।
1: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एकेडमी अवार्ड्स देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं, बल्कि इनके जरिए उम्दा इनफरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। एकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। फेलोशिप और अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए अफराद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरह वह पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: केरलम में यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत में 3 मकामात पर मुसल्ला अफवाज की जानिब से मौसीकी से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: बहरी और फजाइया के बैंड मौसीकी के जरिए मुल्क की यकजहती को फरोग देने के मकसद से आज तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोची में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फजाइया का बैंड तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी में, कोची जनूबी बहरी कमांड का बैंड अर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजिमाला नेवल एकेडमी बैंड कन्नूर के थाजवे चोवा में अपने फन का मुजाहरा करेगा। इन प्रोग्रामों का आगाज आज शाम 6 बजे किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: यौम आज़ादी से कबल पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों में हुब्बुल वतनी का मजबूत जज्बा पैदा हो रहा है। पूरी रियासत में तिरंगा रैलियों और कई दीगर प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: यौम आज़ादी से कबल मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम में तेज़ी आ रही है। ये मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक़िद की जा रही है। इसका आगाज़ वज़ीरे आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक तिरंगा रैली के साथ किया था। इसके बाद रियासत भर में तिरंगा रैलियां, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां मुनक़िद की जा रही हैं। गाँवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेला, नुमाइश और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज रंगोली, पेंटिंग, मजमून नवेसी और हुब्बुल वतनी के नगमों के मुकाबलों का इनेकाद करके बच्चों और नौजवानों को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा।

0: गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के सूराब ज़िले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने सूराब के गूदर मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की, जिससे जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ। मज़कूरा तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुक्काम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया है कि अस्पतालों को फौजी अहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मस्कुरा ग्रुप ने बैनुल अक्वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इस वाक़े का नोटिस ले और बलोच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए मुदाखलत करे। अपनी खसूसी सीरीज़ पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के आइंदा एपिसोड में आज हम विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से गुफ्तगू करेंगे, जो दुनिया की पहली हमा निस्वा फौजी बहरी मुहिम का हिस्सा थी, जिसके दौरान उन्होंने समंदरी रास्ते से दुनिया का चक्कर मुकम्मल किया। इस बातचीत को आज सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। क्रिकेट में BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज की मेज़बानी करेगा। ये सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और ये मैच भारत में खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर ओपोजिशन को नीट पेपर लीक पर बहस के लिए आमादा करने पर जोर दिया। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला के इस बयान को अव्वलियत के साथ सुर्खी बनाया है कि ओपोजिशन के तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूँ। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि एहतजाज के दरमियान FCRA तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द JPC में बिल की दफात पर तफसीली गौर किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त की रस्म इजरा के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को अखबारात ने शह सुर्खी बनाया है कि साबिक सदर की जद्दोजहद और खिदमत एक काबिल तकलीद कहानी।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। गैर मुल्की एहतियात को मुंसबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखादही के इल्जाम के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब ज़िले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुने भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं अनूप झलोटा और उनके साथी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार थे अनूप झलट और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय

0: लाखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक का आज समापन होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये प्रतिष्ठित कलाकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली तथा अन्य संबंधित प्रदर्शन कलाओं से जुड़े हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन भवन में होने वाली लॉटरी में प्रदेश की 309 नगर निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉटरी में सबसे पहले अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आखिर में अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। हर वर्ग में एक तिहाई निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खनिज और खान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इससे पहले कल संसद में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में पहले ही इसे पारित कर किया जा चुका है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: इस बीच संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के 22 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। इनमें सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर भंवर सिंह और AGTF CID के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक तथा कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को भी उनकी सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। योजना के तहत 10 अगस्त तक प्रदेश में 77,814 कार्यों पर 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। ये संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों से 2,22,000 अधिक है। योजना के तहत वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख से अधिक कार्य GIS आधारित पोर्टल पर शामिल किए गए हैं। राज्य में 1 जुलाई को शुरू हुई इस योजना के जरिए

हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने कुल 12,636 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जयपुर में आयोजित दो दिवसीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में सदस्य देश आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ने निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के बजाय निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को

0: संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के बजाय निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में सीएलजी सदस्यों को उनके दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। जयपुर संभाग के नवनियुक्त सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हनुमानगढ़ में सेफ सिटी अभियान के तहत पुलिस और छात्रों के बीच विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी पोर्टल के माध्यम से संवेदनशील और संदिग्ध स्थानों पर पुलिस की निगरानी जारी है और युवा भी इस अभियान से जुड़कर समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
2: ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद हमारे पास खूब इनपुट सारे हैं। वो करीब 3 दिन हो गए। 3 दिनों में 50 से अधिक हमारे पास इनपुट पोर्टल पे आए हैं। उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें पिछले 20 दिनों में एटलीस्ट 200 to 250 इनपुट हमारे पास आ चुके रहे। पब्लिक उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तुरंत हमें सूचना दे रही है और हमारे सेफ टीम जो है वो मौके पे भी जा रही है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि पब्लिक हमें सूचना देना चाह रही है लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे सूचना हम तक आ सके। लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जितना सूचना पब्लिक से सोसाइटी से हमारे पास आए तभी हम नशे के खिलाफ और इफेक्टिव एक्शन ले पाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में 53.8% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। विद्यार्थी डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। VBG रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी एपिसोड संख्या 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रियंकारुड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी।
1: शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
3: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
4: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
3: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं,

के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं

0: उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: बींग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मेंटली स्ट्रांग होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि एंड्योरेंस और स्टेमिना, कि महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे एक डेढ़ दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज़ ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील कि था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज़ जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
0: जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और
1: दिन बन गया,
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली।

0: किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
1: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज़ योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड. एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
0: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
1: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक, मतलब एवरी डे देर वॉज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब दो दो ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरी थिंग. तो हमको सब चीज़ में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था. इट वॉज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए,
0: तो
1: दैट
0: दिस वाज
1: इज
0: द
1: अ
0: बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ
1: सब
0: मालूम
1: कुछ.
0: था ताकि
1: हाँ
0: किसी तरह की दिक्कत ना आए।
1: यस.
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन-किन जगहों से गुजरी, कहाँ-कहाँ से गए आप?
2: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था बट वहाँ पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ.
0: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा। तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख दुखी चल रही थी?
2: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो 1 साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है. हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ. हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया. जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे. उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे. और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज. जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे. और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और जीरो

0: नौकरी की हवा जब आप पे लगेगी, 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी। हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए, क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। 3 ग्लव्स से हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नम हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम।
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ, ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है, क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो, क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है, तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते। उस
0: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी। तो और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
3: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
1: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
2: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।

0: कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप
1: जी
0: थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो।
1: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
0: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
2: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ ख़राब हो गया उसका रिपोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5 5 मिनट या 10 10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
0: तो आपने, वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं
2: नहीं,
0: बताऊं?
2: बिल्कुल भी नहीं। व्हाट हैपेंस ऑन द बोट स्टेज ऑन द
0: तो
2: बोट।
0: स्ट्रांग लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
1: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
0: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज बम्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए वो
2: नहीं,
0: आंसू नहीं
2: उसके कभी
0: आए।
2: नहीं।
0: नानी संदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे।

0: अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें।
0: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना, वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट, जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है, वो होती थी। वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके। वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था। और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो।
0: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई
1: कमिंग टू
0: फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30 6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है। हम
1: सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट,
0: ब्यूटिफुल
1: ओ ट्रीट टू
0: एक्सपीरियंस।
1: आईज। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें।
2: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
0: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्ड वर्क, परसिवेरेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो। दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी, एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था। एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी, एंड दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर।
1: बहुत ही
0: यस,
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन। आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
0: थैंक यू वेरी
2: थैंक यू
0: मच।
2: प्रियंका जी,
3: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी, एपिसोड संख्या 7। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया था। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी

नंदन कटारिया का। प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म सुहाग से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत इस बात के साथ, किस्मत के लिखे पर एतबार क्या करना, किस्मत के लिखे पर एतबार क्या करना, जो दिल में बस जाए उससे इनकार क्या करना, लकीरों से बंधा है जब साथ हमारा, लकीरों से बंधा है जब साथ हमारा, तो फिर इस दुनिया से सवाल क्या करना।

श्रोताओं, आइए अगला गीत फिल्म जानी दुश्मन से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तो आइए प्रोग्राम का अगला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिजा में एक नया एहसास खिल जाएगा, फिजा में एक नया एहसास खिल जाएगा, जब तुम दोनों जब किसी मोड़ पर मिलेंगे। लगता है ये बिछड़ने का हर गम सिल जाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल के 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत पर ही आधारित आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। आज का ये प्रोग्राम समर्पित है अभिनेत्री श्रीदेवी की जयंती पर। सुनवाएंगे उनकी फिल्मों के निभाए किरदार के कुछ फिल्मी गीत। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री, आज यानी 13 अगस्त 1963 को उनका जन्म हुआ शिवकाशी तमिलनाडु में। अपनी फिल्मों में अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देने वाली इस अदाकारा ने फिल्म मवाली, तोहफा, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, खुदा गवाह, चालबाज, नगीना और लम्हे जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम

मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में फिल्म सोलवा सावन से की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मतवाला से मिली। और इसी का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: फिल्म हिम्मत वाला से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी, जिनके आज हम आपको कार्यक्रम आज के फनकार के तहत गीत सुनवा रहे हैं उनकी जयंती पर। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी का विवाह निर्देशक बोनी कपूर के साथ 1996 में हुआ था। उनकी एक फिल्म आई थी नगीना, इसी का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जी हाँ श्रोताओं, आपसे हम बात कर रहे हैं आज के फनकार के तहत अभिनेत्री श्रीदेवी की जयंती पर। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर बाल कलाकार से की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर बाल कलाकार थुनविन थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूमबत्ता, जो कि 1971 में आई थी, जिसके लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उनकी एक फिल्म बंजारन, जिसका गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभिनेत्री श्रीदेवी, एक अदाकारी जिसकी अदा से अपने दर्शकों को मोहित किया। फिल्म धर्म अधिकारी जिसका गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और एस जानकी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार बप्पी लहरी।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार के तहत अभिनेत्री श्रीदेवी की जयंती पर ये विशेष प्रोग्राम उनके फिल्माए गीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए अगला गीत फिल्म इनकलाब से, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म चालबाज से अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बिल्कुल श्रोता हूँ, बिजली की रानी हवा हवाई, अपनी अदा से सबको आकर्षित करने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी, जिनके गीत आपको सुनवा रहे हैं आज के फनकार के तहत उनकी जयंती पर। अगला गीत फिल्म चांदनी से, आवाज़ें पमीला चोपड़ा की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार शिव हरी।

श्रोता लीजिए, सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे। गीतकार समीर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोतमाइए, कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है राम अवतार। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार के तहत अभिनेत्री श्रीदेवी की जयंती पर ये विशेष कार्यक्रम अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। और अब इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। नमस्कार।

आज के फनकार, अभी आप फिल्म संगीत का ही प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत।

सभी सुनने वालों का नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से श्रोताओं, आज का फरमाइशी गीतों का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। इस प्रोग्राम में गीत होंगे आपकी पसंद के, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक श्रोता की फरमाइश हम पूरी कर सकें, उसका नाम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जो व्हाट्सएप पे आपने संदेश भेजे हैं और जो हमें खत डाक से प्राप्त हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और देर ना करते हुए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंदूर से, जिसे लता के साथ आवाज़ दी सुरेश वाडकर ने। ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के लिए आप सब साथियों ने हम तक अपनी फरमाइश प्रेषित की है। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। गांव अमरपुरा जालूखाट तहसील संगरिया हनुमानगढ़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू और राजेंद्र।

नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये फरमाइश हम तक पहुंची है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर की। चक 14 PSB से कुलदीप सिंह राजविंद्र को, संदीप सिंह, जसकंत सिंह, हरदीप सिंह, मंदराज सिंह। गांव चंदबाजा फरीदकोट पंजाब से अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, मन कीरत कौर, गुरसीरत कौर, गुरप्रताप सिंह और इनके परिवार के लोग। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन के साथ बेबी जानवी का भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। गांव तुंदाड़ा ओशिया जिला जोधपुर राजस्थान से गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुवाला विवेक और पीयूषा मेघवाल। संग्रह से हमारे श्रोता हैं श्याम मिड्ढा के साथ सुमन मिड्ढा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सतम आनंद। आप सब सुने सिंधु फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है 20 साल बाद। इस गीत को गया अनुराधा पौडवाल ने, शब्द रचना एक बार फिर से आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब साथियों की है। भनीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। कोटो नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। अरायन से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव, साइना और निवान शर्मा। ये फरमाइश अब तक पहुंची है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू की। कमर कॉलोनी बड़वा खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। कुछ पत्र भी हमें मिले हैं जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं। श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। श्री गंगानगर से ही नेकीना मांसीवाल, जोनी मांसीवाल, धनराज और लविश के साथ तनु। ये पत्र हमें मिला है। अरायन से रंजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु राजवीर, अगली फरमाइश। दादर गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा की। आप सबको हम सुनवाते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गीत।

0: अगला गीत फिल्म का नाम है भ्रष्टाचार। इस गीत को गाया सुरेश वाडकर के साथ अनुराधा पौडवाल ने। शब्द और संगीत एक बार फिर से आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सब साथियों की है। गांव बुढ़ाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेत कुमार, साधना, पवन पाटिल। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, शहनाज। चक 58 एनपी रैसिंग नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपीराम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मोनिका और गीतांजलि मलखट। गांव कलाना तहसील भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, यूथव कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान साहरन, कीड़ू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और यशोक येले। भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, अशोक, उपेश कुमार साहिल, मुरारी लाल, मदनलाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किनू, पंकज सारस्वत। ये फरमाइश हम तक पहुंची हैं। नई दिल्ली मोती नगर से अनिल, गौरव, मानसी, कविता अरोड़ा। केसर सिंहपुर से राजकुमार ठटई, कमल ठटई, मगननाथ सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और भालूराम जी। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। मोगा पंजाब से स्वर्ण सिंह, गांव इनका है दोले वाला। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, विमला अनवेजा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतना मस्किन, मेघा, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आप सब सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म भ्रष्टाचार से।
1: रे गा मा, तुम भी गाओ।

एक नज़र। इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। गीत लिखा मधुरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मकड़, ज्योति मन्नत, भरत मकड़, कमल साहनी। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल। गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, परमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया, ईवा धारनिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से

अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। भोपाल एमपी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, विमल श्रीवास्तव, आशा, राधिका और इनके परिवार के लोग। केसर सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत कुमार, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल। गांव भागसर से मंगतराम धींगड़ा, सुमन, संजना, सचिन कुमार धींगड़ा। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, ये कुछ पत्र भी हमें मिले हैं। खुशियाम रनवा, बिजलाल, पालाराम, दिलीपनाथ, कानाराम, सुभाष गोदारा। गांव झंझड़े वाला 15-18 जीजी से। गांव दौलतपुरा श्री गंगनगढ़ से शिवलालजी बेनीवाल, हेमंत मोहित। गांव मक्कू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, मुनीश बजाज। मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, नवनीत, निशु और भूपेंद्र। आप सब सुने एक नज़र फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अपने साथी संजय बैद के साथ सुन रहे हैं। अगला गीत आप सब साथियों के लिए जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। सफीदों सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली, रजत, लव, कुश और इनके परिवार के लोग। बुलढाणा वड शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार मानकर। जाम बिट्टू रानी जाम्प, रानी बाजार बीकानेर से। बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, साजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन। गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यक्षिका, विद्या देवी और इनके परिवार के लोग। मोला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी, हिना कौसर। ये फरमाइश पहुंची है पारसमनी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, खुदा बख्श। गांव गोपी खीरिया तहसील भाडेर जिला दतिया एमपी से राहुल पाल, ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल, बेबी लक्ष्य। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन। खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। पिपर लोट सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये पत्र हम तक पहुंचा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हृदय मिका, बलदेव बीरक, जतेक बीरक, मिका बीरक का। मलोर पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी, विकास, प्रियंका, रमन इंदौरा, रितु, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी अरोड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक और इनके परिवार के लोग। आप सब सुने ललकार फिल्म का गीत। गीत को गाया मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर ने। हसरत के लिखे गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म मर्यादा से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, शब्द लिखे आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सब साथियों की उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, दुर्गा कॉलोनी हांसी से बबीता मिगलानी, राजू मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, ढानी लाल खान नौहर से जावेद खान जोहिया, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, सूरतगढ़ से लेखराज शाक्य, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदनलाल शाक्य, जीवराज सिंह, उदय सिंह, हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनू पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत राजू, गणेशपुर गंज डुंडवारा यूपी से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, गांव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमरन शेख, करिश्मा शेख,

चोर मचाए शोर। इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद आप सब साथियों की है। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवार, सरला विशाल, चेतन, रोशनी मनवार और बेबी प्रियांशी। गांव कुष्टा, बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से परवीन हागोने, योगिता हागोने, प्रियाली, पार्थ। हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, प्रतीक्षा संधु और मैक्स। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवी सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया। सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। कस्बा गुनोरी यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरान, फारिया ताहिरा। विजय पाटिल महाराष्ट्र, जालना से गुलाम अली, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। जनकपुरी सहारनपुर से हमें फरमाइश लिख भेजते हैं। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग दर्शन और कविता गौड़। गुरतेज औलख 19 जीडी से। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुगेश्वरी, राखी, तृप्ति जायसवाल। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शहनासन, अक्सादीब, नाजिया, आफिया,

टाइम सद्दाम, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी, दीवान चंद, भाविक ढिंगरा, अतुल शर्मा, खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनाज शहनाबाज, सरफराज फरदीन, सुहान अनजान अब्बासी, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूनाराम कृष्ण देवांगन की, पलारी छत्तीसगढ़ से, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साईं गायकवाड़, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। आप सब सुने चोर मचाए शोर फिल्म में किशोर कुमार को।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को। अख्तर रोमानी के लिखे गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सब साथियों की है। 22 NTR नोहर से पवन सुथार, अमरजीत मोहन, सुनील, विष्णु, शिव सुथार। गांव कोला से महावीर, नरेंद्र, भजनलाल, कैलाश सुथार। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। चक 15 PS से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह, रॉबिन सिंह। खंडवा MP से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी, फागुनी जोशी। गांव चैनपुरा धोरीमना जिला बालोतरा से जगदीश भारती गोस्वामी, नरेश भारती, विजय मलिता। सुल्तानपुर UP से यशमित येशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अरविल सिंह। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी, सुनीता साहनी। खंडवा MP से ममता बमारकंडेय, संजय मारकंडेय, बीबी किट्टू। वर्णीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, अजीम खान। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश राम भाड़े, भारती, जाह्नवी, वैष्णवी। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, पालक लुबना, यश मंसूरी। वर्ली मुंबई से ही नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, अजीम खान। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाइना फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। नेपानगर MP से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। रैसीनगर से सोहनलाल जांगीर, मंजू जांगीर, रवि, संजय, शोर प्रकाश, सुनील जांगीर। असम से हितेंद्र दास। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह। मुंगी पैठा महाराष्ट्र से बाबा साहेब कांगणकर, साखरबाई, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और इनके परिवार के लोग। जखोद राजस्थान से चमुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। सिरसला जिला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, कोमल, कार्तिक सोनगरा। श्रीगंगानगढ़ से नेकीराम और इनके परिवार के लोग। जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, गव्या, सुचा सिंह। हनुमानगढ़ बस स्टैंड बुर्ज से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, मदनलाल। गंज डुंडवारा से ये फरमाइश पहुंची आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर, लुबना अंसारी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक। नौखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल, घनश्याम बाबू, हसन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। और संग्रिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, योगेश, मनीष, लक्ष्मी, रिया, माही, केदार, चित्रा, युवंशी, बत्रा और उनके परिवार के लोग। आप सब सुने हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत।

अभी आप अपने साथी संजय बैद के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं। आइए अब सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। दिन में 12:30 पर गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम होगा सुगम संगीत। आज आप सुनेंगे मंदर उदास की गाई गजलें। 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा कीटनाशकों के प्रभाव से मधुमक्खियों को बचाएं। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व अंगदान दिवस। यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझें। क्रेडिट कार्ड का माया जाल, सावन में हरे रंग का महत्व, दही छाछ का सही उपयोग कब और कैसे। कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। प्रोग्राम होगा फिल्म संगीत। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक फौजी भाइयों का कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों के लिए उनका रोजाना का कार्यक्रम होगा युववाणी, शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। आज चर्चा के विषय रहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य, डिजिटल भुगतान और भारत, संस्कृति और युवा। साथ ही जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। सरायकी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक कार्यक्रम किसान वाणी हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:30 से लेकर 8 बजे तक ग्रामीण परिवारों के लिए उनका कार्यक्रम होगा चौपाल। आज विषय रहेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का

सूची में उपयोग, मृदा परीक्षण, साथ ही होंगे गीत भजन और आज के बाजार भाव। रात 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रोग्राम होगा एक ही फिल्म से रात्रि 8:15 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे कुछ गजलें रात्रि 9:15 पर। 9:30 से लेकर 10 बजे तक कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे विज्ञान पत्रिका जयपुर केंद्र से प्रसारित की जाएगी और शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे 10:30 तक। ये थी जानकारी हमारी सभा के आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। समय मिलाइए दिन के ठीक 12:05 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुने, कुछ बातें कुछ गीत।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और आज सावन माह का दूसरा पक्ष यानी शुक्ल एकम के साथ आरंभ हो गया है। कल हमने हरियाली तीज का त्यौहार मनाया और जल्दी ही सावन की जो बड़ी तीज है वो आने वाली है। सावन का महीना एक ऐसा महीना लेकर आता है जिसमें अनेक तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। खुशी का, उमंग का, ताजगी का एक अलग ही महीना है सावन का, जिसका इंतजार ना केवल नई नवेली दुल्हन को रहता है बल्कि हर व्यक्ति के साथ साथ हर सुहागिन सावन का इंतजार करती है। इस महीने में एक अलग ही उमंग से मन ताजगी से भर जाता है। चारों तरफ छाई हरी भरी चादर, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें जैसे जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देती है। इस खूबसूरत मौसम का हर कोई लुत्फ उठाना चाहता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। बात करें हरियाली अमावस्या की तो वो वास्तव में प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और आभार व्यक्त करने का दिन है। ये दिन शिव और पार्वती का दिन भी माना जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो हमारी प्रकृति से ही है और इस दिन जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल एक पौधा नहीं होता बल्कि एक पेड़ बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और हरियाली की सौगात लेकर आता है। प्रकृति हमें बिना मांगे जो कुछ भी देती हैं, ये दिन उसका धन्यवाद करने का दिन है और पर्यावरण को सहेजने की हमें प्रेरणा देता है। और सावन में जब बागों में झूले पड़ते हैं और उनको झूलने के लिए जब युवतियों की लाइन लगती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है।

लगता है। स्वागिन के हाथों में रची मेहंदी की महक, लाल लाल और हरे रंग के वस्त्र, पेड़ों पर पड़े झूले और चारों तरफ गूंजते सावन के गीत इस दिन को खास बना देते हैं। ये त्यौहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूती देने का एक खूबसूरत सा माध्यम है। इस सावन के महीने में हम प्रकृति का सम्मान करें, तीज के पावन अवसर पर अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलें, क्योंकि जब सावन के झूले हिलोरें खाते हैं ना, तो मन में जो उत्साह है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो अपनापन है, उसका संचार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।

श्रोताओं, सावन की तीज जब आती है तो माहौल में उत्सव का जो रंग है वो और भी गहरा जाता है। तीज का त्यौहार हमारे रिश्तों में मिठास, प्रेम और समर्पण खोलता है। देवी पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम से जुड़ा ये पर्व हर घर में खुशी का संदेश लेकर

में तो सावन का महीना आते ही प्रकृति मुस्कुराने लगती है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है, पेड़ों की डालियां झूमने लगती हैं। आसमान में जब काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो उनसे बरसती बूंदों का हर मन को इंतजार रहता है। बारिश में भीगने का मन भी करता है। ठंडी ठंडी जो हवाएं सावन के महीने में चलती हैं मन को आनंद और रोमांच से भर देती हैं, और इन्हीं हवाओं के साथ सावन की झूले का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो युवावस्था की दहलीज को लांघ चुके हैं वो अपने बचपन को याद करके देखें, जब घरों में

झूले पड़ते थे और उनमें झूलने के लिए हम बागों में जाया करते थे। आजकल जब शहर बढ़ गए हैं, स्थान सीमित हो गए हैं, तब झूले भी बहुत कम देखने को नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ भी गांव में, पार्क में, जहाँ भी खुला स्थान है, और सावन का जो तीज का त्यौहार उल्लास और खुशी के साथ आपसी मेलजोल और सामंजस्य के साथ सामूहिक रूप से मनाया जाता है, वहाँ जब झूलों में झूलने के लिए रस्साकसी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, पहले मैं की जब प्यार भरी लड़ाई होती है, तो उन झूलों में झूलने का जो आनंद है, उसके आगे प्रकृति के सारे साधन फीके हैं, दुनिया की सारी दौलत वहाँ कम पड़ जाती है।

मित्रों, सावन का महीना हो, सुहावना मौसम हो, बाग में झूले पड़े हों, मधुर हवा बह रही हो, युवतियों के हाथों में मेहंदी लगी हों, लाल वस्त्र उनके शरीर पर सज रहे हों, हाथों में मेहंदी लगी हों और चेहरे पर खिलखिलाहट हो, तो वो दृश्य कितना सुंदर होगा। सावन के जब झूले पड़ते हैं और युवतियों का समूह उन झूलों को झूलने का जो आनंद लेता है, उसकी कल्पना सहज की जा सकती है। उस कल्पना के रंग इतने गहरे होते हैं कि अपने प्रीतम की याद में जब युवतियां उस झूले को झूलती है और मन ही मन अपने प्रीतम को याद करती हैं, तो उसकी याद प्रदेश में बैठे उसके प्रियतम तक जरूर पहुंचती है और वो भी उस सावन के महीने में अपनी प्रेसी के पास आने की ईश्वर से कामना करता रहता है।

कुछ बातें कुछ गीत। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 918 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। सुने मनहर उदास को, शब्द रचना श्याम अनुरागी की।

0: इस गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 12:50 हुए हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है फसल चक्र और इसके लाभ।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की राय माना तो आप साल भर में 2 या 3 फसलों की बीजांत करा, और एक बात आ भी है कि आप हर साल 1-2 तरीके की ही किस्म लेके अरबंगी बिजात करता रहा, क्योंकि कई बार किसान भाई लोग है आपने जगह बे है बे जे नरमो है तो नरमो बीज लियो, अगले साल भी आपने जो कोई बासागण फसल है भाई बीज ली, या फिर कणक की फसल है आप बीजन ला रहे हाड़ी गमा और कणक की अगला साल फिर हाड़ी बीज ली। तो ई तरियाँ किसान भाइयों की हुआ का आपने जी की खेती है वा या किस का कह एक बार दो बार तो बढ़िया हो जाए, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जी की खेती है आपनी बा कमज़ोर होने ला जाए, क्योंकि आपनी जी की जमीन की जी की उर्वरा शक्ति है बा एक ही त्रियंगी एक ही किस्म अगर आप बीजता रहे बार बार तो आपनी जो की उर्वरा शक्ति है जमीन की बा खत्म हो जाएगी, जमीन है जो की कमज़ोर पड़ जाएगी, जगह की वजह से आपनी जो की फलत है फसल की बा बहुत कम होएगी। इन वास्ते आपने टेम टेम पर जगह कृषि विशेषज्ञ है, कृषि वैज्ञानिक है या फिर कोई जागरूक किसान है बे आई राय देवता रे है का आपने जो की फेर बदल करके अगर आप कृषि की बीजांत करा खेती की बीजांत करा तो अपन ज़्यादा फायदा हो जब फसल चक्र अपना गया आप बीजांत करता रहे तो एक तो आपनी जी की माटी की जी की उर्वरा शक्ति है बात तो बढ़िया बनेगी, इनके अलावा किसान भाइयों आपनी जी की फलत है वह भी बढ़िया होगी और आपने भाव भी फसल का अच्छा मिलेगा, फसल की जी की उन्नत किस्म लेगी आप बीजांत करांगा बढ़िया किस्म लेके बीजांत करांगा तो आपने जी की फसल है बिंग जी की दाणा की जी की चमक है वह भी एकदम बढ़िया बरकरार रहेगी बढ़िया बनी रहेगी। इन वास्ते किसान भाइयों जे आप हर साल बांध बांध की फसल बीजा यानी फसल चक्कर अपना आगे आप बीजांत करा तो अपनी माटी की उर्वरा शक्ति थानू बताई दियो का कायम तो रहेगी, इनके अलावा जो खर्चो पानी है बिंगे भी अपने चौखी बचत हो जाएगी। किसान भाइयों फसल चक्कर अपना आगे आप कई तरीका लाभ है बे आप ले सकें जी माटी को कटाव भी कम हुए, क्योंकि फसल चक्कर अपनाना चूँ कई तरह की ऐसी फसल है जगह की वजह से आपने ज़्यादा जुताई करनी पड़े ज़्यादा माटी इन्हें भी ना करनी पड़े, जे आप बांध बांध की अलग अलग तरह की फसल बीजाएंगे तो आपने ज़्यादा जुताई की भी इतनी ज़्यादा खेचल कौन करनी पड़े नहीं, एक माटी का जो कटाव है वो भी कम होगा। फसल चक्र से कई तरह की बीमारियाँ जहाँ कीट है बे भी कम लग है, कई तरह की जगह रोग है बे भी कम लग है, तो इन वास्ते किसान भाइयों आपने फसल चक्र अपनाना जरूरी है। किसान भाइयों फसल चक्र अपनाता टाइम इन बात को ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार आप गेरी जड़ वाली जी फसल है बिंग बादगम आप कम गेरी जी जड़ वाली फसल है बंगी बिजात करनी चाहिए, इसी फसलों की जड़ा ज़्यादातर गेरी और माटी के अंदर तक हुए जिस पौधा माटी के ऊपर से आप जो भोजन पानी है ना लेगी अंदर गहराई से पोषण ले लेवे, जगह की वजह से किसान भाइयों जमीन के ऊपरी स्तर पर मौजूद जगह जरूरी पोषक तत्व है बे अपने अपनी जी फसल है बिना काम को नहीं आवेनी, और आप जो दूसरी बारी बा ही फसल बीज तो माटी का जगह पोषक तत्व है बे धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, जे अपन फसल फेर बदल करके बीजांगा तो बीच भूमि की जगह उर्वरा शक्ति है बा तो बनी रहेगी और इन सगे जमीन में उर्वरा शक्ति पैदा होगी ताकत है बा भी अपन ने जमीन गमा

0: उन्नत किस्मां लेगे, अच्छी तरह बीज उपचारित करगे, अच्छी तरह अपनी जमीन ने जुताई करके और सागो पाटो लगा के अपा अपनी जी फसल है बिंगी बीजांत कर सका। तो आ बातों को ध्यान रखना जरूरी है सा। और इनके अलावा आपने खेत में अभी मौका असर की बात करा तो कई तरह जगह नरमा गमा या फिर ग्वार गमा, कई तरह जगह खरपतवार है, बना भी अब निकालना जरूरी है क्योंकि अब बरसात को मौसम चलने ला रहा है। तो बरसात के मौसम में अपनी जगह फसल है भी पूरी तरह देखभाल करनी है ताकि अपन बाद में कहीं भी तरह जगह अब खाई हवा ना हो। इन सगे सगे किसान भाइयों, आपने बरसात को मौसम चलने ला रहे हो तो आपन खेत का पानी भी थोड़ा सा मौसम के हिसाब से ही देना है क्योंकि अब बरसात के टाइम का कई बार हो जाए आप पानी लगा दें कुआ को या फिर नहर को और बाद में ऊपर बरसात हो जाए तो फिर अपनी फसल है वह खराब हो सके। सगे सगे किसान भाइयों, अभी कई तरह की जगह कीड़ा कांटा है क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम है इश्यू है जगह में कई तरह की जगह बीमारियां हैं, कई तरह की जगह रोग है या फिर कीट पतंग है भी अपनी जगह फसल अभी में लागने की संभावना रहे है। तो टेम सर आपने खेत में जाके और थोड़ा सा जाँच परख कर तो रहना चाहिए कि भी तरह की जगह अगर कोई रोग का लक्षण आपने दिखाई देवे या फिर कोई कीड़ा कांटा दिखाई देवे तो अपन तुरता फुर्त बिंगो जो को नियंत्रण है वो कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में फिर आज की बीमारी है या फिर कीट रोग ऐसे कभी ज़्यादा बच जाए तो फिर बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। तो आम बातों को ध्यान रखना जरूरी है सा, पर मैं खेत काम का और भी काम धंधा करना है हूँ चालू। राम राम सा, राम राम।
1: फसल चक्र और इसके लाभ। खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन का 1 बजने वाला है। ये समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, अधिकरण सुधार विधेयक, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के 603 लाभार्थियों को आवास आवंटन की चाबियां सौंपी। इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण के 473, कोटा विकास प्राधिकरण के 50 और जोधपुर विकास प्राधिकरण के 80 आवास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्का घर मिलने से इन परिवारों के नए जीवन की शुरुआत हो रही है और सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आवास के साथ इन परिवारों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने का भी काम करेगी। समाचार पढ़े जाने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। स्वायत्त शासन भवन में चल रही इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश की 309 नगर निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय किया जा रहा है। लॉटरी में अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकायों का चयन किया जा रहा है। राज्य में 400 सीएम राइज विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने

0: जयपुर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विशेषज्ञों को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल रोजगार परक प्रशिक्षण और भावनात्मक विकास का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य स्कूल छोड़ने की समस्या रोकने और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में आज सभी जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि कल से बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना है। इस बीच सवाई माधोपुर में सुबह हल्की बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में जमकर बादल बरसे। भीलवाड़ा सलूम्बर और उदयपुर में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक 14.5 सेंटीमीटर पानी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बरसा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर करौली अजमेर ब्यावर जयपुर बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। अच्छी बारिश के बाद बीसलपुर बांध में पानी पहुंचाने वाली त्रिवेणी नदी इस मॉनसून सीजन में पहली बार तेज बहाव के साथ बहती नजर आई। नदी का गेज 3 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। इससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लगातार बारिश और नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने चंबल से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम महिला जगत।

मिट्टी में मिल जाने से बेहतर है कि किसी के काम आ जाएं। मिट्टी में मिल जाने से बेहतर है कि किसी के काम आ जाएं। हमारे जाने के बाद भी किसी की सांसों में मुस्कुराएं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत अपनी सखी अलका वर्मा के साथ। आज 13 अगस्त है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन जो है विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करना है। अंगदान का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद अपने स्वस्थ अंगों और उत्कों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए दान करने की इच्छा व्यक्त करना। सोचिए सखियों, किसी परिवार के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उनका अपना कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसी व्यक्ति के अंग अगर किसी दूसरे ज़रूरतमंद इंसान को नया जीवन दे सकें तो दुख के बीच मानवता की एक नई रोशनी जन्म ले सकती है। हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े जैसे कुछ अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के जीवन को बचाने में मदद कर सकते हैं और इसी तरह आंखों के कार्निया जैसे उत्तक किसी व्यक्ति को फिर से देखने में सहायता कर सकते हैं। अंगदान को लेकर समाज में कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग डर या गलत जानकारी के कारण अंगदान से पीछे हट जाते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वसनीय चिकित्सा जानकारी जो है वो प्राप्त करें और अपने परिवार के साथ खुलकर इस विषय पर बात भी करें। अंगदान केवल अंग देने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के बाद भी जीवन बांटने की एक भावना है। अगर कोई व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेना चाहता है तो उसे अपने देश में निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया और चिकित्सीय नियमों के अनुसार पंजीकरण और सहमति की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। अपने परिवार के साथ बैठिए और अंगदान के बारे में बात कीजिए, सही जानकारी प्राप्त कीजिए, अपनी इच्छा स्पष्ट कीजिए और दूसरों में भी जागरूकता बढ़ाइए। आपका एक निर्णय जो है

है वो किसी दूसरे परिवार की उम्मीद बन सकता है। तो आइए इस विश्व अंगदान दिवस पर हम भी संकल्प लें कि अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और मानवता की इस भावना को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ अब वक्त है कार्यक्रम में गीत सुनने का। आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत फिल्म तीसरी कसम से। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

कहते हैं यादें ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होती है। बचपन की गलियां, गर्मियों की छुट्टियां, दादी नानी की कहानियां, परिवार के साथ बैठकर खाना, दोस्तों के साथ खेलना, चिट्ठियों का इंतज़ार और त्योहारों की रौनक, इन सब की यादें जब मन में आती हैं तो चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं सखियों, वे हमें बताती हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की, किन लोगों ने हमारा साथ दिया और किन अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया। लेकिन समय बदलता है और उसके साथ ही जीवन जीने के तरीके भी बदलते हैं, और यही जो बदलाव है ना, जीवन का स्वाभाविक हिस्सा भी है। पहले जो है, परिवार के लोग अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे। शाम होते ही घर के आंगन में चारपाइयां बिछ जाती थी, बच्चे खेलते थे और बड़े जो हैं वो अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से साझा करते थे। आज आंगन छोटे हो गए हैं, घरों की बनावट बदल गई है और बातचीत का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फ़ोन पर होने लगा है। पहले चिट्ठी आने में कई दिन लगते थे, लेकिन उस इंतज़ार में भी ना एक अलग ही खुशी होती थी, और आज संदेश कुछ ही सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। पहले जो है वो मनोरंजन के साधन सीमित होते थे, किताबें पढ़ लीजिए, लोकगीत होते थे, खेल और परिवार की बातचीत, और आज जो है वो हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे डिजिटल साधन भी हैं, और इस बदलाव को केवल अच्छा या बुरा कह देना तो उचित नहीं है। हर दौर की अपनी खूबियाँ और अपनी ही चुनौतियाँ होती हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, और ये जो वाक्य है ना वो अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव हमारे समय से जुड़ा होता है, लेकिन नई पीढ़ी का समय जो है वो अलग है। उनके सामने नई परिस्थितियां हैं, नई तकनीक है और नई ही आवश्यकताएं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई पीढ़ी की ऊर्जा को एक दूसरे का विरोधी ना बनाएं, बल्कि दोनों को जोड़ें। बुज़ुर्गों के पास जीवन का अनुभव है और युवाओं के पास नई तकनीक और नए विचार। जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से सीखती हैं ना, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। यादों को संभालें लेकिन उनमें कैद ना हों। बातें आपसे और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं मर्यादा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें मुकेश की हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

क्यों गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि यादों से सुकून मिलता है, लेकिन बदलाव को भी हमें समझना होगा। यादों का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि वे हमें भावात्मक जो है वो सहारा देती हैं। मुश्किल समय में बचपन की कोई भी प्यारी याद, माँ की आवाज़, पिता की सीख या किसी मित्र की मुस्कान मन को सुकून दे जाती है। लेकिन अगर हम हर नई चीज़ को केवल इसलिए नकार दें कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, तो हम बदलाव से जो है वो दूर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, डिजिटल भुगतान ने खरीदारी और लेन देन को जो है वो आसान बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण ने सीखने के नए रास्ते भी खोले हैं और वीडियो कॉल ने दूर रहने वाले परिवारों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। हाँ, इसके साथ डिजिटल धोखाधड़ी, स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की लत जैसी चुनौतियाँ भी जो है वो हमारे सामने आ गई हैं। इसीलिए ज़रूरत तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की नहीं, बल्कि इसको समझदारी से इस्तेमाल करने की है। समय बदल सकता है, लेकिन हमारे अच्छे संस्कार जो हैं वो नहीं बदलने चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति स्नेह रखना, परिवार के लिए समय, प्रकृति से जुड़ा मिल बांट कर रहने की भावना और दूसरों की मदद करने की आदत, ये मूल्य हर दौर में महत्वपूर्ण जो हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। हम चाहें तो पुराने समय की अच्छी आदतों को आधुनिक जीवन में फिर से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के साथ रोज कुछ समय बिना मोबाइल के बिताना, बच्चों को दादा दादी की कहानियाँ सुनने देना, त्योहारों पर साथ बैठना, किताबें पढ़ना और स्थानीय कला और परंपराओं को आगे भी बढ़ाना। बदलाव ने सखियों महिलाओं के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। आज जो हैं वो हम महिलाएं शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, विज्ञान, कला, खेल और बहुत सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रही हैं। पुरानी पीढ़ियों की महिलाओं ने सीमित संसाधनों में परिवार और समाज को संभाला। नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, और दोनों पीढ़ियों के अनुभवों को जोड़ना ज़रूरी है। पुरानी पीढ़ी का अनुभव और नई पीढ़ी का आत्मविश्वास मिलकर महिलाओं के लिए बेहतर भविष्य बना सकता है। यादों से हमें सुकून मिलता है, वे हमारी पहचान है सखियों, और हमारी भावात्मक विरासत भी हैं। लेकिन जीवन केवल अतीत में नहीं चलता, हमें वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए तैयार रहना भी ज़रूरी है। पुराने समय की अच्छी बातें आप अपनाइए, वर्तमान की ज़रूरतों को समझिए और भविष्य के बदलावों को खुले मन से स्वागत कीजिए। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संबंध से। आवाज़ मुकेश की है, संगीत ओपी नैयर का है और इस गीत को लिखा है प्रदीप कुमार ने।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: सो क्यों आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और आज इस कार्यक्रम में आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी अलका वर्मा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। आज के डिजिटल दौर में ना सखियों, क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारे लिए खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान और आपातकालीन खर्चों में काफ़ी सुविधाजनक बन गया है। जेब में नगद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, भुगतान भी जो है वो तुरंत हो जाता है और कई कार्डों पर रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक या दूसरी सुविधाएं भी जो हैं वो हमें मिल रही हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है हमारा असली सवाल कि क्या क्रेडिट कार्ड हमारी जेब का दोस्त है या धीरे धीरे हमें कर्ज की ओर ले जाने वाला जाल है। क्रेडिट कार्ड को आसान भाषा में समझें तो ये बैंक का वित्तीय संस्था की ओर से दी गई एक निर्धारित क्रेडिट सीमा होती है, यानी कि बैंक आपको एक सीमा तक पैसा खर्च करने की जो है वो सुविधा देता है और बाद में उस खर्च का भुगतान आपको करना होता है। मान लीजिए कि ये आपने क्रेडिट सीमा 50,000 रुपये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खाते में 50,000 रुपये जमा हैं। ये वह राशि है जिसे आप उधार के रूप में खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको बाद में बैंक को चुकाना होगा। और यही बात जो है समझना सबसे ज़रूरी है कि माया जाल जो है वो कहाँ से शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा आकर्षण है अभी खरीदिए, बाद में भुगतान कीजिए। नई ड्रेस पसंद आई, मोबाइल पसंद आ गया, घर के लिए कोई सामान जो है वो हमें अच्छा लगा या ऑनलाइन सेल में कोई चीज़ दिखाई दी तो मन कहता है कि अभी खरीद लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे खरीदारी बड़ी राशि में जो है वो बदल सकती है। मान लीजिए कि आपके महीने भर में कई छोटी खरीदारी की और हर खरीदारी उस समय तो हमें मामूली लगी, लेकिन जब बिल आने पर पता चला कि कुल जो रकम है उन सभी चीज़ों की वो जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो करते समय सबसे ज़रूरी है कि खर्च करने से पहले अपने भुगतान की क्षमता देखिए। हमें ये देखना होगा कि हम हर महीने कितना भुगतान कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हमें सामान जो है वो खरीदना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बिल में अक्सर मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी कि न्यूनतम देय राशि दिखाई देती है। यहाँ जो है वो हमें सावधान रहना ज़रूरी है। केवल न्यूनतम राशि जमा कर देने से पूरा बिल समाप्त नहीं हो जाता है, बाकी बकाया राशि पर कार्ड सबसे ज़्यादा जो है वो सुरक्षित आदतों में से एक होता है। ऑफ़र या डिस्काउंट का आकर्षण आज ही खरीदें और 20% बचाएं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर विशेष छूट, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, ऐसे ऑफ़र जो हैं वो हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन याद रखिए, छूट तभी बचत है जब वह वस्तु वास्तव में ज़रूरी हो। अगर केवल छूट के कारण आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो ये बचत नहीं है, ये बल्कि अतिरिक्त खर्च है। बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं सखियों, तो थोड़ा सा विराम देते हैं और आपको अगला गीत सुनवा देते हैं और फिर इस विषय पर चर्चा और करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा करना भी ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आप सुन लीजिए ये गीत उपासना फिल्म से, आवाज़ मुकेश की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है इंदीवर ने।

सुखियों कार्यक्रम में हम आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल। और बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी बातें करेंगे भी, जैसे कि हम महिलाओं के लिए जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है वो एक उपयोगी साधन हो सकता है, लेकिन इसे घरेलू आय का अतिरिक्त स्रोत समझना जो है वो ठीक नहीं है। महीने की शुरुआत में बजट बनाइए और क्रेडिट कार्ड से किए गए हर खर्च को उसमें शामिल कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े, प्रोडक्ट्स जो हैं आप वो खरीदते हैं, बच्चों की चीज़ें खरीदती हैं या घर का सामान, हर चीज़ का जो है वो आपको हिसाब रखना चाहिए। एक छोटा सा नियम अपनाइए कि जितना समय पर चुका सके उतना ही खर्च करें। क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ायदे भी हैं। क्रेडिट कार्ड को केवल नकारात्मक नज़र से देखना जो है वो सही नहीं होगा। ज़रूरत के समय ये सुविधाजनक भुगतान साधन हो सकता है। ऑनलाइन बुकिंग और ख़रीदारी में इसका इस्तेमाल आसान है और कई कार्डों में रिवार्ड या कैशबैक जैसी सुविधाएं जो है वो भी हमें मिली जाती हैं। इसके अलावा समय पर भुगतान करने और कार्डों की शर्तों का जिम्मेदारी से पालन करने

आपका क्रेडिट इतिहास भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन इन फायदों का लाभ तभी है जब कार्ड का इस्तेमाल अनुशासन के साथ किया जाए। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा भी जो है वो ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कार्ड नंबर, CVV, पिन या OTP साझा ना करें। बैंक के नाम पर आने वाले संदिग्ध फ़ोन, संदेश या लिंक से हमेशा सावधान रहें। और याद रखें, OTP किसी के साथ साझा नहीं करना है हमें। अगर कार्ड खो जाए या कोई संदिग्ध लेन देन दिखाई दे तो तुरंत अपने कार्ड जारी करने वाले बैंक की आधिकारिक सहायता सेवा से संपर्क जरूर करें और उस कार्ड को ब्लॉक करवाएं। 4 आसान से नियम हमेशा याद रखिएगा। ज़रूरत और इच्छा में अंतर को समझें। हर महीने के खर्च का हिसाब रखें। बिल की पूरी राशि समय पर चुकाने की कोशिश करें और कार्ड की ब्याज दर, शुल्क, भुगतान की तारीख और अन्य नियमों को आप पहले ही ध्यान से पढ़ें। तो सखियों, क्रेडिट कार्ड अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। असली बात यही है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम बजट बनाकर ज़रूरत के अनुसार और समय पर भुगतान करते हैं तो इसका इस्तेमाल अच्छा है और सुविधा का साधन भी ये जो है वो हमारे लिए बन जाता है। लेकिन बिना हिसाब के खर्च, लगातार बकाया और न्यूनतम भुगतान की आदत हमें कर्ज के बोझ की ओर भी ले जाती है। इसीलिए अगली बार जब क्रेडिट कार्ड हाथ में हो तो कोई आकर्षक ऑफर सामने आए तो पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या मुझे इस चीज़ की सच में ज़रूरत है और क्या मैं इसका पूरा भुगतान समय पर कर पाऊँगा। अगर इसका जवाब हाँ है तभी बढ़िएगा आगे, अगर ना है तो उस चीज़ को कभी मत लीजिएगा और इस तरह की मायाजाल से मुक्त रहिएगा। और फिलहाल तो वक्त है एक और गीत सुनने का, तो आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और फिल्म का नाम है विश्वास।

क्योंकि कार्यक्रम में इस समय वक्त हो चला है रसोई घर की तरफ रुख करने का, और आज इसमें हम बात करेंगे दही और छाछ का सही उपयोग किस तरह से होना चाहिए। तो सखियो, दही और छाछ जो है वो भारतीय भोजन का एक पारंपरिक हिस्सा रहा है। गर्मियों में एक कटोरी ताजा दही या एक गिलास छाछ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ शरीर को तरल पदार्थ और कुछ पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दही कब खाना चाहिए और छाछ कब पीनी चाहिए, और किन लोगों को सावधानी जो है वो इसमें रखनी चाहिए। तो बात करें दही की, तो दही में प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवित लाभकारी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, हालांकि ये मात्रा और उत्पाद के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। दही को भोजन के साथ लिया जा सकता है, इसे सादा खाएं या इसमें भुना जीरा, थोड़ा सेंधा नमक या सब्जियां मिलाकर रायता बनाकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि बाजार से मिलने वाले मीठे या फ्लेवर्ड योगर्ट में अतिरिक्त चीनी हो सकती है, इसीलिए रोज़मर्रा के उपयोग के लिए सादा बिना अतिरिक्त चीनी वाला दही जो है घर का बना हुआ वो बेहतर विकल्प हो सकता है। बात करें छाछ की, तो छाछ जो है वो दही को पानी के साथ फेंट कर बनाई जाती है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गर्म मौसम में यह भोजन के साथ एक हल्का पेय है। दोपहर के भोजन के साथ छाछ लेना कई लोगों को पसंद होता है। इसमें भुना जीरा, पुदीना या धनिया मिलाकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, लेकिन छाछ को बहुत ज़्यादा नमक डालकर पीने से बचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्हें डॉक्टर ने नमक कम लेने की सलाह दी है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने भोजन और ज़रूरत के अनुसार दही और छाछ को आहार में ले सकता है। बच्चों के लिए भी दही पौष्टिक आहार का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते कि उन्हें इससे कोई एलर्जी ना हो। बुजुर्गों के लिए भी अगर बात करें तो दही उपयोगी है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और पाचन क्षमता को हमेशा जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। कच्चे या असुरक्षित दूध से बने उत्पादों से सखियों हमें जो है वो बचना चाहिए। बातें आपसे और भी करेंगे इस विषय पर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और गीत सुनने का। तो अगला गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म ठोकर से, संगीत श्याम जी का है और गीत लिखा है साजन देहलवी ने।

तो क्यों हम बात कर रहे हैं कि दही और छाछ का सही उपयोग हमें कब कब करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानी जो है इन्हें खाते वक्त रखनी चाहिए। तो कुछ लोगों को दूध और दूध से बने पदार्थों में मौजूद लैक्टोज पचाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को दही या छाछ लेने के बाद पेट फूलना, गैस, दस्त जैसी समस्या जो है वो हो सकती है। ऐसी स्थिति में मात्रा कम करना या डॉक्टर या अपने डाइटिशियन से सलाह लेना उचित है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है उन्हें दही या छाछ समस्या दे सकता है और उन्हें भी अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही इसे लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी के कारण भोजन में पोटेशियम, फास्फोरस, तरल पदार्थ या नमक सीमित करने की सलाह दी गई है तो दही छाछ की मात्रा आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर तय कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए रात में दही जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को रात में दही खाने से गैस, भारीपन या परेशानी होती है तो उसे रात को खाने से बचना चाहिए, अन्यथा अपनी व्यक्तिगत सहनशीलता और भोजन की आदतों के अनुसार जो है वो आप इसे ले सकते हैं। दही से रायता, कढ़ी, लस्सी और बहुत सारी सब्जियां बनाई जा सकती हैं। छाछ में पुदीना, धनिया, भुना जीरा और थोड़ी सी मात्रा में नमक डालकर एक स्वादिष्ट पेय भी बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि दही या छाछ किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये संतुलित आहार का एक हिस्सा है। बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि घर में दही छाछ बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा और सुरक्षित दूध का उपयोग करें और डेयरी उत्पादों को उचित तापमान पर रखें। बहुत देर तक कमरे के तापमान पर रखे दही या छाछ का सेवन ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को जबरदस्ती दही या छाछ पिलाने के बजाय उनकी पसंद और पाचन क्षमता को आप ध्यान में रखें। सके दही और छाछ हमारी पारंपरिक थाली के स्वादिष्ट और पौष्टिक हिस्से हैं। इन्हें सही मात्रा में सुरक्षित तरीके से और अपनी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार भोजन में शामिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य का मंत्र केवल यह नहीं है कि क्या खाएं, बल्कि यह भी है कि कितना, कब और किसे खाना उपयुक्त है। और इसी जानकारी के साथ आइए सुनवाते हैं अगला गीत उपकार फिल्म से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

क्यों आज के कार्यक्रम में हमने आपसे बहुत सारी बातें की, कुछ प्यारे प्यारे आपको गीत सुनवाए, और अब जो समय हो चला है वो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर है। तो अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति, फिल्म मेरा नाम जोकर से, आवाज़ मुकेश की, संगीत शंकर जयकिशन का, और गीत लिखा है नीरज ने।

0: Independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
4: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
5: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित।

0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
1: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
2: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
3: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
5: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है।

0: कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम केरकेट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
2: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल

0: बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत। सभी सुनने वालों का नमस्कार है, संजय बैद की ओर से। श्रोतों, गीत आप पहचान चुके हैं, पुरानी नागिन फिल्म का ये नगमा। ये फिल्म आई थी 1954 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं अभिनेता प्रदीप कुमार और अभिनेत्री वैजयंती माला की। उन्हीं वैजयंती माला का आज जन्मदिन है। आज से 93 वर्ष पूर्व 13 अगस्त 1933 को चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में उनका जन्म हुआ था। एक उत्कृष्ट अभिनेत्री, कुशल नृत्यांगना और कर्नाटक संगीत की गायिका के साथ साथ राजनीति में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। अपने अभिनय के दम पर लंबे समय तक उन्होंने सिने जगत में अपने दर्शकों के दिलों पर राज किया। 16 वर्ष की आयु में तमिल फिल्म वाजकाई से अपने अभिनय करियर की उन्होंने विधिवत रूप से शुरुआत की और पहली जो हिंदी फिल्म थी वो थी उनकी 1951 में आई बहार, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने का उन्हें अवसर मिला था। और उनकी पहली फिल्म की बात करें तो वो नागिन थी जो 1954 में आई थी। आज के इस प्रोग्राम में वैजयंती माला की फिल्मों के कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। शुरुआत करते हैं नागिन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसको गाया लता मंगेशकर ने, इस गीत को लिखा राजेंद्र किशन ने और मधुर धुन तैयार की हेमंत कुमार ने।

नागिन फिल्म की सफलता के बाद वैजयंतीमाला का तो फिल्मी करियर सफलतापूर्वक आरंभ हो गया। 1955 में ऐतिहासिक फिल्म देवदास में उन्हें चंद्रमुखी का किरदार निभाने का अवसर मिला और इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि फिल्म में जो उनकी भूमिका थी वो सहायक अभिनेत्री की नहीं थी बल्कि मुख्य भूमिका थी। इसके बाद 1956 में नई दिल्ली, 1957 में नया दौर, 1958 में फिल्म आई थी मधुमति जिसमें उन्हें 3 किरदार निभाने का अवसर मिला था और इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। वैजयंतीमाला अपने दौर की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें उस समय पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया। अपने समकालीन जो भी अभिनेता थे, चाहे वो दिलीप कुमार हों, प्रदीप हों, देवानंद हों, राज कपूर हों, राजेंद्र कुमार हों, हर कलाकार के साथ उन्हें अभिनय करने का अवसर मिला। वैजयंतीमाला की फिल्मों के लगभग सभी गीत सुपर डुपर हिट रहे थे। लता मंगेशकर ने उनकी ज़्यादातर गीतों का आवाज़ दी थी, लेकिन जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें आशा भोंसले ने वैजयंतीमाला को अपना स्वर दिया, साथ दिया मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म आई थी 1957 में, सह कलाकार थे सुपरस्टार दिलीप कुमार। इस गीत को लिखा साहिर ने और संगीत तैयार किया ओपी नैयर ने।

वैजयंतीमाला को 1968 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। गंगा जमुना जो 1961 में आई थी, उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म संगम के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया, जहां गंगा जमुना एक सीधी साधी लड़की का अभिनय वैजयंतीमाला ने किया था, वहीं राज कपूर की संगम में उन्होंने स्वयं कॉस्ट्यूम भी पहना और एक ग्लैमरस भूमिका भी अदा की थी। इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, लता का गाया हुआ। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने।

बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, शांत चेहरा और दिल को खुश कर देने वाली मुस्कान विजयंती माला की एक पहचान थी। दक्षिणी अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में स्थापित करने का श्रेय विजयंती माला को दिया जा सकता है। विजयंती माला भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों में स्थान दिया गया था। 1954 से लेकर 1967 तक की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वो शामिल थी और 6 वर्षों तक वो सूची में शीर्ष पर रही थी। विजयंती माला ने ज्वेल थीफ में देवानंद के साथ काम किया था, जो एक थ्रिलर फिल्म थी। इसी का गीत हम आपको सुनवाते हैं, लता का गाया हुआ। गीत मजरू ने लिखा, संगीत एस टी बर्मन ने तैयार किया।

विजयंतीमाला एक उत्कृष्ट अभिनेत्री के साथ साथ भरतनाट्यम की भी अच्छी कलाकार थी और उन्होंने विदेशों में भी शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया था। 1969 में संयुक्त राष्ट्र की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानवाधिकार दिवस समारोह में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना भी बनी। फिल्मों में संन्यास के बाद वो राजनीति में आई और 1984 से लेकर 89 तक लोकसभा की सदस्यता रही और 1993 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया। पद्मश्री के बाद भारत सरकार के द्वारा 2024 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलते चलते उन्हीं की फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा देते हैं, जिसमें उनके साथ अभिनय किया था राजेंद्र कुमार ने। इस गीत को गाया मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर ने। गीत मजरूह का, संगीतकार नौशाद।

अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभिनेत्री वैजयंती माला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हीं की फिल्मों के नगमे सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। संध्या के 3 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

सामिन आपको बता दें, ठीक कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। आज इस प्रोग्राम में सुनिएगा एक मुबाइसा, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी। 4:00 हम अपना खसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे हर घर तिरंगा। 4:10 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामईन तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

जर्सी और मैसाचुसेट्स के बाद डेलावेयर रियासत ने भी इस बारे में ऐलान जारी किया है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने एक ऐलानिए पर दस्तखत किए और तमाम शहरियों से जोर देकर कहा कि वो इंडिया डे मनाएं। ऐलानिए में कहा गया है कि ये दिन भारत की आज़ादी का एहतराम करने, विरासत और दिलावरे की भारतीय अमरीकी बरादरी की हुसूलियाबियों को याद करने का मौका फ्राहम करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि अमरीका कलीदी अहमियत के हामिल इस आबी गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अमरीकी कार्रवाइयों के तनाजुर में मौसर जवाबी कार्रवाई करने की अपनी सलाहियत खो चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में ईरान की फौजी और सियासी कुव्वत कमज़ोर पड़ जाने का हवाला दिया। सर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान को शदीद इकतसादी बहरान का सामना

0: अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अमरीकी कार्रवाइयों के तनाजुर में मौसर जवाबी कार्रवाई करने की अपनी सलाहियत खो चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में ईरान की फौजी और सियासी कुव्वत कमज़ोर पड़ जाने का हवाला दिया। सर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान को शदीद इक्तसादी बहरान का सामना है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अब इलाकाई असर व सूख का इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा कि वो पहले किया करता था। अलबत्ता ईरान की तरफ से इस पर कोई फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया है। अमेरिका में फौज का एक अपाची हेलीकॉप्टर मरकजी टेक्सास में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों अफराद की मौत हो गई और एक जंगलाती इलाके में आग भड़क उठी, जिसके बाद कई मकानात को खाली कराया गया। फोर्ट हुड की जराइम की तहकीकात से मुतालिक डिवीजन इस हादसे की जांच कर रही है। ओमान ने इस बात की तस्दीक की है कि उसके साहिल से दूर एक तेल टैंकर से तेल का रिसाव उसके साहिल तक पहुंच गया है। 899 फुट के टैंकर कैरोलिना बेजंजी में रवां साल जून में उस वक्त एक धमाके की इत्तला मिली थी जब तकरीबन 1 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल लेकर जा रहा था। किसी ने भी अब तक इस वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ली है और इस धमाके की वजह भी अब तक मालूम नहीं हो सका है। ओमान की माहौलियात से मुतालिक अथॉरिटी का कहना है कि तेल की रिसाव से होने वाली आलूदगी का असर ओमान के रास मुद्रका के साहिल तक पहुँच चुका है। कोलंबिया के सदर ने इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि हुकूमत वहाँ आए ताकतवर जलजले के बाद राहत और बाज़ाबादकारी के लिए गैर मामूली इकदाम कर सके। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जलजले से कम 265 अफराद हलाक और 3,494 जख्मी हुए हैं। उन्होंने जलजले को बहुत बड़ा सानहा बताया और कहा कि हुकूमत मुतासर कुंभों, कारोबारियों और बरादरियों की मदद के लिए फौरी इकदाम कर रही है। पीर को कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का जलजला आया था। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में जान माल के नुकसान पर सदमे का इजहार किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुन अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून अजलास पिछले महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये अख्ताम पजीर हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 नशस्तें हुईं। मानसून अजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस मुबहसा हुआ। पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तौहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल असलाहत बिल, टैक्स और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला के का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। मॉन्ट्रियल में खेले गए सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने स्पेन के राफेल जुदार को 7-6 और 6-4 से हराया, जबकि मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने अमेरिका के ही लर्नर टेन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाज की हिमायत में आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों ने 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खुसी तौर पर ऐलान किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। और कोलम्बिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत की कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद।

और समेली जब सुनिए, तलत महमूद, आमिर बाई कर्नाटकी और साथियों को फिल्में मतलबी दुनिया, मौसीकारिन सुशांत बनर्जी।

0: मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखाई गीत, जिसे मौसीकी सजाया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। अंदाज़ नज़र के तहत आज के इस मुजाकरे का मौजू है जद्दोजहद आज़ादी और मुश्तरका तहजीब की उसूलियाबियाँ। और इस मुजाकरे में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर सुचिता महाजन और प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज़ादी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज़ादी हमको यूं ही बड़ी आसानी से नहीं मिली, ये हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद और काविशों से हमें हासिल हुई है। अगर जद्दोजहद आज़ादी का जिक्र करें तो अंग्रेज़ों के जुल्म की दास्तानें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह का जुल्म सहकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसकी आला मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और हमारे बुजुर्गों के जरिए दी गई कुर्बानियों को याद करनी चाहिए। 15 अगस्त हमारे मुल्क की तारीख में सबसे अहम तारीखों में से एक है। ये वही दिन है जिसे हम बरतानिया के हुक्मरान से आज़ाद बन गए। आज़ादी के दिन हम सबको याद दिलाता है कि हम एक अजीम मुल्क के शहरी हैं और हमें इसकी इत्तेहाद की हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कौमी परचम और कौमी गीत का एहतराम करना होगा। हमें अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों की तरह वतन दोस्त होना चाहिए। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी एक कौमी त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये हिंदुस्तान के लिए एक अहमियत का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को तवील अरसे की गुलामी के बाद बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी मिली। बरतानवी सल्तनत से इसकी आज़ादी की खुशी मनाने के लिए कौमी छुट्टी करार दिया गया। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना आसान नहीं था। ताहम हमारे आज़ादी पसंद जंगजू सियासी कायदीन और हिंदुस्तान के अवाम आज़ादी हासिल करने के लिए पुरअज़्म थे। आखिरकार वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हो गए जब हिंदुस्तानी दस्तूर साज असम्बली को मुकम्मल कानून साजी के अख्तियार दिए गए। बहुत से लोगों ने अपनी राहत आराम और आज़ादी की फिक्र किए बगैर अपनी आने वाली नस्लों की आज़ादी के हुसूल में अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने मतलब आज़ादी के हुसूल के लिए मुतअद्दिद आज़ादी की तहरीकों का मंसूबा बनाया और उन पर अमल किया। प्रोफेसर सुचिता महाजन जी, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद आज़ादी रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ऐसा है कि दो बातें रखना चाहती थी मैं यहाँ। जैसे आपने पहले कहा कि हमारी अचीवमेंट्स जो है वो तो बहुत है, उनकी पूरी एक लंबी हम गिनती कर सकते हैं, उसमें हम आएंगे बाद में। लेकिन दो बातें जो बहुत ही जरूरी है ये देखनी, वो है कि जो आज़ादी हमें मिली वो एक तोहफा नहीं था। अगर हम देखें ब्रिटिश की तरफ से, उनकी जो किताबें हैं आज तक भी जो चलती हैं, वो एक कोशिश करते हैं दिखाने की कि जिसका वो शब्द यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, कि वो एक सत्ता थी और उन्होंने वो सत्ता जो थी एक समय आया और वो उन्होंने भारतीय लोगों को वो हस्तांतरण उसका हो गया, सत्ता ट्रांसफर हो गई। ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत ही, जैसे आपने कहा, कुर्बानियां थी। एक पूरी आजादी की जो लड़ाई थी, बेहद जद्दोजहद के बाद ये आजादी जो है ये हमें हासिल हुई। आजादी जो है हमने हासिल की और हमने बिल्कुल उनके, जैसे कहते हैं, शेर के मुंह से हमने ये खींचा। हालांकि हमने, और ये भी बहुत एक दिलचस्प बात है, कि नॉन वायलेंस, बिना हम हिंसा का हमने जो है एक रास्ता था वो नहीं अपनाया। वायलेंस का रास्ता हमने नहीं अपनाया, लेकिन नॉन

0: का रास्ता अपनाते हुए भी हमने इतनी ताकत हमारे लोगों में, गांधी जी और उनके साथी जो थे, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो उसमें थी वो थी कि जो एक आतंक था, जो एक डर था, भय था जो लोगों के मन में, वो दूर हुआ कि जो ब्रिटिश ताकत का एक अर्थ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी आजादी की लड़ाई थी वो सन 47 में खत्म नहीं हुई। ये हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 19वीं शताब्दी के हैं। तो उन्होंने लिखा, एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था नेशन इन द मेकिंग, जिस मतलब है कि जो हमारा राष्ट्र जो है, ये ऐसी बात नहीं है कि एक समय आता है कि किसी राष्ट्र का जन्म होता है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक जिसमें एक जो नेशन है कि सन 47 में हमारे लोगों में इतनी ताकत थी कि ब्रिटिश ने बहुत सूझबूझ से ये बात समझ ली कि अब हम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते
1: सही
0: और वो चले गए।
1: जी
0: लेकिन ये जो नेशन बनने की जो प्रक्रिया है,
1: जी
0: उसकी जो सोशल एस्पेक्ट है,
1: जी
0: सोशल पहलू है, उसका जो आर्थिक पहलू है, उस क्रांति का जो है, उस आजादी का, वो पूरा नहीं हुआ
1: जी
0: 1947 में। और आजादी की बाद की जो सरकारें थी,
1: जी
0: उन्होंने ये जो क्रांति थी, सामाजिक और आर्थिक क्रांति,
1: जी
0: और सामाजिक और आर्थिक पहलू से किस तरह से देश को आजाद बनाया जाए।
1: सही
0: तो केवल साम्राज्यवाद से आजादी की बात नहीं है, भूखमरी से आजादी की बात है, एक किस तरह से हमने इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो कैसे हमने पाई, गरीबी के खिलाफ हमने लड़ाई कैसे लड़ी, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वाधीन विदेश नीति वो कैसे यहाँ पे हमने इवॉल्व की। एक समय था 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू की जो उनका इमेज था पूरे विश्व में एज अ स्टेट्समैन, वो
1: जी
0: कहीं भी ब्रिटिश लोगों से ज्यादा था। तो ये सब हमारी जो उपलब्धियां हैं, ये
1: जी
0: हमें याद रखते हुए ये बात हमें बहुत जरूरी है, ये बात को समझना कि देश जो है वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी समय वो जन्म होता है,
1: जी
0: वो हर समय बनता है और बिगड़ता है। तो ये नेशन इन द मेकिंग से अगर हम समझे, तो मुझे लगता है कि हम जो 47 तक की, जो 47 के बाद की जो लड़ाई है, जो कि सामाजिक आर्थिक क्रांति किस
1: जी
0: तरह से लाई जाए और वहां पे आजादी कैसे मिले, ये
1: सही
0: दोनों पहलू हमें
1: जी
0: एक साथ लेकर समझना जो है, ये बहुत जरूरी है।
2: जी
1: अच्छा
2: जी प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब, जैसा कि जद्दोजहद आज़ादी और जैसा कि मैडम ने बताया बहुत सी चीज़ें,
1: जी
2: और हमारी जो मुश्तरक तहजीब की जो हुसूलियाबी आई,
1: जी जी
2: इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें।
3: इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये कि मौजू बहुत अच्छा है। मैडम ने बहुत सी जो बातें की हैं वो बुनियादी बातें हैं। मसलन ये कि तोहफा नहीं है, मसलन ये है कि ये प्रोसेस है, मेकिंग का, बनने का प्रोसेस है, वो चल रहा है। जो आपका ये खास टॉपिक है, ये मौजूद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला पहला जो आपने जद्दोजहद आज़ादी, नंबर 2 ये है कि हमारे जो कंपाउंड कल्चर है, जो मुश्तरक तहजीब है, वो सवाल ये उठता है कि वो क्या है। फिर तीसरा यह है कि हमने क्या हासिल किया। ये 3 आपके फैक्टर्स हैं इसमें, ये 3 सवाल हैं। जद्दोजहद आज़ादी तो ये समझ लीजिए दुनिया में जब 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त तक और बहुत से ममालिक गुलाम थे, और खुद हमारा करीबी मुल्क चाइना जो है वो भी उसी वक्त आज़ाद हुआ, और फिर बाद में तो स्पेन वगैरह वगैरह की कॉलोनीज वगैरह जो आज तक अभी तक आज़ाद हो रही हैं। तो ये सिलसिला जो है वर्ल्ड वाइड जो आज़ादी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान एक अलग टाइप का मुल्क है दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ। यानी इन इन मानों में कि एक तो आबादी के लिहाज से बहुत वसीतर है, फिर यहाँ तबकात के लिहाज से, फिरकों के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, ये तमाम जो जितने कैटेगरीज हैं, इतनी कैटेगरीज के सामने देखा जाए तो ये कैटेगरीज सब किस तरह से एक मसले को लेकर और एक मोटो को लेकर, एक मकसद को लेकर एक प्रचंड तले आ गए और उन्होंने जद्दोजहद की। अब जद्दोजहद के मानी ये नहीं है कि हमने जद्दोजहद की साहब के हम एमए

0: बीए कर लें, और हमने कर लिया और बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं कि आप किस तरह से अपने पेशे को हमारे आवाम के लिए मुफीद मतलब बनाएंगे। सिर्फ पैसे की मशीन नहीं होता कोई भी प्रोफेशन या कोई भी डिग्री। इसी तरह से आज़ादी हासिल करने के बाद ये नहीं है कि हमने सब कुछ पा लिया, यानी एक तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। यानी जिम्मेदारी वो है कि जो कॉलोनाइजर है वो कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी है कि वो अपना आबाद रखे, यहाँ की गुर्बत को देखे, जहालत को देखे, यहाँ के तालीमी निज़ाम को देखे, इनसे सब मसाइल हल करे। एक तो वो है आस्पेक्ट जो कि अंग्रेज कर रहे थे, यहाँ पर कॉलोनाइजर कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ा आस्पेक्ट ये है आज़ादी हासिल करने के बाद जो कुछ भी हमने जो एक कॉन्सेप्ट तस्वुर कायम किया था कंट्री के लिए, ये नहीं कि हमने आज़ादी हासिल कर ली थी यूं ही, बल्कि हमारा पूरा एक तस्वुर था, एक कॉन्सेप्ट था, उसे हमें अमलावर करना था, अमली तौर पर हमें उसे सामने लाना था। अब उसमें चूंकि मैंने ऐसा अर्ज किया कि ये तबकात में बटा हुआ मुल्क था, स्टेट्स में, इलाकों में, ज्योग्राफिकल यूनिट्स में बदला में, कई यूनिट्स में तस्सीम था ये वतन, फिर फिरकों और मजाहिब के साथ साथ, अब इन सब को एक करके आज़ादी के बाद जो कि जद्दोजहद, पहले जद्दोजहद में सब ही शामिल थे
1: जी,
0: अब इसके बाद ये सब को कैसे एक तरह से एक ताकत बनाया जाए, तो उसके लिए कौम का तस्वुर, नेशन, कि हमारा नेशन, व्हाट इज नेशन, कौम क्या है। कौम किसी मजहब का नाम नहीं है, कौम किसी तबके का नाम नहीं है, कौम किसी कास्ट का नाम नहीं है, बल्कि कौम के मायने यह है कि कौम में ये तमाम रंग मिलकर एक खूबसूरत रंग बनाते हैं
1: जी,
0: ये सब मिलकर, उसमें मिल्लतें सबमिट गई, अज़ाए इमा हो गई, गालिब ने कहा है। तो ये सब जो कैटेगरीज जब ये दीवारें टूट गई, तो ये सब ये नहीं बिखर गए
1: जी,
0: बल्कि दीवारें टूटने के बाद ये सब एक तरह से एक वहदत में, एक यूनिफाइड शक्ल में हमारे सामने आई। तो ये कौम का जो तस्वुर है, हमने इसको कायम रखने के लिए हमारे पास क्या क्या क्या, क्या सूरतें थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये थी कि हम इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, हम इस आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम सबको साथ लेकर चलें
1: जी,
0: जिसको आप मुश्तरका तहजीब कहते हैं
1: जी।
0: अब मुश्तरक तहजीब के मायने ज़ाहिर है कि मुश्तरक तहजीब कल्चर का कॉन्सेप्ट, और फिर यह कि मुश्तरक क्या है, क्यों है ये। हम जाते हैं चिली, वहाँ कोई मुश्तरक तहजीब का नाम नहीं लेता। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ कोई मुश्तरक तहजीब का नाम नहीं लेता। हम जाते हैं ईरान, वहाँ कोई मुश्तरक तहजीब का नाम नहीं लेता। हम जितने भी आज़ादी के बाद जो कंट्रीज हैं, मैं चाइना भी गया तो वहाँ भी कोई मुश्तरक तहजीब का नाम नहीं लेता। हमारे यहाँ ही मुश्तरक तहजीब का नाम लिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे बड़ी अकलियत दुनिया की यहाँ मौजूद है
1: जी।
0: यानी एक एक पूरा कंट्री बन सकता है जिससे कि वो एक ऐसी अकलियत है, और दूसरी छोटी अकलियतें और हैं। तो इस एतबार से सबको एक नेशन में जोड़ दिया गया, और उनके लिए सबका तहफ्फुज़ इसी में था कि तमाम जितने भी कास्ट हैं, जितने भी तबकात हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मजाहिब हैं, ये सब अपने दस्तूरुल अमल के साथ, अपनी कन्वेंशंस के साथ, अपने तहजीबी अदाइम के साथ ये कायम रहें
1: जी।
0: और वो सब मिलकर, हम सब मिलकर मुल्क की तामीर की जद्दोजहद में शामिल हों, इसलिए एक मुश्तरक तहजीब का तस्वुर गायब हुआ। अब मुश्तरक तहजीब का तस्वुर के साथ तहजीब का भी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, क्या है। दरअसल कल्चर जो है ये उन चंद अल्फाज में से एक है डिक्शनरी, जो बहुत ही एम्बिगुअस है, बहुत ही पेचीदा है, जितना इतना वाज़ह कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। इसलिए आज की इस मॉडर्न पीरियड में, जैसे इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, कल्चर ये मास कल्चर और फुलहाल कल्चर सबको एक कर दिया गया। अब कोई टुकड़ों में नहीं बांटता, कल्चर मीन्स वन कल्चर। अब ये वो ये नहीं सब गरीब वो कल्चर क्या है, वहाँ पे कल्चर क्या, शहर का कल्चर क्या, गांव का कल्चर क्या, नो, कल्चर मीन्स कल्चर। अब इस लिहाज से मुश्तरक तहजीब के कल्चर में कन्वेंशन अलग अलग। आप यूँ गौर कीजिए कि हम अगर साउथ में जाए तो वहाँ एक अलग कल्चर मिलता है, रहन सहन के, खाने पीने के तरीके, जबान वगैरह, वो सब मुख्तलिफ है। शमाल में जाए तो वहाँ मुख्तलिफ है, लेफ्ट में जाए, ईस्ट में जाए वहाँ मुख्तलिफ है, वेस्ट में जाए तो वहाँ मुख्तलिफ है, लेकिन सब चीज़ों

0: वाली चीज क्या है, इन सबको आप उससे बात करें, साउथ वाले से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो ये कहेगा इंडियन। दैट मीन्स एक कौम के तहत तमाम जबानें बोल रहे हैं। अब इस लिहाज से इस मुश्तरका तहजीब में, कन्वेंशंस में, अब आप यूं गौर कीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके कन्वेंशंस क्या, इसके मोस्टली कन्वेंशंस वही हैं जो कि यहाँ के गैर मुस्लिम्स की थी, शादी ब्याह खुशी मौत मैयत फलाने झिपके पैदाइश वगैरह वगैरह, इन सब में जो कन्वेंशंस हैं वो कन्वेंशंस, चाहे वो मुहावरे हों, चाहे वो गीत हों, खा वो कहावतें हों, वो सब के सब इंडियन हैं। और इवन अगर आप उर्दू को एक मुश्तरक तहजीब की अलामत करार देते हैं, उर्दू जबान को जो कि हमारी मुश्तरक जबान है, तो आप ये देखेंगे कि उसमें सारी ग्रामर जो है इंडियन है, और 90% वर्ड्स हमारे यहाँ इंडियन है, मुश्किल से 10 वर्ड्स बाहर के हैं, जैसा कि हर जबान में होते हैं, कोई भी जबान इससे खाली नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में देखें तो लैटिन के अल्फाज जो है पूरे यूरोप में आज भी हैं। तो मैडम मेरा ख्याल ये है कि ये अगर हम यहाँ पर मुश्तरक तहजीब के तस्वीर पर और गौर करें, उससे पहले आप ही से हम सवाल करते हैं कि आपके जहन में इस कंपाउंड कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है।
1: प्रोफेसर अतुल्ला साहब ने बात हम बताएंगे, तो मैडम आप बताएं कि क्या हमारे जो कंपाउंड मुश्तरक तहजीब है, इन मिलकर जो जदोजहद आजादी के बाद जब हम जो हसूलियाबी आए, यानी कि जो अचीवमेंट हमने किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: देखिए ऐसा है कि एक चीज होती है कि उपलब्धियां या अचीवमेंट्स जो कि ऐसे कहीं से एज अ कॉन्सेप्ट या एज अ वैल्यू हम ला रहे हैं बाहर से, वो होता है, वो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझने की है कि जो कॉम्पोजिट कल्चर, प्लूरलिज्म, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, इन ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बात तो एक ही है, तो उसके लिए जो है ये हमारे इतिहास में ही है, ये हमारे इतिहास से ही आ रहा है, ये कोई आइडिया नहीं है जो कि हम बाहर से लाकर पढ़ के कहीं किताब से हम उसको ला रहे हैं, जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रिटिश लोग भी और भी वो हमेशा ये बात को कहते थे, उनका एक ये दावा था कि हमारे से पहले तो ये सब झगड़ा करते थे, सब अलग अलग यहाँ पे फिरका परस्ती थी, अलग अलग फिरके थे, और हम आए और हमने इस देश को जो है एक बनाया। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर हम बाहर पीछे जाएं, जिसको मध्यकालीन भारत का पीरियड हम देखते हैं, ये तो वहीं से पूरी जो ये एक तरीका है रहने का, कल्चर का मतलब ही आज की डेट पे है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ या रहने का तरीका या रहने की तहजीब, इसको हम उसको नैरो कल्चर सेंस में नहीं ले रहे हैं। तो किस तरह से जो मुगल आए यहाँ, उस हमारा देश का हिस्सा बने, और अलग अलग जो आइडियाज थे, जो वे ऑफ लाइफ था, कैसे ये इंटेग्रेट हुआ, ये धर्म के अगर देखा जाए तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी कुछ ये है कि एक दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ा, इसका इन्फ्लुएंस था, और अलग अलग जिसको हम सूफी का पूरा इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, भक्ति मूवमेंट है, उसमें भी हम इसकी झलक देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं इसको, वो है आजादी की लड़ाई में कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़े हैं 1857 से शुरू होकर, जबकि मुगल बादशाह को लेकर उनको बनाकर पूरा वो एक चिन्ह थे, एक सिंबल थे पूरे देश की एकता का, उस देश की एक अखंडता का, उनको लेकर, और अलग अलग सब लोग कैसे उनके पीछे जुड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद आगे चलकर सैयद अहमद खान ने अब तरीके से वो आए इसमें। तो कहने का मतलब है कि हर जगह से, हर एरिया से, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर तरफ से जो ये इन्फ्लुएंस आए और ये उसमें एक तरह से मिश्रित होके मिली जुली एक जो संस्कृति है, तहजीब है, वो किस तरह से बनी। गांधी जी ने किस तरह से मौलाना

0: अली ब्रदर्स जो थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, पूरा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये उन्हीं की लीडरशिप में हुआ। खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन था वो कांग्रेस ने किया, गांधी जी ने किया। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम मुद्दे कुछ अलग हैं और हिंदू मुस्लिम कुछ अलग हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये जिस जिस सोसाइटी में जितने समूह हैं, जितने अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो मसले हैं, वो सब उठाए गए और उनका खून जो है सभी कम्युनिटीज का, वो साथ बहा।
1: मैडम आपने बहुत
0: ये
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात कही
0: साथ बहा
1: जी, सही
0: और
1: कह रहे
0: उससे जो है,
1: जी।
0: ये तभी तो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक खोखला जो है, ये स्लोगन नहीं है, ये चीज जो है हमारे इतिहास का जीता जागता और लिविंग एक बिल्कुल परंपरा है, ये एक ट्रेडिशन है जो हमने जी है। इसी तरह से मैं बात सिर्फ 1 मिनट लगाऊंगी इसमें बात करने की, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी। बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमने, हमारे लीडर थे, उन्होंने टॉमस पेन की किताब पढ़ी, उन्होंने ब्रिटिश किताबें पढ़ी और डेमोक्रेसी के आइडिया वहां से उनको आए। ऐसी बात नहीं है। आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी थी और पार्टीज थी, उन्होंने अपने आम, जिसको फंक्शनिंग कहते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग, रोज जिस तरह से उनकी एक पार्टी चलती थी, उसमें जमहूरियत लाई गई। फॉर एनर मेंबरशिप, गांधी जी आए, उन्होंने कांग्रेस का संविधान बदल दिया, उन्होंने कहा हर आदमी जो 4 आने देगा वो इसका मेंबर बन सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो एक लीडर और जो एक आम आदमी है जो आंदोलन में है, उनके बीच में जो फर्क है वो सब खत्म हो गया। जो आज हमारे देश का जो एक जो स्टेट्स बने हैं, जो रीजनल जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, कर्नाटक है वगैरह, ये आपको मालूम है ये कब से है? ब्रिटिश ने तो बनाया था बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बड़े बड़े इन्होंने ये एरिया बनाए। कांग्रेस ने 1920 में देश को जो है, उन्होंने जो आज जो स्टेट्स हैं, उनने कांग्रेस समिति जो है सब जगह शुरू कर दी। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है, हम आप और मैं किस भाषा में बोलते हैं, उस भाषा से ही हमारी सारी जो एक्सप्रेशन है, हमारी नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन है, हमारी जो भी है हम अपनी भाषा में रखते हैं। तो भाषा की एक अहमियत जो है उन्होंने कही। और ये आखिरी बात मैं कहना चाहती हूं इस पे कि गांधी जी ने हिंदी और उर्दू का जो विवाद था वो उन्होंने खत्म कर दिया हिंदुस्तानी भाषा को अपनाकर। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दो अलग स्क्रिप्ट चलते रहे, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है हमारी वो हिंदुस्तानी है, ना हिंदी होगी ना उर्दू होगा। तो ये जो सोच थी भाषा को लेकर, अगर हम हमारी शुरू से अगर हम ये हिंदुस्तानी भाषा की तरफ अगर हम जाते, तो आज जो ये हिंदी और उर्दू अलग बट गया, तो ये बात हमारी होती नहीं। तो कहने का मतलब है कि सिविल लिबर्टीज हैं, जो कॉन्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में है, ये कहाँ से आए? कि कहा जाता है कि हाँ हमने सभी संविधान पढ़े और उनका मिश्रण किया, नहीं। आप 1931 में अगर जाएं तो कराची कांग्रेस में एक फंडामेंटल राइट्स पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि ये जो है सिविल लिबर्टीज होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम अलग अलग, पूरी एक लिस्ट बनी थी क्या क्या सिविल लिबर्टीज होंगी। वो पूरी जो है आप कराची अधिवेशन की जो लिस्ट है रेजोल्यूशन, और संविधान में जो हमारे भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेम है। कहने का मतलब है कि ये जो भी हमारा संविधान है, ये हमारी आजादी की लड़ाई से निकला है। ये कोई सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो हमने कुछ पढ़ा और इधर से कुछ लिया और वो जोड़ दिया, नहीं। और क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई से निकला है इसलिए इसकी जो अहमियत है हम चलते रहे, और इसलिए लोग हमारे यहाँ जो है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सैक्रिफाइस कोई भी देने को तैयार है, लेकिन

0: हमारी जो ये फ्रीडम्स है जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल की हैं, ये कभी भी जो हमारे लोग हैं इनको कभी भी त्यागेंगे नहीं।
1: प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब, हम चाहेंगे कि जो ये मुश्तरक तहजीब की आपने बात की और वो जो हसूलियाबियाँ हुई, अब हम इसको दूसरी तरह ले जाते हैं कि जैसे कि आज़ादी के बाद हमारी जो कामयाबी मिली हमको, उसके बाद अब अगर तरक्की की तरफ अगर देखें तो हिंदुस्तान आज़ादी से पहले जिस हालत में थी और उसके बाद जितनी तरक्कियाँ हुई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं?
2: दरअसल मैडम ने जद्दोजहद आज़ादी हुई तारीख बयान कर दी, और वो तारीख जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तानी जहन जो है वो कितना प्रोग्रेसिव पहले से था, वो किस तरह उसने पहले से ही ये तसव्वुरात कायम कर लिए थे, जो कि अब ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस का एक कंपाउंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी, ये वाली बात भी आपने की, और बहुत अच्छी, पूरे वैल्यूज के साथ और पूरे उसका एक तारीखी हैसियत है उसकी अपनी। तो इस एतबार से आपकी तमाम गुफ्तगू तारीख के महवर पर गश्त कर रही थी। हिंदुस्तान में आर्य जब आए तो किधर से आए? ये सेंट्रल एशिया से होते हुए, ईरान से होते हुए, या और नॉर्थ से होते हुए इंडिया में आए थे। ये आर्यस अलग अलग जत्थों में, कुछ ईरान से, कुछ ईरान के नॉर्थ से, कुछ सेंट्रल एशिया से। मुगल कहाँ से आए थे? वो ही सेंट्रल एशिया से आए थे। तो क्या वजह है कि मुगल यहाँ पर आए तो यहीं क्यों रह गए? इसलिए कि आर्यंस यहाँ आए तो यहीं रह गए, और वो भी उसी मट्टी से आए थे, वो भी यहीं रह गए। इसलिए इनको एक होने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसलिए जब सूफिया इकराम भी वस्त एशिया से होकर आए, ये ईरान से नहीं आए थे, ये वस्त एशिया से आए थे। तो वो भी जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ह्यूमनिज्म ही ह्यूमनिज्म है, यहाँ पर मजहब से ज्यादा इंसानियत है, इंसान दोस्ती है। इसलिए उनको यहाँ आकर और खानकाहें बनाने में कोई देर नहीं लगी और वो जज्ब हो गए। और इसीलिए यहाँ के जो आवाम थे, उसमें तमाम फिरकों के लोग थे, उन्होंने भी देखा कि भी ये तो वननेस की बात कर रहे हैं, ये तो तमाम मजाहिब के मिल्लतें जो हैं उनको टुकड़ों में बांटने की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक वहदत की बात कर रहे हैं। इसलिए वो भी करीब आए इनके। तो सूफिया इकराम के बारे में ये ख्याल कुछ लोगों के जो जहन में था कि इन्होंने कोई मजहब की तबलीग की है, तो ऐसा कुछ नहीं किया। किसी भी सूफी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनकी किताबों में, उनके मकतूबात में, उनके मलफूजात में, उनके सेंग्स में कहीं तो तबलीग हो, बल्कि यह है कि उन्होंने वननेस ऑफ ह्यूमन, बनी रहो इंसान एक है, एक वहदत है, इस तस्वुर को कायम किया। तो इसने एक मुश्तरक तहजीब के तस्वुर को ताकत दी, और ये अमलगमेशन जो हुआ तो ऐसा हुआ कि जिसमें तब कहीं भी कोई दर्ज बाकी नहीं रही। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि आज़ादी का तहफ़ कैसे किया जाए, और आज़ादी के तहफ़ के लिए एक तमाम जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे जो कल्ट्स हैं वो भी मिलकर इसका तहफ़ कर सकते हैं। जमहूरियत का आपने तसव्वुर पेश किया उस एतबार से, और आपने गांधी जी का, नेहरू जी वगैरह वगैरह के हवाले दिए, तो बहुत ये जिस तरह से आपने तमाम तारीख को दोहराया है उस एतबार से ये जो आपका टॉपिक है ये आज के लिहाज से बहुत मानी खेज है। ये उर्दू में दोहे लिखे जा रहे हैं, उर्दू में गीत लिखे जा रहे हैं, तो उर्दू में हमने उन्हें एक्वायर कर लिया, और अब हिंदुस्तान की 21 जबान में गजलें लिखी जा रही है, और तमिलनाडु में खुद एक मजमूआ कलाम शाया हो गया है एक शायर का तमिल में, गजल गजल का। आप सोचिए 21 जबानों में गजलें लिखी जा रही हैं, वहां कलेक्शन आ चुके हैं और वो डाइस पर पढ़ते हैं वो गजलें। तो इस तरह से गजल गजल भी है जो कि हमारे तरह से माउथपीस बन गई है मुश्तरक तहजीब की, और सब
3: अभी आप सुन रहे थे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है 918 किलो हर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर है, इंडियन आर्मी के वेटरन है, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के मेजर मानिक एम जॉली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीज़न सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे,
0: अच्छा,
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस तो आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th 7th 8th क्लास के दौरान तैयारी शुरू करी एनडीए

0: तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था, तो
1: ओके
0: स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ,
1: जी
0: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम पांच गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स
1: अच्छा
0: प्रोड्यूस करने का हरियाणा में।
1: ओके
0: तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
1: जी सर, आपने मेजर मानिक एमजौली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया।
0: हाँ जी
1: उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे कोर रेजिमेंट में
0: हाँ जी
1: 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से, करीब 10 साल आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
0: हाँ जी
1: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक
0: हाँ
1: आर्मी
0: जी
1: ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व
0: हाँ
1: किया
0: जी
1: है आपने,
0: हाँ जी
1: और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
0: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था,
1: अच्छा
0: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने को
1: हम भी
0: मिलेगा।
1: जाएंगे। अच्छा
0: मुझे याद है कि स्टार न्यूज़ ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए,
1: ओके
0: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहाँ पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था कि आप
1: अच्छा
0: लोग लड़ाई में जा रहे हैं कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन
1: जी
0: लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया,
1: अच्छा
0: तो ये हम अपना ठीक है देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
1: हाँ, मतलब एक
0: मैं
1: फौजी है और
0: हाँ जी
1: वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का
0: बिल्कुल,
1: हिस्सा बनूं।
0: इससे बड़ा टेस्ट क्या
1: जी
0: है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
1: बिल्कुल।
0: तो वो यूँ लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे
1: अच्छा और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे
0: हाँ जी
1: मिलते थे,
0: हाँ जी
1: बातचीत होती थी।
0: बिल्कुल, बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे, हमारा वो हमारे से 1 या 2 और सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे, जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे
1: जी
0: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे। और मुझे याद है मैंने उनसे जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे, तो
1: अच्छा
0: मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की, तो मैंने कहा
1: अच्छा
0: सर कैसेट तो वापस कर जाओ, कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। मतलब
1: ओके
0: आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो
1: बिल्कुल
0: हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया,
1: जी
0: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे
1: विक्रम
0: हमारे
1: बत्रा।
0: सीनियर्स थे,
1: अच्छा
0: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करें उतनी कम है। इतनी यंग एज पर आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
1: जी
0: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली बहुत
1: एथिकली और साथ ही
0: इज़ वेरी
1: साथ
0: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं उनमें से
1: जी
0: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे, हम
1: हम
0: कहते हैं
1: आगे
0: हम
1: चलेंगे।
0: आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
1: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेन पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू शाहिद, थैंक यू।
0: सर मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी अच्छा। गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है 1st बटालियन 4th गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200

0: पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में,
1: ओके
0: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में
1: बिल्कुल
0: तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
1: ओके
0: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल
1: अच्छा
0: में, और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना
1: अच्छा
0: मेडल दिया गया था।
1: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक
0: हाँ
1: पूरा
0: जी,
1: ऑपरेशन रहा होगा,
0: हाँ
1: तो
0: जी।
1: सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
0: देखिए, जो ये ऑपरेशन है, आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
1: जी
0: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं,
1: जी
0: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं
1: अभी भी कर रहे हैं अपनी
0: इस
1: ड्यूटी।
0: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग। डेली करते हैं,
1: जी
0: 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ, किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका इनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 इनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रडिक्टेबिलिटी ज़ीरो, बट पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई। सो वॉट हैपन्स, आप जाते हैं, आपको इनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले देख
1: अच्छा
0: लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा। बहुत इतने ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि
1: और
0: इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
1: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके, या फिर
0: या शहीद हो,
1: शहीद हो करके।
0: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, विक्ट्री और
1: और डेथ
0: सेक्रीफाइस। या सो आप, अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन, फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग
1: जी
0: ऑफिसर्स इतने
1: जी
0: सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं,
1: अच्छा
0: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है।
1: उस बड़ी के लिए
0: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
1: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए
0: या
1: तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
0: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
1: जी
0: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए,
1: क्या बात है सर,
0: अगर
1: ये
0: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की,
1: ये
0: यू
1: जो
0: नो,
1: जज्बा है
0: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
1: एक दूसरे के
0: एक
1: लिए,
0: दूसरे
1: अपने
0: का
1: साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं
0: बिल्कुल, और
1: सर,
0: कॉन्फिडेंस रहता है कि
1: कॉन्फिडेंस रहता
0: मुझे
1: है।
0: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
1: क्या बात
0: ठीक
1: है,
0: है, वो
1: क्या बात।
0: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल होता।
1: नहीं हो सकता
0: या
1: सर, वही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज़्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर, वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम NDA जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज, 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा
0: हीरो,
1: पूरा एकदम।
0: यू नो, हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ आप
1: वो मोटिवेटेड मतलब स्लोगन्स आपको मिल रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज

0: सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बना हूं और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट।
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
0: हाँ जी
1: आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता है।
1: टाइम ऐसा होता
0: हाँ
1: है। तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक अमजौली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर, मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँ। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं। सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय, आई एम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है, सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
1: जी
0: जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते
1: अच्छा
0: हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है वो आपको शेयर, दैट इज
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी में
1: हैं,
0: जो आप हैं।
1: क्या बात
0: अगर
1: है।
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है पकड़ लेगा आपको ये।
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर।
0: बिल्कुल
1: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय
1: टू,
0: हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉल तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नज़दीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियाँ दी गई इस देश की आज़ादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहाँ पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहाँ पर आ रहे थे तो?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप बिल्कुल
1: अच्छा
0: एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट।
1: बिल्कुल
0: आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: फिजिकली, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज़ वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो
0: या
1: स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या
0: है,
1: आपने,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में, बट ये है कि शुरू में जाके क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है,
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले 1-2 हफ्ते में घर की बहुत याद आती क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है
0: सहूलियत
1: प्यार
0: है
1: से,
0: प्यार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफ़ी दुखी बैठा था अपने रूम में तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो, तो क्या हुआ, मैं कह सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो,
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है, मैं कह सर चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए
1: जी
0: अपना।

0: फ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है वही तो मैं ऑर्डर है खुश होने का. मैं ठीक है सर. सो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज हमारे टाइम वहाँ पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी.
1: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन.
0: हाँ जी.
1: और अजय देवगन जी.
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे.
1: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था.
0: आई थिंक एक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से.
1: अच्छा.
0: तो उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीना तो चला था फॉर श्योर
1: जी.
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे.
1: ओके.
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए. उनको तो 150 चाहिए थे. उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई.
1: ठीक है.
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे. लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ जूनियर, हम तो मुंबई से आया है शूटिंग वाला है तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों.
1: अच्छा.
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया. और फिर एक दो सीन थे जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया.
1: अच्छा.
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे.
1: ओके. हीरो मतलब हीरो बन जाएंगे. ठीक है.
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ जाए. वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा. हर बार हम आगे आ जाते थे.
1: अच्छा.
0: कोई ना कोई तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत. इट वॉज वेरी फनी. तो हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट. मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर.
1: अच्छा. हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के लिए.
0: हाँ जी प्लीज. तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी. और उसका गाने भी एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी.
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे. और सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर सोनाली बेंद्रे.
0: बिल्कुल.
1: तो सर वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में.
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं. आई थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मैच के पीटी ग्राउंड क्रॉस कंट्री ये सब होते थे. लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी.
1: अच्छा.
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में.
1: जी जी जी.
0: एंड स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस.
1: ऑफ कोर्स.
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस. जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे. कितने अच्छे से बात करती हैं. तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी थी
0: कि कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे.
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है. तो उसके बारे में बताइए सर कुछ. कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो.
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहाँ पे सीन है.
1: अच्छा.
0: मूवी में तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है.
1: अच्छा.
0: तो एक घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रही है. वहाँ पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था.
1: अच्छा.
0: तो सब चलता रहता था वहाँ पे.
1: जी. तो अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था.
0: हाँ जी. वो ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे. बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
1: बिल्कुल
0: फिल्मी हीरोज का नहीं होता. तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था.
1: अच्छा अच्छा.
0: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए.
1: बिल्कुल. हाँ, रीटेक्स के साथ. हाँ, वो सब ठीक से हो जाए.
0: पर मैं आपको ये बता रहा हूँ हमें बहुत अच्छा महसूस होता था. मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं.
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मतलब वो एक्टर्स है, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग नहीं है. पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी. सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मेजर साहब मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है.
0: बिल्कुल.
1: मेजर साहब उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है. मेजर मानिक एमजोली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन. आप बने रहें हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में और मैसेज करते रहें.

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम्स चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली, इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरख राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं, फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे, हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं।

0: सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बता दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब, इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर। अर्ज है, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार। आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और यह है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल। प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूँ फिर आगे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस, स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस ओकेशन आई विश All Indians happy 80th Independence Day. भारत माता की जाए, अपना भारत महान है। वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू।
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर। और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेज आए हैं। मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा।
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा।
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके।
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: वहाँ पे। और वहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी। तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो, जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी,
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता।
0: जाहिर
1: है। स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था।
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल।

0: अच्छा
1: जिस शहर में आप लोग आपके लिसनर रह रहे हैं
0: जी,
1: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
0: अच्छा
1: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट,
0: 20-20 फुट,
1: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है, राइट?
0: अच्छा
1: और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, वो कहते हैं हाँ ठीक था, अच्छा था।
0: तो यानी कि वो जो
1: ओनली
0: ठीक था
1: रीजन
0: कह
1: इज
0: रहे हैं वो,
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: जी तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
0: जी
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
0: अच्छा
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
0: जाहिर है
1: जो
0: जो
1: वेट कर
0: सबसे
1: रहा है,
0: बड़ा
1: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप
0: वो
1: उसको
0: वेट कर
1: पहले
0: रहा
1: दिख
0: है
1: जाए।
0: जी,
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
0: एक बार
1: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें कैरोसिन का स्टोव यूज़ करना पड़ रहा
0: ओके
1: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे।
0: जी
1: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज़ ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
0: हाँ
1: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
0: ओके
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
0: नहीं
1: करेंगे।
0: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
0: ओके
1: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे हिल रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट इस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
0: जी
1: बना लो, वो चला जाएगा।
0: अच्छा
1: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है वो नहीं
0: एक्सक्यूज
1: है,
0: कुछ नहीं,
1: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
0: अच्छा
1: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
0: बेशक
1: आप नहीं
0: उनकी भी
1: चाहते,
0: हिफाजत।
1: हाँ आपके लिए नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज़ अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
0: जहां से
1: ये,
0: हमारी बात शुरू हुई
1: हाँ
0: थी
1: कि मैं आपको यही बस कि जो मैं कर रहा हूँ उस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ,
0: जी, उनको
1: और
0: कदर
1: उस
0: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी हमारा
1: मतलब
0: भाई
1: मानी सी
0: है।
1: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और
0: बिल्कुल,
1: फौजी एक तरफ,
0: फौजी एक तरफ
1: जो प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
0: जी
1: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
1: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज, वहाँ पे मोबाइल भी नहीं था,
0: और उस जमाने में
1: तो
0: तो
1: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
0: 10-15 दिन में
1: क्योंकि
0: एक बार
1: पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टर लेके आता था,
0: अच्छा
1: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर
0: मेरी
1: से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे थे कि मेरी भी चिट्ठी आई
0: भी
1: है,
0: चिट्ठी
1: मेरी।
0: आएगी
1: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
0: जी
1: मजाक नहीं है एक्चुअली,
0: अच्छा
1: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से परिवार से आपके दोस्तों से
0: दोस्तों
1: कुछ
0: से
1: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी वहाँ
0: क्या
1: पे।
0: बात है,
1: हाँ,
0: मतलब लेटर्स की हम आज
1: और
0: ये
1: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
0: जी
1: आपको उसी डाक से वापस
0: वापस
1: भेज
0: भी
1: दिया,
0: भेजना है, ओके
1: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
0: अच्छा,
1: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
0: ऊपर
1: गई
0: चली गई,
1: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
0: हाँ
1: और कुछ
0: सुनते
1: था
0: सुनते,
1: नहीं,
0: क्योंकि और कुछ है ही नहीं।
1: या रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का, तो
0: अच्छा
1: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते हैं।
0: तो उसमें से कुछ बताइए सर।
1: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत, अभी भी आस भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना, फिर तुम्हारी याद आई।

0: है
1: अच्छा
0: सनम, और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
1: ओके
0: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे
1: अच्छा
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं और अपने
1: परिवार को
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते
1: क्या
0: हुए गा रहे
1: बात
0: हैं।
1: है।
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त।
1: मेजर मानिकम जौली आज के संदेश के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज़ और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफ़ी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल मैं MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा। काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन।
0: ओके।
1: वहां से खबर आती रहे और यहाँ से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। ये वो जमाने की बात है।
1: हाँ, चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
0: जी,
1: काम।
0: जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफ़ी आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नई आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: ओके।
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफ़ी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया था
0: तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टैब्लिश करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर, अभी ये सब चीजें तो हो गई हैं आपकी।
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब धीरे धीरे समझ आया
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर, इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको PM मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी। तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज है, ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके।
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए इसको।
1: हाँ, फिक्शन। इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी

0: बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर।
1: आपको
0: जाते
1: शायद।
0: जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब एनडीए में थे तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
0: बॉर्डर जी, बड़ी
1: तो
0: फेमस
1: उसका गाना था संदेश आते हैं।
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था,
0: अच्छा
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
0: सर लिसनर्स तो
1: और
0: हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और
1: हाँ
0: मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज
1: या
0: करा है आपको।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू एनडीए और आफ्टर एनडीए, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं,
1: हाँ जी
0: मैसेज
1: हाँ जी,
0: आए।
1: जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, एनडीआर एंड आरजेएन मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें, मिसेस धर्म भाटिया, रोहतक से। सर ये मैसेज आया सर आपके शहर
1: अरे
0: से
1: वाह, हमारे शहर से आए
0: जी।
1: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर। विजय कुमार है ये।
1: आपको भी विजय जी, जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी, सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सौदश शाहिद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए टॉपिक्स, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य, डिजिटल भुगतान और भारत, और करेंगे संस्कृति और युवाओं पर बात। इसके साथ आज का इतिहास। आज के कार्यक्रम में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ बातें।

दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में हैं जिसमें करोड़ों लोग रहते हों। किसी की भाषा अलग हो, किसी का पहनावा अलग हो, किसी की खान पान की आदतें अलग हों, फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हों। अगर ऐसा घर हो तो वो कोई काल्पनिक घर नहीं, बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी है, हमारी अपनी अर्थ है। हमारे भारत की प्राचीन विचारधारा ने बहुत पहले एक बेहद सुंदर विचार दिया, वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। दोस्तों इस विचार का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसका अर्थ है कि मानवता की समस्याएं साझा हैं और उनका समाधान भी मिलजुल कर संभव है। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड है, यानी आपस में जुड़ी हुई है। हमारे मोबाइल में अमेरिका की खबर कुछ सेकंड में पहुंच जाती है, जापान की टेक्नोलॉजी भारत में इस्तेमाल होती है, भारत की मेडिसिन्स दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचती है और एक देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव दूसरे देशों के बाजारों पर पड़ सकता है। दोस्तों जलवायु प्रदूषण, इसका ये कहें कि जो परिवर्तन होता है वो समस्या केवल उस देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, समुद्र का बढ़ता तापमान, बर्फ का पिघलना, प्राकृतिक आपदाएं, ये पूरी मानवता से जुड़े विषय हैं। इसी तरह महामारी ने हमें सिखाया कि वायरस पासपोर्ट देखकर सीमा पार नहीं करता, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी वैश्विक सहयोग से जुड़ी हुई है। युवाओं की भूमिका यहां सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का युवा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल है, अगर आपका सबसे अच्छा ऑनलाइन फ्रेंड किसी दूसरे देश में रहता है तो क्या आप सिर्फ उसकी नेशनैलिटी अलग होने से वह आपके काम आ सकता है या

दोस्त नहीं हो सकता। देखिए, दोस्ती जो होती है वो तो एक नेशनैलिटी देखकर नहीं की जा सकती। यही वसुधैव कुटुंबकम का सार है। लेकिन इसका अर्थ अपनी पहचान छोड़ देना नहीं है दोस्तों। हमें भारतीय होकर भी विश्व के नागरिक हम हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, परंपरा पर गर्व करते हुए दूसरी संस्कृतियों का सम्मान हम कर सकते हैं।

नागरिक हम हैं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, परंपरा पर गर्व करते हुए दूसरी संस्कृतियों का सम्मान हम कर सकते हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ना हमें आना चाहिए, लेकिन अपनी सोच की सीमाएं बांधनी नहीं चाहिए। दोस्तों, देश हमारी पहचान है, लेकिन मानवता हमारी सबसे बड़ी पहचान है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
5: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
7: दोस्तों दोबारा एक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्या आने वाले समय में मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगी? उत्तर काफी दिलचस्प हो सकता है, सपोर्टिव भी हो सकता है और आज के समय को देखते हुए लोग इस बात को ये मान भी लें। लेकिन आज से कुछ दशक पहले अगर कोई कहता कि मशीन इंसान की आवाज़ समझेगी, तस्वीर पहचान लेगी, भाषा का अनुवाद करेगी, सवालों के जवाब देगी और कुछ सेकंड में हजारों शब्दों का विश्लेषण कर देगी तो शायद यह साइंस फिक्शन लगता, लेकिन आज यह हमारी वास्तविकता है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स डेटा तथा एल्गोरिदम्स की मदद से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की

आवश्यकता होती है। आज हम डेली लाइफ में कई जगह एआई का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा स्मार्टफोन फेस पहचानता है, जब YouTube पर कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमारी पसंद के अनुसार कंटेंट रिकमेंडेड करता है, जब नेविगेशन ऐप ट्रैफिक देखकर रास्ता बदलने का सुझाव देता है, इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज की भूमिका होती है। दोस्तों, एजुकेशन के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों को कठिन विषय समझने, लैंग्वेज लर्निंग, अभ्यास और पर्सनलाइज्ड लर्निंग में सहायता प्रदान करता है। कृषि में मौसम, मिट्टी और फसल के डेटा का एनालिसिस किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई मेडिकल इमेजेस और बड़ी मात्रा में हेल्थ डेटा के एनालिसिस में डॉक्टर्स की सहायता कर सकता है। इंडस्ट्री में ऑटोमेशन प्रोडक्शन को तेज और एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। अब एक और सवाल है, क्या एआई जॉब्स खत्म करेगा? दोस्तों, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। कुछ कामों में ऑटोमेशन जरूर बढ़ सकता है, लेकिन नए प्रकार के काम भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी, नई स्किल्स सीखते रहने की क्षमता भी जरूरी होगी। एआई जनरेटेड फेक इमेजेस हैं, वीडियोस हैं और डीप फेक्स भी सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय का। इसलिए डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है आज के समाज के लिए। अगर कोई हमें सेंसेशनल वीडियो दिखाई देता है तो तुरंत उसे सच मानकर फॉरवर्ड कर देना सही नहीं है। एआई हमें आंसर दे सकता है, लेकिन सही और गलत के बीच जिम्मेदार निर्णय हमें ही लेना होगा। युवाओं के लिए सबसे जरूरी बात है कि एआई से डरने की बजाय इसे समझना जरूरी है। एआई को अपना कंपटीटर नहीं बल्कि एक टूल मानिए। युवा मंत्र तो यही है कि एआई आपका काम कर सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, वैल्यूज और जिम्मेदारी आपकी अपनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, भविष्य एआई का नहीं बल्कि एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले इंसानों का होगा।

दोस्तों, एक जमाना था जब बाजार जाने से पहले लोग जेब में नोट गिनते थे। आज कई बार जेब में कैश नहीं होता, लेकिन स्मार्टफोन में पूरा पेमेंट मौजूद होता है। यही है डिजिटल पेमेंट इवोल्यूशन, यानी भारत में डिजिटल पेमेंट्स ने रोजमर्रा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का तरीका बदल दिया है। खासतौर पर यूपीआई ने छोटे से छोटे भुगतान को भी बेहद आसान बना दिया है। आज हम दुकान पर जाते हैं, क्यूआर कोड देखते हैं, मोबाइल निकालते हैं, पेमेंट करते हैं और कुछ ही सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट का महत्व केवल कन्वीनियंस तक सीमित नहीं है दोस्तों। इससे ट्रांजैक्शंस का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, छोटे व्यापारियों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ने की मदद मिल सकती है, ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स को भी बढ़ावा मिलता है और कंज्यूमर्स को पेमेंट के कई विकल्प मिलते हैं। एक छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड के माध्यम से कस्टमर से पेमेंट ले सकता है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल बड़े शहरों और बिजनेस तक सीमित नहीं रही है। लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। आज साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी हमें नहीं बताना चाहिए, यूपीआई पिन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के कहने पर अननोन क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा रिसीव करने के लिए सामान्यतः यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है, पिन पेमेंट ऑथराइज करने के लिए होता है। किसी अनजान लिंक या किसी भी साइट पर क्लिक करने से पहले सोचना चाहिए। किसी बैंक ऑफिशियल के नाम से फोन आने पर भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर न

करें और ऑफिशियल चैनल से वेरिफिकेशन करें। युवाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ साथ डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती है दोस्तों, उसका सुरक्षित इस्तेमाल उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल तो आते ही हैं मन में, और एक सवाल और कि क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक स्मार्टफोन ने हमारे पैसे इस्तेमाल करने का तरीका कितना बदल दिया है? दोस्तों, आज का डिजिटल इंडिया केवल स्मार्टफोन्स का इंडिया नहीं है, यह एक ऐसी इकोनॉमी की ओर बढ़ता भारत है जहां टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज को अधिक एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाने में भूमिका मिलती है। हमें याद रखना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट में स्पीड जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है।

दोस्तों, आज का युवा दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो भारतीय संगीत सुन सकता है, कोरियन म्यूजिक देख सकता है, हॉलीवुड फिल्म देख सकता है, दुनिया के किसी भी देश की लैंग्वेज सीख सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग कल्चर्स को जान सकता है। तो सवाल उठता है, क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमारी संस्कृति कमज़ोर हो रही है या हमारे पास अपनी संस्कृति को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम

माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है। दोस्तों, संस्कृति केवल फेस्टिवल्स या ट्रेडिशनल क्लोथ्स का नाम नहीं है। हमारी भाषा, साहित्य, संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, खान पान, कला, वास्तुकला, जीवन मूल्य और सामाजिक परंपराएं सब संस्कृति का हिस्सा हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्नताएं हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में भाषा बदलती है, भोजन बदलता है, लोकगीत बदलते हैं, पहनावा बदलता है, लेकिन इसके बावजूद भारत की एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है जो हमारे दिलों में हमेशा छाई हुई है। युवाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम केवल किताबें नहीं करती, लोग करते हैं। आज के समय में YouTube पर लोक गीत का चैनल बन सकता है, Instagram पर ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया जा सकता है, पॉडकास्ट के माध्यम से स्थानीय इतिहास बताया जा सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बन सकता है। इस तरह टेक्नोलॉजी संस्कृति के लिए खतरा ही नहीं बल्कि अवसर भी बन जाता है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी दोस्तों, संस्कृति का मतलब अतीत में फ्रोजन रहना नहीं है। हमारी पुरानी परंपराओं को सिर्फ इसलिए स्वीकार करना आवश्यक नहीं है कि वो पुरानी है, हमें अपनी अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो बातें समानता, मानव गरिमा या वैज्ञानिक सोच के विरुद्ध हों, उन्हें समझदारी से पुनर्विचार उन पर करना चाहिए, यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। दोस्तों, मॉडर्न बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खो देना मॉडर्निटी नहीं है। जड़ें मजबूत हो तो पेड़ नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।

दोस्तों, समय है युवाणी के उस हिस्से का जिसमें हम वर्तमान से कुछ कदम पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं, क्योंकि कैलेंडर में दर्ज हर तारीख केवल संख्या नहीं होती, उसके पीछे घटनाएं, व्यक्तित्व, संघर्ष, उपलब्धियां और ऐसी कहानियां छिपी

होती हैं जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया है। आज है 13 अगस्त, तो आइए जानते हैं कि इतिहास के आईने में आज का दिन क्यों खास है। आज ही के दिन 1795 में भारतीय इतिहास की महान महिला शासकों में शामिल अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ था। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वे मालवा की शासक बनी और उनका नाम एक ऐसी प्रशासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने शासन को केवल सत्ता के रूप में नहीं बल्कि जनता की सेवा और जिम्मेदारी के रूप में देखा है। सत्ता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जनसेवा से अर्जित सम्मान इतिहास में जीवित रहता है, और यही बात हमें इनसे सीखने को मिलती है। दोस्तों, आज ही के दिन 13 अगस्त 1936 को मैडम भिकाजी कामा का निधन हुआ था। 13 अगस्त 1936 को बंबई यानी वर्तमान मुंबई में उनका निधन हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उन क्रांतिकारी हस्तियों में से थी जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत की आजादी की आवाज बुलंद की। 1907 का स्टटगार्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस उनके सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, आज 13 अगस्त के इतिहास में हमने अलग अलग लोगों के बारे में जाना कि आज क्या हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है, तारीख याद करना ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन उस तारीख के पीछे की कहानी को समझना इतिहास वास्तविक समझ के रूप में सामने आती है। तो ये था आज का इतिहास।

अभी आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराई की, 6:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, 6:40 पर कार्यक्रम रहेगा जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे, शाम

शाम 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे जानकारी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का कृषि में उपयोग, मृदा परीक्षण, इसके अलावा बाजार भाव, मौसम की जानकारी भी आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम के प्रस्तोता होंगे रमेश चावरिया।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली के अंदर से। 8:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम रहेगा स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली के अंदर से। समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर। न्यूज एट 9 आप सुन पाएंगे रात्रि 9 बजे। 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप कार्यक्रम सुन पाएंगे कंट्री साइड, माफ कीजिएगा कंट्री वाइड इनसाइट। रात्रि 10 बजे विज्ञान पत्रिका हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत। तो ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

0: मत हई भोली, सजना मेरी मत होई भोली, इड्डे खुए उड्डे टोबा, इड्डे खुए उड्डे टोबा, किड्डे ढावे जनता भोली, किड्डे ढावे जनता भोली, असा शबाब चवेचे अखर, असा शबाब चवेचे अखर, प्यूडा देता तकड़ी तोली, प्यूडा देता तकड़ी तोली।
1: सही, बहुत लुत्फ आया थोड़ी गजल सुन के, बहुत तनज भी है और मजा भी है। एक और गई बई गजल सुनाओ कोई।
0: नो, मेरी गजल दे विच तां अजकल दियां समस्यावां ही होणियां ज्यादा, ते सुनो फिर। अर्ज किया कि नेता जी की रैली किते, नेता जी की रैली किते चली भरीद स्पेशल रेल, नेता जी की रैली किते चली भरीज स्पेशल रेल, नारे भंगड़े शोर शराबा दब्बड़ घुसर धिक्का पेल, नारे भंगड़े शोर शराबा दब्बड़ घुसर धिक्का पेल। अर्ज किया है भाई, टोपण टाकण अल्हा दिता, बंता दीनू अते सुहेल, सब को घील के घिन गया वर्कर
1: जी,
0: सब को घील के घिन गया वर्कर, दिता छकड़े विच धकेल। अर्ज किया है भी, वाह भगवाना तेरी कुदरत, वाह भगवाना तेरी कुदरत, हशके रब्बा तेरे खेल, वाह भगवाना तेरी कुदरत, हशके रब्बा तेरे खेल, पीएचडी दा इंटरव्यू अज गिंदा पई है चौथी फेल।
1: क्या बात,
0: वाह भगवाना तेरी कुदरत, हशके रब्बा तेरे खेल, पीएचडी दा इंटरव्यू अज गिंदा पई है चौथी फेल। साकू देख मरेंदन बोली, साकू देख मरेंदन बोली, पड़े फारसी वेचे तेल, साकू देख मरेंदन बोली, पड़े फारसी वेचे तेल, झूले लाल तो सब दी सुनदा है, साडा भी कोई मेल चमेल, झूले झूले लाल तो सब दी सुनदा है, साडा भी कोई मेल चमेल, ते इवें चढ़ गन, ये सारे मतलब अर्ज करदा पिया मैं, इवें चढ़ गन सिर ते साडे लून लकड़ियां आटा तेल, इवें चढ़ गिन सिर ते साडे लून लकड़ियां आटा तेल, भुल गिन सारे शौक रंगीले, विसर गए सब इतर फुलेल, भुल गिन सारे शौक रंगीले, विसर गए सब इतर फुलेल। अर्ज किया भी, मोटे डाज दी तांग च तू ता वात पाल के बैठा है, ठुले डाज दी तांग, भारी डाज दी तांग च तू ता वात पाल के बैठा है, शादी वणज व्यापार नहीं बचड़ा, यही दू रूहां दा मेल,
1: जय रूहां दा मेल। क्या बात,
0: मोटे दाज दी तांग च तू ता वात पार के बैठा है, शादी वणज वणज व्यापार नहीं बचड़ा, यही दू रूहां दा मेल। गंढ विच बदगिन गाले मेडी, गंढ विच बदगिन गाले मेडी, सच दे नेड़े ढुकी ना, गंढ विच बदगिन गाले मेडी, सच दे नेड़े ढुकी ना, नीते छेकड़ तू पछतासे, सच्चे को मिलदी ऐ जेल, नीते छेकड़ तू पछतासे, सच्चे को मिलदी ऐ जेल, बुढ़ड़ी को मसवाणे घिन गए, बुढ़ड़ी को मसवाणे घिन गए, बह गई उठी के फट्टे ते, बुढ़ड़ी को मसवाणे घिन गए, बह गई उठी के फट्टे ते, क्यों वे कोल खड़ी त्रिमचा आख्या मेले विच लग सी अज सेल, कोल खड़ी बुढ़ड़ी को मसवाणे घिन गए, बह गई उठी के फट्टे ते, कोल खड़ी त्रिमचा आख्या मेले विच लग सी अज सेल। बे तेडे नाल निमाणी जिंदे, बड़ा सीरियस जिहा शेर है एक, बे तेडे नाल निमाणी जिंदे, कर नहीं सके असा इंसाफ, तेरे नाल निमाणी जिंदे, कर नहीं सके असा इंसाफ, तू हमें सतवंती नारी असा च समझी निपट रखेल, तू हमें सतवंती नारी असा च समझी निपट रखेल। एक बड़ा नाजुक शेर है, बे पत्ता कोई नहीं
1: जी,
0: केड़े वेले मारू वट्टा आ लग सी,
1: पत्ता
0: कोई नहीं केड़े वेले मारू वट्टा आ लग सी, कंध दे ओढ़र ताणी बैठन साडे सिर ते यार गुलेल, कंध दे ओढ़र ताणी बैठन साडे सिर ते यार गुलेल, अध रस्ते विच ओ बेदर्दी बाह छुड़ा के चला गया, अध रस्ते विच

0: वो बेदर्दी
1: बाह
0: छुड़ा के चला गया है, ईश्वर जाने वल हुण किहड़े जन्म दे विच वंथी सी मेल। ईश्वर जाने वल हुण किहड़े जन्म दे विच वंथी सी मेल। दीन धर्म दे नाते कीवें इक दूजे को वढ़ूं पै, दीन धर्म दे नाते कीवें इक दूजे को वढ़ूं पै, भुल गए सारे रिश्ते नाते एजा सिर ते चढ़िया खेल। भुल गए सारे रिश्ते नाते एजा सिर ते चढ़िया खेल। लहू कलेजे दा मंगदी है, लहू कलेजे दा मंगदी है, कविता कौशल दी है जोत
1: जी।
0: कविता कौशल दी है जोत, लहू कलेजे दा मंगदी है, कविता कौशल दी है जोत। तेरे भाणे कला दा दीवा पियाए बलदा बाजू तेल, तेरे भाणे तेरे भाणे कला दा दीवा पियाए बलदा बाजू तेल। भी तेरे गल विच रस्सी पा के लोकां लेखा पुछना है, तेरे गल विच रस्सी पा के लोकां लेखा पुछना है। खुल गई हुण तेरी चतराई मुक गई सजना तेरा खेल, खुल गई हुण तेरी चतराई मुक गई सजना तेरा खेल। मुख्तार सबक रहना भाई, ओ परदेसी ता नहीं आया, ओ परदेसी ता नहीं आया वापस हुण घर जुलो शबाब, ओ परदेसी ता नहीं आया वापस हुण घर जुलो शबाब। ऊंदा साया भी नहीं दिसया खाली थी गई सारी रेल, ऊंदा साया भी नहीं दिसया खाली थी गई साड़ी सारी रेल।
1: साईं मेरा जो अपनी मां बोली दी जबान छसे जो
0: जी हाँ,
1: उनका मजा ही एक नवेकला है मजा
0: जी हाँ।
1: साईं मेरा जो जबान तो संभाल के रखी है, इतनी जबान है कुल किल जबान असल जबान है संभाल के रखी है। मेरी तो यही गुजारिश है कि ये जबान को तो सा दूजे नए बाला को नई नस्ल लोगों को ही अगे खत्म ना हो दो इस जबान को, और ये जबान तोड़े अगे लोग ही लोगों के संभाल के रखी और तो आज का ही नहीं नए बाल तो बोलेंगे नहीं जबान।
0: बिल्कुल असा तोड़े आखे ते फुल चढ़े सो और असा अपने बालों को मतलब है ये जबान जी है बस अपनी मिरास दे विच दित्ती दे सो, इन गल दी तुसा कोई चिंता ना करो।
1: शबाब साहब जी तो बहुत करेंदा है तुहाडे नाल होल गल मोहड करे सा करूँ पर वक्त इजाजत नहीं देंदा, असा तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हाँ जो तुसा अपने रुधेनियां च टाइम कढ़िया है ता ते साडे स्टूडियो च तशरीफ घनायो ते वत वी उम्मीद है कि वत वी तुसा फिर।
2: अभी आप कार्यक्रम सिराय की सुन रहे थे, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश की 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें यूसीसी ड्राफ्ट, राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाले ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के भूमि आवंटन नियमों में भी बदलाव संबंधी निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 यानी यूसीसी का मसौदा मंजूर कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि इस प्रस्तावित मसौदे के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लेवन संबंधी मामलों में पूरे राज्य में एक समान कानून लागू किए जाएंगे।

0: हालांकि आदिवासी समुदाय के पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
1: इसमें मुख्य रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
0: राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। श्री पटेल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और हरित आवरण बढ़ाना है।
1: इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है, जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मांड पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया है। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उसे अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवा नियम 1951 में संशोधन किया गया है। मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधु को भी अब अनुकंपा नियुक्ति का फायदा मिल सकेगा। सरोगेट माताओं को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्त में 2 साल की छूट मिल सकेगी। वहीं एकल महिलाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 की बजाय 6 चरणों में दी जाएगी।
2: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
0: पीएचडी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्णय को लेकर ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई गई थी। इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इससे संबंधित प्रावधानों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। राज्य की 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई इस लॉटरी प्रक्रिया के साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जयपुर स्थित मुख्यालय में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में ये लॉटरी निकाली गई। इसके अनुसार 309 शहरी निकायों में 50 पद अनुसूचित जाति, 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 188 निकायों के प्रमुख पद अनारक्षित रखे गए हैं। अनारक्षित पदों पर किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगमों में महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं कोटा नगर निगम का मेयर पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया। अजमेर और भरतपुर में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। वहीं नए बने नगर निगम भीलवाड़ा, अलवर और पाली में भी महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। मीडिया से बातचीत में स्वायत्त शासन मंत्री श्री खर्रा ने बताया कि समय की कमी के बाद भी इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया गया है।
3: समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार एसआईआर हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू। 6 नगर निगमों में महिला

0: के लिए आरक्षित हुए हैं। 60% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
1: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस बार आरक्षण तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूले पर विशेष ध्यान रखा गया।
2: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 ULBs में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी, किस वर्ग का प्रत्याशी, ये सभी आज क्लियर हो गया है।
1: निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब 17 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 100 से अधिक कलाकारों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में हुए समारोह में वर्ष 2024-2025 के लिए ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कला रूपों के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ संवाद किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में श्रीमती सीतारमण ने राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के स्टार्टअप फाउंडर्स और युवा उद्यमियों को वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे देश के समक्ष बात करने का अवसर मिलना चाहिए।
4: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डायस में 25-30 स्टार्टअप जिनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहां अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल क्रांति के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही इस पहल से लगभग 75,000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर इलाज बहुत जरूरी है। कमजोर दृष्टि के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो इसी सोच के साथ आंखों की जांच और निशुल्क चश्मा वितरण की ये मुहिम शुरू की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। राजस्थान UCC ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। लंबे अरसे के इंतजार के बाद जैसलमेर में मॉनसून ने दस्तक दी है। अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई, इससे गर्मी और उमस से तो लोगों को राहत मिली है, वहीं खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी ये बारिश उपयोगी साबित हो रही है। नदी तालाब और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक से पशुपालकों को भी राहत मिली है। गड़ीसर सरोवर में पानी आने से नौकायन से जुड़े लोगों में भी उत्साह का माहौल है। इस बीच हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस बार जिले में 46,95,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन विभाग को 32,53,000, पंचायती राज विभाग को 4,12,000, शिक्षा विभाग को 4,52,000 और यूआईटी को 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वन विभाग ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे अपनी नर्सरियों में तैयार किए हैं। मरुधरा की धरोहर नगरी जैसलमेर विकास के एक नए अध्याय की साक्षी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय पर्यटन कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं, आकर्षक वास्तुकला, बेहतर यातायात प्रबंधन और विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाओं के साथ किया गया है। लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर रेलवे स्टेशन के मेगा रीडेवलपमेंट और उसके उद्घाटन के बाद अब स्टेशन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 110 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेलवे की गतिशक्ति यूनिट द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के लिए गर्व और गोडावन संरक्षण अभियान के लिए एक ऐतिहासिक पल सामने आया। रामदेवरा स्थित गोडावन संरक्षण केंद्र में नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार 3 नन्हे गोडावन चूजों को इस विशेष टनल में छोड़ा गया है। ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश में गोडावन संरक्षण की दिशा में नई शुरुआत और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में तैयार होने वाले गोडावण के चूजे इंसानों की देखरेख और संपर्क में बड़े होते थे। ऐसे में जब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाता था तो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना उनके लिए चुनौती बन जाता था। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम से जैसलमेर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में माय भारत के युवा स्वयंसेवक और युवा मंडल के सदस्य जुड़े। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक गतिविधि, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का विशेष ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। जैसलमेर से सटी सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाते हुए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये विशेष अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। जैसलमेर के रेगिस्तानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बीएसएफ ने चौकियों पर जवानों की न केवल तैनाती बढ़ाई है बल्कि अग्रिम चौकियों पर नफरी को दोगुना कर दिया है। पारंपरिक रूप से कैमल पेट्रोलिंग और पैदल गश्त में भी इजाफा किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सीमा पर तकनीकी निगरानी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। रात के समय सीमा पार से होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रखने के लिए नाइट विजन डिवाइस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर का उपयोग किया जा रहा है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय किशोर दिवस के अवसर पर किशोर किशोरियों से संबंधित स्वास्थ्य विषयों, एनीमिया, प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और मानव प्रबंधन करने के साथ साथ स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के निर्माण के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावण रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश रा 309 शहरी निकाया और 41 जिला परिषदा रा अध्यक्ष ओहदा सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर माए राखी जिया यूथ कॉन्क्लेव माए नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों बातचीत की ने। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत में आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी छी। इनमें समान नागरिक संहिता यूसीसी रो मसौदो और राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत दूजा रोखणा री गैरकानूनी और अंधाधुंध कटाई ने रोकण सारू ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 रा करड़ा प्रावधान रा मसौदा ने मंजूरी दीरी छी। इस आगे सरकारी कर्मचारियों रा सेवा नियमा में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजना में सारू जमी आवंटन रा नियमा में बदलाव जुड़िया फैसला ही करी चिया। मीटिंग पाछे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी खबर नवीसा ने मीटिंग में लिया जिया फैसला री जानकारी दीनी। श्री पटेल बतायो कि राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल 2026 यूसीसी रा मसौदा ने मंजूरी दे दी रिची है। मसौदारा तेत ब्याह तलाक उत्तराधिकार भरण पोषण और लिव इन जुड़िया मामला में राज्य में एक सरीखा कानून लागू करिया जावेला। हालांकि आदिवासी समुदाय ने यूसीसी रा दायरा में शामिल नहीं करण रो प्रस्ताव है।
1: इसमें मुख्य रूप से विवाह विवाह विच्छेद उत्तराधिकार इनहेरिटेंस भरण पोषण मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं रीति रिवाजों निकाह आनंद कारज होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
0: इस आगे राज्य में पर्यावरण ने बचावन सारू वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लावण रो फैसलो ही करी चियो। इन तेत खेजड़ी रोहिड़ा और पीपल समेत 29 भांतरा रूखड़ा ने संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव करी चियो है।
1: इसमें पेड़ों को काटने उखाड़ने गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मार्ग पर खाली स्थानों पर स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया है। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र जो वन हमारा आरक्षित है उसके अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा खबर नवीसा ने बतायो कि कैबिनेट री मीटिंग में राज्य में सरकारी सेवावां सारू सेवा नियम 1951 में बदलाव री मंजूरी दी री जी। इन तेत गुजर चुकिया सरकारी कर्मचारियों रा बेटारी बहु नई सरकारी कर्मचारी री मौत री सूरत में अनुकंपा नियुक्ति रो फायदो देवन रो प्रस्ताव है। कोख में दूजारो बाळक पाळवा वाली मायणा ने 90 दिन रो मातृत्व अवकाश देवन रो प्रस्ताव ही मंजूर करी चियो। सगली सरकारी सेवामां माय तरक्की सारू अनुभव री शर्त माय 2 साल री छूट देवण और एकली महिलावां ने मिलण वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 री बजाय 6 दौर माय दी जावेला।
2: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार

0: के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव एक वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
1: जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बतायो कि हर घर नलों जल पुगावन रा फैसला रा बारा माए ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई ची ही चिंड्रा मकसद न पूरो करण सारो इणु जुड़िया प्रावधाना नई मीटिंग माए मंजूरी दीरी ची। राज्य रा 309 शहरी निकायां और 41 जिला परिषदा रा अध्यक्ष ओहदा रा आरक्षण री लॉटरी आज निकाली ची। स्वायत्त शासन विभाग री ओर निकाली ची लॉटरी प्रक्रिया सा गई। आवता स्थानीय निकाय चुनाव जुड़ी स्थिति साफ की है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा री मौजूदगी माए जयपुर माए निकाली ची लॉटरी रे मुजब 309 शहरी निकाया माए 50 ओहदा अनुसूचित जाति 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग सारू आरक्षित राखी ची है। 188 निकाया रा प्रमुख ओहदा आरक्षित नी रखी गया है और वह किणी तबका रो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेला। जयपुर जोधपुर उदयपुर और बीकानेर नगर निगम माए महापौर रो ओहदो अनारक्षित रखी चियो है। कोटा नगर निगम रा मेयर ओहदा सारू अन्य पिछड़ा वर्ग री महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेला। नुआ वणाईजिया नगर निगम भीलवाड़ा अलवर और पाली सागे अजमेर और भरतपुर माए महापौर ओहदा सारू अनारक्षित वर्ग री महिला ही चुनाव लड़ सकेला। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा खबर नवीसा ने बतायो कि समय री कमी रे बावजूद वो काम बेगम बेगो पूरो करण री कोशिश करी ची।
2: समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार एसआईआर हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू। 6 नगर निगमों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित हुए हैं। 60% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
1: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन बतायो कई दफा आरक्षण तय करण माए साफ सुथरी प्रक्रिया और रोटेशन फार्मूला रो ध्यान रखी चियो।
3: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 ULBs में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी किस वर्ग का प्रत्याशी ये सभी आज क्लियर हो गया है।
1: निकाय प्रमुख ओहदारा आरक्षण पाछे अब 17 अगस्त ने वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी निकाली चावेला। जिला माए नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिकावां रा वार्डा रो आरक्षण जिला कलेक्टर रा लेवल माथे करियो चावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 132 कलाकारा ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी री छात्रवृत्तियां और पुरस्कार तीना। नई दिल्ली माए भिया जलसा माए साल 2024-25 सारू संगीत नृत्य रंगमंच और कला रा दूजा रूपां सारू इनाम दिया चिया। ई मौके राष्ट्रपति कहो के इनाम कलाकारां री प्रतिभा और समर्पण ने बतावे है। वह कहो के कलाकार देश री समृद्ध संस्कृति ने बचार राखण माए मोटो काम कर रिया है।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और कारोबारियों सागे बातचीत कीनी। इस मौके श्रीमती सीतारमण कहो कि राजस्थान में स्टार्टअप री शुरुआत करण वाला और नौजवान कारोबारियों ने वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था रे बारा में पूरा देश सामी बात करण रो मौको मिलनू चाहिए।
5: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डायस में 25-30 स्टार्टअप जिनको

0: अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहाँ अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री ने मजबूत बनावन सारू डिजिटल क्रांति माताई जोर दीनो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद हा। वित्त मंत्री एक गैर सरकारी स्कूल में राखी जिया तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल थी। स्वतंत्रता दिवस रे मौके बीकानेर में राख्या जावन वाला राज्य स्तर रा जलसा सारू सगली तैयारियां पूरी फेंकी है। जिला कलेक्टर निशांत जैन बतायो कि स्वतंत्रता दिवस रे पहली वाली सिंजा काल खास ड्रोन शो राख्यो जावेला जिनमें एक के सागे 600 ड्रोन उड़ाया जावेला। आरे जरिए कला संस्कृति रीति रिवाज और राष्ट्रीय भावनाओं जोड़ी सोहनी आकृतियां बनाई जावेला। इन बीच हर घर तिरंगा अभियान रा तहत राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। 12 अलवर जोधपुर झुंझुनू बांसवाड़ा सवाई माधोपुर और चूरू में तिरंगा यात्रा में निकाली ची। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावन रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश रा 309 शहरी निकायां और 41 जिला परिषदां रा अध्यक्ष ओहदां सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर माय राखी जा यूथ कॉन्क्लेव माय नौजवान स्टार्टअप कारोबारियां बातचीत कीनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। 97.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के DDH चैनल पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनबा वाला सगला हेतालु श्रोता मने

0: दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठा हुआ वो कार्यक्रम सुने है आप सगला हेताल माने घणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा रो राम राम एर निवण प्रणाम सा और सागे सागे मनसुनी बहन थाने भी मोकलो मोकलो राम राम सा
1: खूब खूब राम राम प्रभु भाई सा और किसान वाणी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता हेतालु श्रोता गणा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
0: काई हाल चाल मनसुनी बहन।
1: हाल चाल तो गणा ही चोखा है भाई सा।
0: और देखो आपा बात करा के भाई सेवा सेवा सु मेवा मिला अपना माई थे या किया करे है और बड़ा बुजुर्ग भी आ बात किया करता और ई वास्ते महापुरुष भी क्यों गए भाई सेवा है सब सु सिरे सर्व सुखों का मूल दुख छुटे पातक मिटे चित की भागे भूल घना गुण ऊंचा पावे और देवे आदर दान भलाई सबकी चावे होत नीच से ऊंच अनंत ही पावे मेवा राम बक्स हरि भक्त करो सबकी सेवा। मनसुनी बहन सेवा सु मेवा मिले और महापुरुष आई बात की कि भाई प्रकृति के मायने जता भी जिया जून है चाहे रूकड़ो हुए चाहे अपनी यहाँ धरती माँ हुए चाहे इंसान के प्रति अपने दिल रे मायने हमेशा सेवारो भाव होनो जोईजे।
1: भाई सा ते दोहा के माध्यम सु घनी ही मोटी बात कह्या हो सा कि सेवा ही आपने जीवन रो परमो धर्म है।
0: और सेवा की अगर आप बात करा तो देखो प्रकृति ने बचावन री जी की आपनो जज्बो है वह भी एक सेवा के मायने आवे आप रूखड़ा लगा सका देखो बार बिरखारी ऋतु चलन लाग रही है अस्यारे मायने आप रूखा के माध्यम से सेवा कर सका। हाँ कोई आदमी के कने धन हुए तो देखो वो धन सु सेवा कर सके कोई के कने ज्ञान है तो वो ज्ञान सु सेवा कर सके बांट सके है समाज ने एक सकारात्मक संदेश दे सके है।
1: भाई साहब पर यो जो सेवा रो धर्म और ज्ञान है सेवारी जो सीख है कि आपने सेवा करनी चाहिए या जो आपनी वाली पीढ़ी है या तो समझे है लेकिन आपना जो आवाली पीढ़ी टावर टीगर है आ तक भी आपने ई सीख ने ई सेवारी जो अलग है इन्हें आपने पुगानी है सा।
0: बिल्कुल पुगानी है देखो पुराना टाइम का मायने जगह माइता का कनजिया टाबरिया है बननिया लिखनिया है या और आपने दादी है नानी है या कोई घर के मायने जगह बुजुर्ग होता वहां कने वे बैठता जना देखो बटू खाणिया के माध्यम से वहां के मायने संस्कार भरिया जाता है और वे संस्कार है मानवीय मूल्य है वे एक अच्छा नागरिक बनबा के वास्ते आगे चादर खटे न खटे वे काम आता। पण देखो आधुनिक जो दौर है ना मनसुनी बहन एक मायने ज्या मोबाइल को दौर है तकनीक को दौर है वो जरूरी है एक मायने आगे बढ़बा के वास्ते तकनीकी है जिको इस्तेमाल आपन करनो चाहिए पण देखो अपना जगह संस्कार है अपना रीति रिवाज अपनी परंपरावां है बन भी अपन नहीं बोलनो चाहिए।
1: और सेवा के माध्यम सु आपा आपना संस्कारा रो तो संरक्षण करा ही वीके सागे सागा आपनी जो पुरानी धरोहर है जो भी आपना बड़का बसार गया है जी आपना खेत होगा आपनी बावड़िया है आपना तालाब है गांवरा तो आंको भी कुआं के पाल रो आंको सगड़ा को आपा सड़मिल संरक्षण करा यो भी एक आपनी प्रकृति री सेवा रो माध्यम है।
0: बिल्कुल देखो अपना पुराना जगह कुआं बावड़े की आप बात करने लाग रहे हो बन ई टाइम के मायने अगर आपको संरक्षण करा बन बचावा पाच से आवा के मायने पानी भेड़ो उसके तो विश्व देखो एक तो वो फायदो अपन हुसके मनुष्य बहन के भूमिगत जगह जल स्तर ने वो पाछो आपा ऊपर लियास कहा बांगो संरक्षण कर विश्व अपना कुआ बे बावड़ी है प्राचीन जगह चीजा है पुरानी गाँव का मायने है या कटे शहर का मायने है तो वह अपनी बचेड़ी भी रेजियावली आबा वाली जगह पीढ़िया है भाई बन देख पावली का देखो पुराना टाइम की ये चीजा बचेड़ी है और भी के सागे सागे आप प्रकृति की सेवा ई भात कर सका हाँ कि पानी को जो गिरतो हुए जल स्तर है बिना आप पाछो ऊपर लियास कहा।
1: भाई साहब यो तो आपा बात करे घनी चोखी अब आपने कार्यक्रम में ले चाला जानकारी री और।
0: किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है रेशमा यादव जी आप रिसर्च स्कॉलर है मंडा भिंडा चोमू जयपुर सो कार्यक्रम का मैंने पधारिया है और आज आपने जानकारी देवला आधुनिक कृषि में डिजिटल तकनीक को उपयोग इस विषय पर तो सांसु पहले तो रेशमा यादव जी थो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सा राम राम सा।
2: राम राम सा। किसान भाइयों और बहनों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो खेती के पुराने अनुभव और आधुनिक तकनीक को आपस में जोड़ता है। आज का हमारा विषय है आधुनिक कृषि में डिजिटल तकनीक का उपयोग। भाइयों और बहनों आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। मोबाइल फोन इंटरनेट ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल ऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज किसान केवल खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं है बल्कि वह मौसम की जानकारी लेने वाला बाजार भाव देखने वाला ऑनलाइन कृषि सलाह प्राप्त करने वाला और नई तकनीकों को अपनाने वाला आधुनिक कृषि उद्यमी बन चुका है।
0: अब संसु पहले आपसों आई बात जानना चाहूंगा कि खेती के संदर्भ में अगर आप डीजे

0: इस शब्द की अगर बात करा तो डिजिटल खेती है कहीं एक विषय में थोड़ा सो किसान भाई दे बताओ सा।
1: जी हाँ, सरल भाषा में कहे तो खेती से जुड़े निर्णयों और कार्यों में मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृषि ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग करना ही डिजिटल कृषि है।
0: और डिजिटल कृषि के संदर्भ में बात करा तो किसान भाई ने कौन कौन सी सेवाएं है जो कि ई खेती के मायने मिल सके है।
1: पहले किसान मौसम को जानने के लिए आसमान देखकर अनुमान लगाता था। मंडी में फसल ले जाने के बाद ही कई बार भाव का पता चलता था। किसान रोग या कीट की पहचान के लिए विशेषज्ञ तक पहुंचना कठिन होता था, लेकिन आज मोबाइल फोन के माध्यम से किसान मौसम का पूर्वानुमान देख सकता है, मंडी भाव जान सकता है, फसल में रोग और कीट की जानकारी प्राप्त कर सकता है, कृषि विशेषज्ञ से ऑनलाइन सलाह ले सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ ऑनलाइन कृषि सामग्री और सेवाओं के बारे में भी जान सकता है तथा अपनी उपज के बेहतर विपणन के विकल्प तलाश कर सकता है। यानी मोबाइल फोन किसान के लिए एक तरह से चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र बन गया है।
0: डिजिटल तकनीक किसान ने की प्रकार से मौसम के संदर्भ में लाभ देश के है।
1: जी हाँ, मौसम की जानकारी खेती के लगभग हर चरण में उपयोगी है। बुआई से पहले किसान वर्षा की संभावना देखकर निर्णय ले सकता है। फसल की अवस्था में सिंचाई की योजना बनाई जा सकती है। वर्षा, तेज हवा, ओलावृष्टि की संभावना होने पर किसान आवश्यक सावधानी बरत सकता है। इसी तरह किसान कटाई के समय भी मौसम का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बारिश की संभावना हो तो किसान समय रहते कटाई और उपज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि किसान भाई हर दिन या कम से कम महत्वपूर्ण कृषि कार्यों से पहले मौसम की विश्वसनीय जानकारी अवश्य देखे ताकि वो होने वाले नुकसान से बचाव कर सके।
0: जी, फसलों के मायने कई प्रकार का जगह कीट और रोग लगे तो कहीं डिजिटल तकनीक से किसान भाई फसल के मायने लागवा वाला जगह कीट और रोग है वहां की पहचान भी कर सकेगा।
1: जी हाँ, डिजिटल माध्यम इस क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी हो रहे हैं। किसान फसल में दिखाई देने वाले लक्षणों की स्पष्ट फोटो लेकर कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग या विश्वसनीय डिजिटल कृषि सेवा के माध्यम से सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतना जरूरी है। केवल इंटरनेट पर देखकर स्वयं दवा का निर्णय लेना हमेशा उचित नहीं है। कई रोगों और कीटों के लक्षण कई बार एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए फोटो या डिजिटल जानकारी को ओनली प्रारंभिक सहायता के रूप में ले और आवश्यक होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले।
0: और ये तकनीकी अगर आप बात करें तो सिंचाई के संदर्भ में किसान भाई ने डिजिटल तकनीक को कहीं फायदा मिल सके है।
1: इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आधुनिक कृषि से सेंसर, मोबाइल की जानकारी और स्वचालित सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे पानी की आवश्यकता होने पर ही सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का बचाव किया जा सकता है। छोटे किसान भी इसका सरल रूप अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसान मिट्टी की नमी, फसल की अवस्था और मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई का निर्णय ले सकता है। इससे अनावश्यक सिंचाई कम की जा सकती है, पानी की बचत हो सकती है और फसल को आवश्यकता के अनुसार पानी मिल सकता है। याद रखिए, जितना पानी जरूरी है उतना पानी ही देना आधुनिक कृषि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
0: ड्रोन को उपयोग आजकल किसान भाई है खेती के मायने करे है तो इस संदर्भ में आपसे आप बात जानना चाहूंगा, ड्रोन है कहीं और खेती के मायने को की प्रकार से किसान भाई उपयोग कर सके है।
1: जी, ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो खेत का ऊपर से निरीक्षण करने में मदद कर सकती है। बड़े स्तर पर ड्रोन का उपयोग फसल की निगरानी, खेत का सर्वेक्षण और कुछ परिस्थितियों में पिड़कनाशी का छिड़काव जैसे कार्यों में भी किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। हालांकि छोटे किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से ड्रोन खरीदना जरूरी नहीं है। जहां कस्टम हायरिंग सेंटर या सेवा के रूप में ड्रोन उपलब्ध हो, वहां किसान सामूहिक या किराए की सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
0: जी, और आप बात करा कि भाई बाजार के संदर्भ में किसान भाई आपकी उपज ने लेर जावे तो कहीं डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसान भाई बाजार की जानकारी भी प्राप्त कर सके है।
1: जी, यह डिजिटल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान अपनी फसल बेचने से पहले विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि उसकी उपज का बाजार में क्या मूल्य चल रहा है। लेकिन केवल एक भाव देखकर निर्णय लेना सही नहीं है। किसान को गुणवत्ता, परिवहन खर्च, मंडी शुल्क, स्थानीय मांग और वास्तविक बिक्री मूल्य जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल जानकारी का उद्देश्य किसान को बाजार में अधिक जानकारी

0: महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
1: ऑनलाइन सरकारी की योजना है, बाकी जानकारी अगर किसान भाई लेना चाहे तो बिक मायने की प्रकार से डिजिटल तकनीक है जो कि किसान भाई के वास्ते फायदेमंद उसके है।
0: जी हाँ, आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। किसान अपने मोबाइल के माध्यम से योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और स्थिति जैसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतना जरूरी है। किसान भाई किसी भी योजना के लिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक और

0: ज्यादा मिले, तो किसान भाई की खेत की जी लागत है वह कम करवा के मायने भी अपनी जी डिजिटल खेती है या तकनीक है वह किसान भाई ने की प्रकार से मदद कर सके है।
1: जी, तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। इससे किसान की लागत कम हो सकती है, लेकिन तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मौसम की जानकारी से अनावश्यक सिंचाई या कुछ कृषि कार्यों को गलत समय पर करने से बचा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार कृषि आदानों का उपयोग करने में सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार बाजार के भाव की जानकारी से किसान को अपनी उपज के विपणन संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि उसको किस समय पर और किस मंडी में उसको अपना सामान बेचना है। डिजिटल तकनीक सीधे सीधे लागत कम करने की गारंटी नहीं देती, लेकिन बेहतर निर्णय लेने में मदद करके लागत और जोखिम को कम करने का अवसर देती है।
0: और आपनों देश तो गांव को देश है, गांव को जी आप बात करेंगे कम पढ़े लिखे कोई किसान है कोई भाई लोग है और वो ये डिजिटल तकनीक को या ये खेती को लाभ लेना चाहो तो वो की प्रकार से को लाभ उठा सके है।
1: जी बिल्कुल, किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसान को ऐप चलाना नहीं आता तो परिवार का कोई सदस्य, किसान मित्र, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि प्रसार कार्यकर्ता या आसपास का कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। गांव में किसान समूह बनाकर भी डिजिटल जानकारी साझा की जा सकती है। सबसे जरूरी बात है तकनीक से डरना नहीं, धीरे धीरे सीखना है।
0: कोई भाई लोग डिजिटल कृषि ना अपनावे तो भी कम मैंने कोई यहाँ की बात या कोई सावधानियां यहाँ की भी है के जखा वो किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो किसान को सही स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करे।
0: जी
1: तीसरा, ओटीपी, अपना एटीएम पिन और बैंक पासवर्ड जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करे। चौथा, कृषि दवाओं और उर्वरकों के संबंध में केवल प्रमाणित और विशेषज्ञ सलाह पर ही भरोसा करे। और पांचवा, इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सच ना माने। और अंतिम बात है कि डिजिटल तकनीक को अपने स्थानीय अनुभव और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के साथ जोड़कर उपयोग करें।
0: जी और आज कोई किसान है डिजिटल खेती की तरफ आना चाहे या ये डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करे डिजिटल किसान बनना चाहे तो बी के संदर्भ में अगर आप बात करें तो बी किसान भाई ने खट्टा से शुरुआत करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मैं किसान को एक बहुत सरल तरीका बताना चाहूंगी। पहला कदम, अपने मोबाइल में मौसम की विश्वसनीय जानकारी देखना शुरू करें। दूसरा कदम, अपनी फसल और क्षेत्र से संबंधित विश्वसनीय कृषि सलाह प्राप्त करें, जिससे मिट्टी का प्रकार व जलवायु आदि की जानकारी मिल सके। तीसरा कदम, बुआई, सिंचाई, उर्वरक, कीट, रोग और उत्पादन का रिकॉर्ड मोबाइल या कॉपी में जरूर रखें।
0: जी
1: चौथा कदम, फसल बेचने से पहले बाजार भाव की जानकारी ले। पांचवा कदम, सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण, हर नई डिजिटल तकनीक को पहले समझे और फिर अपनाए।
0: बिल्कुल, आप डिजिटल तकनीक के विषय में बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हो। अब आखिर के मैंने कोई यहाँ की बात जकी छूटगी हुए और किसान आप संदेश के तौर पर बताना चाहो।
1: मेरा किसान भाइयों और बहनों से यही कहना है कि आज खेती में मेहनत के साथ साथ जानकारी और समय पर निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल को केवल बातचीत और मनोरंजन का साधन न समझे, इसे खेती की जानकारी प्राप्त करने का भी माध्यम बनाए। मौसम की जानकारी देखे, बाजार भाव जाने, कृषि विशेषज्ञों की ऑनलाइन सलाह ले, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे और अपने खेत का रिकॉर्ड जरूर रखे। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखें कि डिजिटल जानकारी का उपयोग विवेक और सावधानी के साथ करना है। डिजिटल तकनीक किसान की मेहनत का स्थान नहीं लेती, बल्कि किसान की मेहनत को बेहतर निर्णय, बेहतर प्रबंधन और बेहतर योजना से मजबूत करती है। इसलिए किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल तकनीक से डरना नहीं है, इसे धीरे धीरे सीखना है और अपने मोबाइल फोन को इस तरह उपयोग में लेना है कि किसान को लगे कि यह एक चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र है।
0: आधुनिक कृषि के मायने डिजिटल तकनीक को उपयोग ई विषय पर आज अपन जानकारी दे रहा है रेशमा यादव जी, आप रिसर्च स्कॉलर है मंडा भिंडा सोमू जयपुर सो कार्यक्रम का मैंने पधारिया और आज अपन बहुत ही महत्व विषय पर जानकारी दी, एक वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा।
2: भाई सा, आपने कोरो कोरो धन्यवाद कोनी देवे सा। तो चाला और धन्यवाद स्वरूप सुना एक छोटी सी लोक रचना।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: हाँ तो मनसुनी बहन, लोक रचना तो आप बहुत ही चौकी सी सुनी, पण अब थोड़ी सी मौसम की जानकारी भी भाई लोगों तक पूर्ति कर दियो।
4: आज रे मौसम रे हाल री अगर आपा भाई साहब बात करा तो आपने जयपुर रो जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। और आपा बात करा अगर कोटा री, कोटा रो भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। जहां आपा बात करा हा बीकानेर री, तो बीकानेर रो लगभग अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहवारो अनुमान है भाई साहब।
3: और देखो बरसात रो मौसम है भाई, लोग खेतां रे मायने लाग रिया है काम काज के मायने, पण देखो अब घड़ी सरो करण लग रही है। मनसुनी बहन का आज के किसान वाणी कार्यक्रम को टेम अठे ही पूरो हो रहे है, तो भाई लोग आज के कार्यक्रम सु थे थका भाई प्रभु दयाल वर्मा
4: और मनसुनी ने दियो विदा। चाला और करा
3: राम राम सा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
6: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

राम राम सा। कार्यक्रम चौपाल सुनने सगळ्या परिवाराने भाई रामेश्वर का घणान घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो, आज कार्यक्रम लेर फिर हाजिर हूँ सा। और देखा नहीं तो आज आपने सुरतगढ़ का आसा पास है बिरखा जिकी है बाबी हुई है कि और कई क्षेत्रांग में भी सुनने आपने आई है बात के जिकी बूंदाबांदी है, बरखा जिकी है, बा हुई है। बिया देखा नहीं तो अब सावण को जो वो महीनों चलन आ रहे है और ई महीने में बरखा है बा होएगी। लेकिन अपन ने ध्यान रखने की बात आ है कि अब जिए ही थोड़ी सी बरसात होएगी या फिर आसला पासला क्षेत्र में अगर बरसात होएगी तो कि अगर पानी को जो भराव क्षेत्र है वो भी होएगो। तो अब की है कि ध्यान रखने वाली बात तो आ है कि अपना जो छोटा टाबरिया है, अपना जो पशुधन है, वे भी भराव क्षेत्र से दूर रहे, बाकी पूरी आप ख्यात रखा। क्योंकि कई जी की दुर्घटना है भी अपनी छोटी सी लापरवाही से हो जाए और छोटा टाबरिया है भी कई बार नहाने खातर जका ऊंडा टोआ है, जका दलडा है, गड्ढा जका है, मामा उड़ जाए तो भी चुकी है कि नुकसान भी हो सके। तो एक तो सियाणी बात आई है कि आप टावरान थोड़ा सा जापड़ थापड़ करके रखेंगे और पशुधन ने भी अपना एक बार पानी पुणी प्याण ने जका ऊंडा टोआ है, भराव क्षेत्र है, बैठे ना लेके जावा। और भी ही आपने किया कि घग्गर नदी जिकी है बा भी आ गई, तो अपना जगह छोटा मोटा टाबरिया है भी अगर इन्हें भी न जावे घूमने ने देखने न जावे तो बैठे भी अपन पूरी ख्यात रखनी है। टावरंग किया कि कई बार भी लालच गमा या खेड खेड गमा अपने पानी गमा बढ़ जाए तो बीच में भी नुकसान हो सके सा। और इन अलावा अपनो जो पशुधन है अभी बदलता मौसम है बिंगो भी अपन ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि बदलाव का सागे सागे जो को शारीरिक बदलाव है चाहे वो मिनखा में है चाहे वो पशुओं में है होएगो। और ये बदलाव ने अगर आप सही तरीके से देखा नहीं तो किया कि अपने शरीर की जी तासीर है, शरीर की जी गर्माहट है, शरीर को जो स्वभाव है वो बदलेगो। और बिंग हिसाब से ही आप कि है कि अपना जो खान पान है, अपना पशुधन को जो खान पान है वो अपने निश्चित तौर तय करना ऐसा। अपना आप एक भजन सुन लिया और आज थाने एक नाटक भी सुना सियाँ कानाबाती इंगा लेखक जगह है वे भगीरथ रिवाड़ है और प्रस्तुति जी की है वह राजेश चड्डा की है। तो विश्व पहले आप एक भजन सुन लिया सीमा मिश्रा और बांग साथियों के बाज गवा पचा थाना नाटक सुना सियाँ। लियो सुनो थे भजन।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: बिल्कुल सा थने सीमा मिश्रा और साथियों का वाजगमा वो भजन सुनायो और आज कन्नाबाती नाटक जका है वो ले रहा हूँ। इंगा जका लेखक है बे है भागीरथ रेवाड़ और प्रस्तुति जकी है बा है राजेश चड्डा की। तो थे सुनो नाटक कन्नाबाती।

0: क्या किन्ने मर्जो केठा, मैं तो ओलो ही कोनी काट्यो नी। ले अब क्यों गयो, अबे काट लूंगी और के तो। ओ फुसिया, तेरे दादे से बात कर ले फोन पर। किन्ने रे, अले हूँ तो भूलीगी, बासू बोल और गई। हाँ अब के करा।
1: अरे क्यों गयो, के रोड़ो मचा रखे मऊ दिन गे दिन गे।
0: तेरे दादे से फोन पर बात कर ले, फोन आयो है आज तो पूछी ना।
1: ले यहीं पर हाथ तो रख लिया रे, सगड़ी बातों दादे ने सुनी जन लाग रही है।
0: हैं आले
1: फेरे
0: ले वाह, सुनी जाए तो सुनी जो, हूँ क्या करूँ, ओ जद आवे जद तू केठा किन्ने टप जावे। सुनी जाए तो सुनी जो भले।
1: हूँ क्या सारे दिन इंग कन्ने बैठे रहूँ मऊ, बात किसी करे तू। हेलो हेलो, कौन बोले?
2: अरे कौन पूछियो? अरे तेरो दादो बोलू बेटा।
1: दादो? दादो तो घरे बैठे है फिर थे।
2: अरे हूँ दूसरो दादो बोलू बेटा।
1: के फिर किसा दूसरा दादा? हूँ सवल पिछड़े कौन था दादा?
2: हूँ तेरो दादो शोप तो बोलू घमंडी आलो।
1: हाँ हाँ याद आ गई, लारली पर यहाँ होली लाया थे, वही होली दादा।
2: हाँ बेटा भाई, खूब पिछाने होते तो
1: क्या को कवा थे दादा।
2: अरे के कह रहे हो बेटा, ए मोजी कट्ठे है।
1: अब के ठा कट्ठे मुन्ने के ठा, हूँ के करवाड़ो था ने बाक नो गम में उने का खेत में उसी।
2: अरे तो सुन बेटा सुन, बे घर आवे नी।
1: हाँ?
2: तो एक काम को कह दे बेटा।
1: चंगो केनो है थे मन के दियो दादा।
2: अरे केनो के है, कह दे बूढ़ी भैंस छोड़ जैसी, शानो बेटो याद रह जैसी बात।
1: ए रे जी सी इतनी सी बात याद रह जी सी, ठीक है के देसी हूँ। अच्छो अबे मेलू।
2: अच्छा मेल दे बेटा मेल दे।
1: चंगो।
0: है फुसिया, क्या गो के वा तेरा दादू?
1: क्यांगो कवा रे। हाँ कवा के भूर्ती भैंस ने छोड़ दी यो।
0: हैं भैंस छोड़ दे स्या? अरे भैंस छोड़ दे स्या तो थे लाग से क्या गए इतना जना? छोड़ दिया रे छोड़ दिया।
1: ए छोड़ो तो छोड़ो थारी मर्जी, ना छोड़ो तो मऊ थारी मर्जी है। समाचार तो ओई और मैं दिनो टिपार, अबे जाऊं गांव मने खेल ने मंठा को नहीं जाऊं।
3: हेलो हेलो हेलो
4: हेलो, किसियो बात करनी है?
3: ते कौन बोलो?
4: हूँ के बांग अगर सियो बोलू।
3: अच्छा अच्छा सुनो सुनो
4: सुनो।
3: ए बटाऊ आवेगा, ठीक है के?
4: हाँ
3: थरबा ने बता दियो।
4: ठीक है ठीक है। पतिया, ओ पतिया किन्ने गयो केठा इतार तो? पतिया
5: के कह मऊ?
4: जा खेत बग जा, तेरे बाबे ने बुला लिया, घरे बटाऊ आवेगा।
5: ठीक है मऊ, जाऊं अबार ले रहा हूं।
4: ले भाई बटाऊ आवे तो तैयारी सारी करा। अल्ले ओ तो पूछे कोनी कितना जना होगा। ले 5-7 तो आवे ला, आपनो की है खाना तो बनानो ही पड़सी।
6: लियो यहाँ के बात हुई?
4: ले बात की हुई, फोन आयो बटाऊ आवेगा। तू मन के पूछे फिर? तू मेरे सागर लाग जा, काम करा काम। हाँ खानो तैयार करवा।
6: लियो काम काम हूँ सारो ही करवा देसी हूँ सागे लागर।
4: हाँ करवा देसी तो आयड़ा बटाऊंगी शान रह जिसी।
6: इमे के बात है, ओ घर को काम सदा ही करा, आज के नू है।
4: हाँ जल्दी जल्दी कर ले।
1: अरे क्या खातर बुलायो, की काम हो गयो?
4: की कौनी फोन आयो बटाऊ आवेगा।
1: बटाऊ?
4: हाँ मैं तो फोन आवता ही 5-7 जना को खानो बना लियो है, एर खेस चून थाने बुला लिया।
1: अरे फोन आयो कठू हो?
4: फोन सदा कठू आए करे, बैठो ही आयो।
1: 5-7 जना, ले फूट गया फूट, कर लियो बात। अरे कन करे हो तो की ठा लागे?
4: ठीक के समझो कौनी के सदा कौन करे करे फोन?
1: अरे फोन कठू आयो कन करे हो, सरग्यो काम तेर लो तो जिम्मा ही सरग्यो।
4: मैं तो कद गाड़ी

0: निकल लाग रहा है बटाऊ आई तो मोड़ो क्यों कर दियो दिन छिपन आलो हो गयो
1: आ गया बटाऊ अच्छा आया तेरे कानी
0: हूँ आप सुनियो फोन अब किन्ने उठ गया बटाऊ है
1: अपने कोई बटाऊ आवन आलो कोनी हो तन्ने किन्नो सुन लियो फोन हे भगवान क्ये करूं इंगो
0: गरे हूँ एकली हूँ जो दो ही सुनो फोन अब क्यों हो यो
1: हो गयो अच्छा हो गयो कोई फालस फोन सुन लियो सी वो तो हुई को सके नी
0: है फालस फुलस को तो मन था कौनी फोन तो आयो है अरे बताओ ना आया तो हूँ क्या करूँ अबे
1: बस आएडा ही है कोई को आवे नी खानो खा लियो एर सो लियो अच्छो फोन सुनवन तो
0: यो देखो आगी बारे गाड़ी आगी बटाऊ आगे लगे
1: हैं लगे तो है चाल देखा दिखान
0: अल्ले ए तो पड़ोसी अंगरे बढ़ गया लगे
1: वाह हूँ समझ गयो समझ आजा आजा एक गरमा आ जा तो
0: के हो यो अब
1: अरे सुन तो सरी ओ फोन नी ओ पड़ोसी अंगो एर समाचार आयो बंगो सुने तो की है कोनी बस अच्छा फोन सुने आते हैं तो
0: हेलो हेलो
2: हेलो
0: कौन बोल रहे रुकी के
2: हाँ मैं ही बोलूं ठे कौन बोलो
0: मैं लिच मा बोलूं के करो
2: करण ने की है बस थोड़ो घणो घर को काम करूं ठे के करो
0: हूँ बस गा भैंस की धार काट ली र बंटो चंटो टेक सियो
2: लियो आ ले थे तो सो घर को काम कर लियो मैं तो अजय की करियो ही कोनी
0: कर के लियो अज रोटी बाटी को तो सोई पड़ी हुई है
2: सुनो गा भैंस चोखो दूध देवे के
0: दिया है कि थोड़ो घणो चा पानी चोखो थारे भैंस भी आगी के
2: हैं ना ओ कठ है अज तो मन लागे 20-25 दिन ले सी थारे क्या गो दिनो दापो है
0: मारे तो है दे जो कोई है चल ले जीते ठीक है साग सब्जी में के बनायो है आज
2: देखूं की न की तो बनाई शा हाँ याद आयो दाल पापड़ बना ले श्या
0: सुनो के कोई चोर उगरे हुए तो नुड़ाइयो है थोड़ी सी पापड़ ती कद बंट लिया मने तब कबूला ही कौनी
2: ए तो लार ले दिना ही बंटिया थे जद पीर गेड़ा नी बां दिना में बटिया हो बठे से राजी खुशी है कद आया थे
0: 7-8 दिन तो हो गया बस मिलने गई हो
2: थारो तो पीर पिपरण के कने कोनी के
0: हाँ पिपरण के नहीं है क्यों देखिया पूछा
2: लियो थाने ठाई कोनी पिपरण के सारे मारली भतीजी ब्याड़ी है जानो के बने
0: के ठा भाई मेरा अगत कोई जिक्र को आयो नहीं के नाम है गाम को
2: नाम नाम लेवे करे तो है अरे मेरे तो अब चेते को आवानी है तो बठी सारे कठे ही है थारली सड़क पे ही पड़े
0: मारली सड़क आ सड़क तो घनी लंबी है ठेठ बीकानेर जैसलमेर ताई जावे अब थारली बती जी के टकड़ रहे जे
3: माऊ ए माऊ
0: के अब तू किन्नो आ गयो रे स्कूल में मिंटी को रखे नी ठहरी कर
3: माऊ किंग फोन है
0: ए तेरी काकी से बात करूं
2: कौन है
0: आसियो है आयो है स्कूल से
2: कितनी में पढ़े है आसियो
0: ए पढ़ गाल दियो स्कूल में सिक्के कौन सार दिन
2: थारे तो टाबरिया ठीक ही पढ़े चौथी में कोनी के
0: ए तो अठाई सी छोटियो पढ़ने में की ठीक है
2: वो पढ़ ले तो ही चोखो मारे तो आप टिंगर इया ही है पढ़ाई में
0: आंगा बाप पढ़िया तो ए पढ़ सी पढ़ने कठे जिग्या है
2: पढ़ सी बिताई चोखा लियो आज तो सोई काम रह गयो फेर
0: है काम क्यों रह गयो थारे तो दिराणी सो की काम कर लेती हो सी
2: कर लिया बन कर लिया और हूं करा लिया आथन ताई एक ही काम ने लिए बैठी रवे
0: यहाँ की करे तो की सारो तो है ही
2: सारो गिनान में तो है ही बाकी तो की ना करण ने नी की करान ने बस इया ही है
0: की काम को तो सारो लगावे ही है अच्छा टाबर है बापड़ी
2: हाँ टाबर ही है जगह काम में लगा दियूं वो आखिर मन ही सागे लागर पूरो करनो पड़े

लियो जी, थाने नाटक सुनायो काना बाती। इंग आज का लेखक हा बे हा भागीरथ रेवाड़ और प्रस्तुति राजेश चड्डा की। पण आपां एक गीत सुन लिया, लियो सुनो सा।

बिल्कुल सर, थाने हरियाणवी गीत सुनायो। और बात करें आप खेती बाड़ी की, और खेती बाड़ी की बात तो आई है कि अब मौसम जो है वो बदलने ला रहा है, तो आपने जो फसलों में पानी धानी देना का जो काम है वो मौसम ने देखता तक अपन करना है, क्योंकि बरसात को जो पानी है वो भी अपनी जगह फसलों ने अच्छो मुनाफो देश का माना, तो अपने हरियाली जकी है, रंगत जकी है, वह बढ़िया देश का है। लेकिन ऊपर को जो पानी है वो अगर अपने लगाना पड़े तो भी अपने मौसम ने थोड़ा सा जांच परख करके देगी, फिर ही अपने लगाना है। लेकिन एक बात है ना और बता सियाँ के अब बरसात को मौसम चलन ला रहा है, तो जो को बरसा को पानी है बिन बचाना को जो की जुगत है, जो बचाना को जो को काम है वो अब अपने करना है, क्योंकि खेत का अगर छोटा मोटा अपना कोई डिगी टांको बनाएडो है, कोई भंडो बनाएडो है, तो भी पानी ने आप बैठे भिड़ो कर सका, क्योंकि आने वाला समा गमा की अगर पानी की कमी है वह देखने मिलेगी। और वो बरसात को जो को पानी है वो एड़ो ही जावे कोई काम को नहीं आनी, ईशो तो अच्छी बात तो आई है कभी पानी ना अपन भिड़ो कर लेवा, और आने वाले चाहिए कोई किसी भी फसल है बिना अपन लगा सका। कई बार ईशो मौसम आ जाए कि बरसात की हवा कोनी हुए नहीं, तो बी टेम किया है को भिड़ो करेड़ो जो को पानी है वो अपने काम आ जाए। इन वास्ते अपन ने बरसात को जो को पानी है बिंगो सदुपयोग करना जरूरी है, और सागे सागे ई बात को भी ध्यान रखना है कि अब आलेडा सलेडा को मौसम चलन ला रही है, और इसीलिए मौसम का मा किया है कि बिजली का जो उपकरण है बे थोड़ा बहुत कठी उघाड़ा है, तो बने बढ़िया तरीके से अपना जका जानी जान मिनख है मिस्त्री है बन बुला के और सही करवाना जरूरी है। कई बार घर में आप देखे कि हाँ का तार टूटेड़ा फूटेड़ा है, कठू उघाड़ा है, तो आपने घर में किया छोटा मोटा टाबर भी है, कोई शाणु मिनख भी कई बार बुढ़े खमा हाथ लग जाए तो भी शो नुकसान हो सके। और आपने जका गली का माँ मोहल्ला का माँ अगर कोई खंभा लागेड़ा है और बंगी जकी सपोर्ट वाली स्टेक जकी लागड़ी है, तार जकी है वह लागड़ी है, तो बिना अपने हाथ उतनी लगाना है, क्योंकि इसीलिए मौसम में किया कि हवाई करंट जो है वो भी अब खंभा का माँ रहने की संभावना रहे, तो आपने जगह छोटा टबरिया पशुधन है बने इंसू बचा के रखना जरूरी है। ऐसा लापरवाहियाँ जकी है वे बहुत बड़ो नुकसान कर जाए, जबकि भरपाई करनी बड़ी मुश्किल।

भुजे। और सागे सागे अपन है खान पान को पूरा ध्यान रखना है, बड़ा बुजुर्ग जो कहे बंग खान पान को पूरा ध्यान रखना है। और अब जी अब वो चौमासो जो को है होगा तो थोड़ी बहुत किचड़ जो को हुई है तो मच्छर जो है बे भी पैदा होगा, तो बंगो बचाव बंगो जाबतो जो को है वो अपने पशुधन के लिए अपने खुद के लिए टाबरिया के लिए करना जरूरी है। क्योंकि ये मौका की है कि जगह मच्छर है बे कई तरह की बीमारियाँ फैलाने को काम करे, तो अपने आस पास होश कर तो किचड़ कादू जो है वो कम से कम ऋण देना है ना। या तो बरसात का किसी हाथ दे जाए, लेकिन अपनी कोशिश तो आई रहनी चाहिए कि आप जो को किचड़ कादू है वो कम से कम आप करा। पर आज को कार्यक्रम थाने किसोक लाग गयो और वो थारा कागजा शू मेल शू पतो लाग सी और तेज की संदेश है जो मेल है बीमारते जरूर पुगता करियो सा। पर अब भाई रामेश्वर ने दो आज्ञा, राम राम सा, राम राम।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। प्रस्तोता थे रमेश चावरिया। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

सुनिए, पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में

राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधान

रुकावटों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री

किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा

0: सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है डॉन।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों आज की फिल्म है डॉन। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये अगला गीत।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी डॉन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जीते कुल 35 पदक। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सभी वर्गों के फाइनलिस्ट तय। महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना और इगा स्वायतेक होंगी आमने सामने। मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बने बाएं हाथ के गेंदबाज। और लेह में पहला 24 घंटे खुलने वाला आइस हॉकी रिंक शुरू, शीतकालीन खेलों को मिलेगा बढ़ावा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलवारबाजी से। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर एक खास रिपोर्ट।

भारतीय टीम ने तलवारबाजी के इस खेल में असाधारण कौशल दिखाते हुए प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी पर कब्जा किया, जो साल 1982 से टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश को दी जाती है। चार दिन चली इस बेहद रोमांचक और कड़ी प्रतियोगिता में भारतीय तलवारबाजों ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। भारत की इस ऐतिहासिक महाविजय की नींव खेल के हर स्तर और हर वर्ग में खिलाड़ियों के चौतरफा और निरंतर शानदार प्रदर्शन से रखी गई, जिसकी शुरुआत जूनियर अंडर 23 श्रेणी से हुई, जहां भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर अपनी युवा शक्ति का परिचय दिया। इस विजय लय को सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बरकरार रखा गया, जिसमें भारतीय तलवारबाजों ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक अपने नाम किए। इन व्यक्तिगत मुकाबलों में तनिष्का खत्री ने सीनियर व्यक्तिगत एपी स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में खुशी दाभाड़े को 15-7 से हराया। इस स्पर्धा में प्राची लोहान ने कांस्य पदक जीतकर भारत का वर्चस्व बनाए रखा। वहीं महिला फॉयल स्पर्धा में वीपी कनागलक्ष्मी ने एक बेहद करीबी मुकाबले में भारत की ही जॉयस अशिता को 15-13 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ओलंपियन भवानी देवी के बाद सीनियर व्यक्तिगत राष्ट्रमंडल स्वर्ण जीतने वाली इतिहास की केवल दूसरी भारतीय महिला बनी। पुरुषों के व्यक्तिगत मुकाबलों में भी भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां सिंह करण सिंह ने सीनियर पुरुष सेबर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के शिम यूनगी को मात देकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर पुरुष एपी फाइनल में राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और युवा सनसनी निखिल वाघ ने अंडर 23 पुरुष सेबर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप का समापन चौथे और अंतिम दिन सीनियर टीम स्पर्धाओं से हुआ, जहां भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में से 5 में स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। विशाल

0: तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने तलवारबाजी में भी असाधारण कौशल दिखाते हुए भारत का विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। और अब बात फुटबॉल पर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उप महासचिव एम सत्यनारायणन ने आज कहा कि भारत ने अक्टूबर में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ होने वाले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच को प्राथमिकता देते हुए पहले फीफा आसियान कप से नाम वापस ले लिया है। भारत ने शुरुआत में फीफा के इस नए टूर्नामेंट में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार किया था और बाद में उसे डिवीजन ए के ग्रुप ए में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया था। ये प्रतियोगिता 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। और अब बात स्क्वॉश पर। भारत की शीर्ष वरीय महिला खिलाड़ी तन्वी शर्मा और पुरुष खिलाड़ी सूरज कुमार चंद स्क्वॉश चैलेंजर टूर के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। तन्वी को सोहायला हजेम ने और सूरज को मोहम्मद गौहर ने हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर इवेंट के सेमीफाइनल में आज भारत को दोहरा झटका लगा। महिलाओं की टॉप सीड तन्वी खन्ना और पुरुषों की चौथी सीड सूरज कुमार चंद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तन्वी को मिस्र की तीसरी सीड सोहायला हजेम ने 11-6, 2-11, 7-11, 7-11 से मात दी, जबकि सूरज चंद को मिस्र के टॉप सीड मोहम्मद गौहर ने 11-8, 11-2, 11-7 से हरा दिया। इससे पहले हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीतने वाले सूरज चंद ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हमवतन 8वीं सीड ओम सेमवाल को 4 गेम में मात दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से शिकस्त दी। 5 गेम का ये मुकाबला 73 मिनट तक चला था। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 6वीं सीड अयान वजीर अली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से हराया और पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। महिला वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां हमवतन 6वीं सीड निरुपमा दुबे को सीधे गेम में हराया, लेकिन सेमीफाइनल में मिस्र की तीसरी सीड सोहायला के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। फाइनल मैच मिस्र के खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें सोहायला महिला खिताब जीतने के लिए दूसरी वरीयता प्राप्त मीना वालिद से भिड़ेंगी, जबकि गौहर पुरुष खिताब के लिए तीसरी वरीयता प्राप्त सैफ रेफे से मुकाबला करेंगे। इस इवेंट में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग के लिए $9,000 की समान इनामी राशि रखी गई है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अलग अलग वर्गों के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष। अलग अलग स्पर्धाओं में आज मुकाबले खेले गए और विशेष कौन कौन से ऐसे जो डिवीजन है जिसमें आज रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।
2: जी प्रशांत, अगर आज हम बात करें महिला सिंगल्स के मुकाबलों की, तो वहां कोको गॉफ और एलिना रायबकीना के बीच मुकाबला खेला गया, जहां रायबकीना ने 5-7, 6-2, 6-2 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। और वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो स्वितिलोना और स्वाइतेक के बीच खेला गया, जिसमें स्वाइतेक ने 6-3, 1-6 और 6-3 के साथ इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो लर्नर टियन और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला खेला गया पहला सेमीफाइनल, जहां बेन शेल्टन ने एक तरफा मुकाबले में लर्नर टियन को हराया 6-2 और 6-3 से। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने राफेल जोडार को हराया 7-6 और 6-4 से।
0: जैसा कि आपने बताया कि एलिना रिबाकिना और इगा स्वाइतेक ने फाइनल में जगह बनाई, तो आज सेमीफाइनल का मुकाबला महिला डिपार्टमेंट में कैसा रहा उनका आज?
2: जी अगर उनके महिला मुकाबलों की बात करें तो सेमीफाइनल मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक खेला गया था
0: जी।
2: लेकिन अब जो फाइनल कल खेला जाना है स्वाइतेक और रायबकीना के बीच
0: जी,
2: तो अगर वहां रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्वाइतेक अभी नंबर वन खिलाड़ी हैं, जो 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जिसमें 4 फ्रेंच ओपन, 1 US ओपन और 1 विंबलडन भी शामिल है। वहीं अगर रायबकीना की बात करें तो उन्होंने इस साल काफी प्रभावित किया है 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। इससे पहले वो 2022 में विंबलडन जीत चुकी हैं और 2-3 1000 ATP टूर के टूर्नामेंट में भी अपने जो है परचम लहरा चुकी हैं।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि महिला सिंगल्स का जो ये जो मुकाबला था एलिना रिबाकिना

0: और इगा स्वायतेक का वो 2 घंटे 50 मिनट तक खेला गया था और इसके बाद फाइनलिस्ट तय हुआ। और विशेष पुरुष वर्ग में भी आज कई मुकाबले खेले गए, फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। तो कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
1: जी, आज शेल्टन और नकाशिमा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, क्योंकि इनका भी मुकाबला कल ही खेला जाना है, तो शेल्टन जो है वो अमेरिकन, अगर उनकी बात करें तो वो सेकंड वरीयता प्राप्त हैं और वहीं वो 6 सिंगल ATP टूर टाइटल जीत चुके हैं और 2025 के वो कैनेडियन ओपन विनर भी रह चुके हैं। और वहीं नकाशिमा की बात करें तो वो अभी इतना अनुभव उनके पास नहीं है। 2022 में उन्होंने 1 ATP सिंगल्स टूर जीता था और उसके बाद अभी हाल ही में हुए नेशनल बैंक ओपन फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी।
0: और इस प्रतियोगिता में डबल्स के भी मुकाबले खेले गए, मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में कैसा रहा प्रदर्शन आज?
1: देखिए, मेंस डबल्स में प्रदर्शन जो है काफ़ी शानदार रहा। अगर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो ब्राज़ील के राफेल मेटोज और ओरियानो लूस की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के मैट पाविक और सेल्वाडोर के मोरेडो अरेवेलो से होगा।
0: जी,
1: और अगर महिला सिंगल्स में देखें तो चेकिया की कैटरीना सिनियोकोवा और चीन की झांग शुआई की जोड़ी इटली की साराफ ईरानी और अमेरिका की निकोल मार्टिनेज के साथ मुकाबला करेगी।
0: अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी कनाडा ओपन का खिताब जीतते हैं। लद्दाख में शीतकालीन खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कृत्रिम आइस हॉकी रिंक का उद्घाटन किया। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक रिंक में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। सुनते हैं लेह से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: Governor of Ladakh, Vinay Kumar Saxena, today inaugurated the Union Territory's first international-level artificial ice hockey rink at NDS Stadium in Leh. Built at a cost of around 42 crore rupees, the world-class facility has a 24-hour chilling system, allowing players to train throughout the year beyond Ladakh's short natural ice season. The Lieutenant Governor said the rink will help young players prepare systematically for national and international competitions.
3: लद्दाख में आइस हॉकी रिंग का इनॉग्रेशन हुआ है और ये ऐतिहासिक दिन है लद्दाख के स्पोर्ट्स के सिलसिले में। हम सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बहुत बढ़ावा देते हैं और लद्दाख में जो बच्चे हैं उनको आइस हॉकी का बहुत शौक भी है और इस रिंग के बन जाने से अब हमारे जो लद्दाख के बच्चे हैं वो 24/7 12 महीने यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैचेस खेल सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर जल्दी एक बहुत बड़ा इवेंट किया जाए जिसमें नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आएं और हमारे बच्चों को एक्सपोजर दें कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आए।
2: दिस फैसिलिटी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सपोर्ट्स टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमी। फॉर सपोर्ट्स कैन, दिस इज खुर्शीद यूसुफ फ्रॉम लेह लद्दाख।
0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने धारदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 6 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। हालांकि इस समय मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कई अनुभवी गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया। स्टार्क ने इस विकेट के साथ ही इतिहास रच दिया। स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: स्टार्क ने शादमान इस्लाम को पवेलियन भेजते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया है। स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट हो गए हैं। वहीं हेराथ ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 433 विकेट लिए थे। स्टार्क वसीम अकरम को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 414 विकेट चटकाए थे। टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से बांग्लादेश के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ और पहली पारी में टीम सिर्फ 198 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ट्रेविस हेड महज 22 रन बना सके, जबकि जैक विदराल्ड 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्नस लाबुशेन सिर्फ 1 ही रन बना सके। कैमरून ग्रीन का बल्ला भी खामोश रहा और वे 13 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरी ने 19 और ब्यू वेबस्टर ने 12 रन बनाए। कप्तान पैट कमिंस 9

0: बनाकर हसन महमूद का शिकार बने। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए। जया भारती स्पोर्ट्स स्कैन।
1: विशेष श्रीलंका से भी भारत का मैच होना है 15 तारीख से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, भारत कहां भी लाई कर रहा है?
2: देखिए प्रशांत, अभी भारत की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी पांचवें स्थान पर है 48% के साथ, और अगर उनको WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो 7 मुकाबले जीतने होंगे या फिर 6 मुकाबले जीतने होंगे और 2 ड्रॉ कराने होंगे। अगर अपनी जगह बिल्कुल सुनिश्चित करनी है, दूसरे की जीत पर नहीं रिलाई करना है, तो 8 मुकाबले जीतकर 68% अंक हासिल करने होंगे।
1: और श्रोताओं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी, झारखंड ओडिशा पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
6: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
4: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
7: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से

0: लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
3: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
4: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
5: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov

0: mumbai.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते।

प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
2: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरैक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई के बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य है। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
2: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को

0: किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है। और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हेपेटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे
1: जी
0: विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
0: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में ICMR, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिशन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से

0: होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगी जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
1: जी
0: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा के उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखें। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें, और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
1: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष

0: बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
1: Countrywide

आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान।

0: अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने हुए हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: Ravi Kapoor. संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari.